FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 12वीं तिथि तदनुसार 2 मई 2026 सवेरे के ठीक 5:56 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा।

0: केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आई सुनते हैं वंदनवार चिंतन।

आइए सुने आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जो उन्हें पढ़ लेता है उसे बोलना सिखा देती हैं। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस पाठ में सुनिए भाग 176। 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का 15वां भाग सुनिएगा। कलाकार हैं गीतकार गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन और गायिका आशा भोसले। प्रस्तुति छाया गांगुली की है। 7 बजे भूले बिसरे गीत का प्रसारण होगा और 7:30 से सुनिए हम है राही प्यार के। आज सुबह 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम होगा। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार, जो फिल्मकार सत्यजीत रे पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज रात 9:30 पर भी सुन सकते हैं। 10 बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी सुनवाई जाएगी। कहानी है जिंदगी में नून, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का है। लेखक हैं श्रद्धा थवायत, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। ग्यारह बजे सुनिए चित्रपट संगीत और 11:30 से मैटिनी शो। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी और 1 बजे से कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुन सकते हैं दिन में 2:30 से और मन चाहे गीत सुनिए 3 बजे से। पर नाट्य तरंग कार्यक्रम होगा और 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज में सुनिए फिल्म एडिटर दिलीप तरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का 15वां भाग सुनिएगा। 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए जिज्ञासा। हवा महल में सुनो कहानी के अंतर्गत सुनिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र का भाग पहला। वाचन स्वर है ममता सिंह का, प्रस्तुत करता है हर्षवर्धन गवई। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा और 9 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सत्यजीत रे पर और 10 बजे से सुनिए छाया गीत। 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ग्यारह बजे सुनिए चित्रपट संगीत।

आपको एक बार फिर याद दिला दें, सुरीला सफर आज आप सुनेंगे 1 बजे से और सदाबहार नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर और 3 बजे से सुनिए मन चाहे गीत।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानो उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 176।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: मेरी संगीत यात्रा। श्रोताओं, इस श्रृंखला में हमने सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से किए गए संवाद के माध्यम से फिल्म संगीत के अनेक उपयोगी एवं रोचक पहलुओं की जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। तो सुनिए इसी श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। श्री राहुल देव बर्मन के साथ हुए संवाद में भाग लिया है आपके चिरपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार ने एवं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले ने।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। ये आज हम लोग मेरे ख्याल से आखिरी प्रोग्राम के लिए आए हैं।
1: आपको मेरे नमस्कार में सैडनेस नहीं दिखाई दी? कितना नमस्कार,
3: उदासी तो मुझे उदासी सुनाई दे रही थी।
1: जी, जब हमने दिल पड़ोसी ये रिकॉर्ड बनाने की सोची, सब लोगों ने कहा कि बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं ये रिकॉर्ड करें। हर एक ने कहा, फॉरेन से लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखी कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाइए। तो हम लोग बहुत सोच रहे थे कि क्या टॉपिक पे जाना चाहिए, किस टॉपिक पे जाना चाहिए। तो गुलजार भाई ने अपने मन से ही टॉपिक चुन लिया और उस टॉपिक पे उन्होंने पूरा रिकॉर्ड उसी पे चलता है। अलग अलग गाने आते हैं लेकिन मकसद एक होता है।
3: वैसे इस एल्बम का मैं पूरा क्रेडिट आपको देता हूँ।
1: नहीं,
3: ये इस वजह से कि बाकी सब कुछ होते हुए भी ये अगर आप इसकी कॉम्पोजिशंस के लिए, इसे बनाने के लिए
1: पीछे नहीं पड़ती।
3: जी हाँ, ये हजरत को ना पकड़ती यहाँ पर इस तरह, तो ये एल्बम का भी ना होती।
1: और इस एल्बम की खास बात है कि बर्मन साहब का हमेशा ऐसा रहा है कि आज से आने वाले 10 साल का म्यूजिक वो पहले बना देते हैं, आने वाली चीज वो पहले करते हैं। और
2: तारीफ इतना क्यों कर रहा
1: है? और गुलजार भाई का लिखना भी ऐसा है कि आम आदमी के फट से समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिख गए, वो क्या कह गए हैं। अगर आप सोचे 2 मिनट तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही सुंदर उसको
2: गहरी बात
1: से वो कह जाते हैं। और कुछ अलग ही अपना तरीका है उनका लिखने का। मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में शायद इस किस्म के लिखने वाले दूसरे कोई नहीं है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है, आप ज्यादा तारीफ कर रही हैं मेरी।
1: नहीं नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुंह देखे भी नहीं कर रही। मैं हमेशा से कहती हूँ और सब शायद दुनिया के सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत साफ जो सच्चाई वो कह देती हूँ।
3: तो मैं जो खास बात इन कॉम्पोजिशंस में, जिस तरह से आपने कहा आने वाले वक्त की, उसमें जो अलग बात है इसमें दिल पड़ोसी में, वो ये है कि बहुत से रिलेशनशिप्स हमारे हैं जिनके बारे में हम कहानियां लिखते हैं, गाने नहीं लिखते, नज़्में भी नहीं लिखते, पोएट्री में भी नहीं कहते। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन हमने इस पर गाने कभी नहीं किए। जैसे आपने गाना इस प्रोग्राम में गाया है, जाने दो मुझे, जाने दो। एक औरत जो अपने हस्बैंड से अलग हो रही है, जाना चाहती है और उसके दुख का फिर भी एहसास है कि कुछ देर तन्हाई रहेगी, उसके बाद तुम भूल जाओगे, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, पर मुझे जाने दो। वो उन चोटों का जिक्र करती है जो उसके चेहरे पर निशानियां लेके जा रही है। द मैन हैज बीन अ वाइफ बीटर, जिसका जिक्र कोई गानों में या नज्मों में करते नहीं हम लोग, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ये। और उन पे गाना कह लेना और उस दर्द को बता देना, इसी में गाना है जिसमें

0: औरत शादीशुदा है और मैं सजदे में थी तूने लब छू लिए, एक जगह आता है इसमें एक गाने में, और तुमको परवाह नहीं थी मैं अकेली न थी, कुछ इस तरह की लाइनें जिससे सजेस्ट करते हैं हम कि शी इज अ मैरिड वुमन एंड इन लव विद समबडी। तो ये इस तरह के हिस्से जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये सिचुएशंस हम फिल्मों में कह नहीं पाते, बाहर लिखते नहीं, दिल पड़ोसी है मैं, ये पहली बार हुआ था।
1: रात क्रिसमस की थी,
0: रात क्रिसमस की थी,
2: गाने में
0: ना तेरे बस की थी ना मेरे बस की थी।
2: और बर्मन साहब ने इसमें जिस तरह लगता है कि वाकई क्रिसमस हो रहा है कहीं लंदन में पेरिस में, इसी तरह कुछ वो क्या गाड़ी छन छन छन छन आवाज और क्रिश्चियन लड़कियां गा रही हैं, और उसमें से ये गाना जैसे शुरू होता है, ये बहुत सुंदर गाना है। तो आज
0: अच्छा ये मैं सिर्फ बदला नहीं चुका रहा हूँ, लेकिन ये कि आपकी रेंडरिंग और आपकी गायकी, आपने जिस तरह से गाया है उसे,
2: मेरा ख्याल आप लोग प्यार करते हैं इसलिए आपको मेरे गाना अच्छा लगता है।
0: सही बात यह है कि आज क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है, इसलिए जाने से पहले कह देना चाहता हूँ सबके सामने कि आपकी रेंडरिंग उसमें एक और सोने पे सुहागा था।

0: मेरी संगीत यात्रा। सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से हुए संवाद पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। इस संवाद में भाग ले रहे थे सुपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले। इस कड़ी के साथ ही संगीत सरिता की वर्तमान श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का समापन होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
1: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम संगीत सरिता FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार, अलवर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं आपका रेडियो मित्र आशीष मालानी ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो आने वाले समय में आपकी और हमारी जिंदगी कैसी होगी और हमारा देश किस राह पर प्रगति करेगा, हमारे देश की आगे की भविष्य की योजनाएं क्या होगी, और वह सब निर्भर करेगा आने वाली जनगणना पर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अपने राजस्थान प्रदेश में स्वगणना प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। आज के नमस्कार अलवर के इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे स्वगणना प्रक्रिया के विषय में और यह क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे होने वाले हैं, यह सभी आपको जानकारी देंगे। पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, स्वगणना प्रक्रिया आज के समय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी पहल के रूप में सामने आई है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक से संबंधित सही, स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी एकत्रित करना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नागरिक स्वयं अपने परिवार और निवास से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दर्ज करते हैं, जिससे आंकड़ों की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। जब व्यक्ति अपनी जानकारी स्वयं भरता है तो उसमें त्रुटि की संभावना कम हो जाती है और वास्तविक स्थिति का सही आंकलन संभव हो पाता है, जो किसी भी देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक आधार होता है। इस प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय और आवास की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं, जो आगे चलकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में उपयोग की जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपनी जानकारी पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ दर्ज करे, ताकि भविष्य की योजनाएं सही दिशा में बन सकें और उनका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके। स्वगणना की विशेषता यह है कि यह नागरिकों को अपनी जानकारी पर स्वयं नियंत्रण रखने का अवसर प्रदान करती है और तकनीकी माध्यमों के कारण यह प्रक्रिया सरल और सुलभ हो गई है। लोग घर बैठे ही अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी और प्रशासनिक कार्य अधिक व्यवस्थित और तेजी से पूरा होगा।

श्रोताओं, इस बार जो जनगणना होने वाली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वह पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसमें कम से कम पेपर का इस्तेमाल होने वाला है, जो पूर्व की जनगणनाओं से अपने आप में एक अलग जनगणना होगी, जिसमें नाम मात्र का पेपर वर्क होगा। अधिकतर कार्य डिजिटल होगा, जिससे कागज की बहुत बचत होगी, जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल होगा। श्रोताओं, स्वगणना प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमें इसके पोर्टल में लॉगिन करना होगा। इसके पोर्टल पर जाने के लिए आपको अपने मोबाइल पर se.census.gov.in पर अपने राज्य का चयन कर कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके पश्चात परिवार के मुखिया का नाम और आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यदि आपके पास हो तो उसे दर्ज करें। याद रखें, मोबाइल नंबर और मुखिया का नाम बाद में नहीं बदला जा सकता।

मोबाइल दर्ज करने के बाद आप अपनी पसंदीदा भाषा और ओटीटी सबमिट कर ओटीपी जो आएगा उसको सबमिट करें। सबमिट होने के बाद आप अपने जिले का पिन कोड, गांव, नगर, स्थान जहां पर भी रहते हैं उसका चयन करें। फिर वहां पर आपको एक मैप दिखाई देगा जिसे ट्रैक कर आप अपने घर की सही स्थिति यानी लोकेशन पर जाकर उसकी पुष्टि करें। उसके बाद एक प्रश्नावली में आपसे 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रत्येक प्रश्नों का आप सही सही जवाब भर कर दें। इन प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा कि आप पक्के या कच्चे मिट्टी के किस तरह के मकान में रहते हैं, आपके घर में शौचालय है या नहीं, आप मकान के मालिक हैं या किराएदार, आपके घर में पेयजल किस तरह से आता है, नल से आता है, आप बाहर कुएं या हैंडपंप बोरिंग से लाते हैं, पीने का पानी या अन्य पानी का इंतजाम किस तरह से करते हैं, गंदे पानी की निकासी आपके यहाँ किस तरह से होती है, आपके पास घर में रसोई घर में LPG कनेक्शन है या PNG कनेक्शन है, आप चूल्हे पर खाना बनाते हैं या अन्य किसी, इस तरह के बेसिक सवाल पूछे जाएंगे।

श्रोताओं, प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 26, यदि आज आप हमें सुन रहे हैं तो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है कि आपके पास रेडियो अथवा ट्रांजिस्टर है अथवा नहीं। जाहिर तौर पर यदि आप आज हमारा यह कार्यक्रम रेडियो पर सुन रहे हैं तो आपके पास रेडियो है, तो आपके प्रश्न संख्या 26 में आपका उत्तर कोड संख्या 1 भरना होगा। यदि आप मोबाइल या स्मार्टफोन पर रेडियो सुन रहे हैं या रेडियो नहीं भी सुनते हैं और रेडियो मोबाइल में आपके में रेडियो फंक्शन उपलब्ध है तो आपको कोड संख्या 2 भरना है। यदि आपके पास परंपरागत रेडियो सेट या मोबाइल स्मार्टफोन के अतिरिक्त अन्य किसी उपकरण पर रेडियो सेट उपलब्ध है तो उसके लिए कोड संख्या 3 भरना है। इसी प्रकार से यदि आपके पास टेलीविजन और डीटीएच उपलब्ध है तो प्रश्न संख्या 27, इंटरनेट सुविधा के लिए प्रश्न संख्या 28, लैपटॉप के लिए प्रश्न संख्या 29, टेलीफोन मोबाइल के लिए प्रश्न संख्या 30, साइकिल स्कूटर मोपेड के लिए प्रश्न संख्या 31 और कार जीप वैन है आपके पास तो प्रश्न संख्या 32 है। आप किस तरह का अनाज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए प्रश्न संख्या 33 का आपको सही सही जवाब देना है, क्योंकि यह कुछ बेसिक प्रश्न हैं जो आपकी और हमारी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं, ताकि भविष्य में इनके आधार पर देश की योजनाएं बन सकें। हमारा सबका यह कर्तव्य है कि हम इन प्रश्नों का सही सही जवाब दें। आपकी यह जानकारी पूर्णतः गोपनीय रहेगी और किसी भी पोर्टल पर या अन्य किसी माध्यम से शेयर नहीं की जाएगी। उपरोक्त प्रश्नावलियां भरने के बाद इनकी पुष्टि करें।

0: think.
1: श्रोताओं, यह पूरी व्यवस्था केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश के विकास की मजबूत नींव है। सही और सटीक आंकड़ों के आधार पर ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसे क्षेत्रों में प्रभावी योजनाएं बनाती है और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करती है। इसलिए स्वगणना प्रक्रिया और क्षेत्र सत्यापन दोनों में सक्रिय भागीदारी देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि आपकी सही जानकारी ही एक सशक्त, संगठित और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र आशीष मालानी को। हम कल फिर उपस्थित होंगे एक नई जानकारी और एक नए विषय के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं उदित नारायण अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म जाने होगा क्या से। गीत की रचना है समीर की और संगीत निखिल विनय का।

आनंद बख्शी के लिखे गीत को अपनी आवाज दी अमित कुमार, मोहम्मद अजीज और सपना मुखर्जी ने। गाने की धुन तैयार की थी विजू शाह ने। फिल्म का नाम विश्वात्मा का भी आपने गीत सुना। अब आपको सुना रहे हैं आतिफ असलम श्रेया घोषाल की आवाज में प्रिंस फिल्म का गीत। गीत की रचना है समीर की और संगीत सचिन गुप्ता का।

सावन कुमार के लिखे गीत को अपनी आवाज दी किशोर कुमार ने, गाने की धुन तैयार की वेदपाल ने। फिल्म का नाम सोतन की बेटी का भी आपने गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर रूप कुमार राठौड़ की आवाज में वीर चारा फिल्म का गीत। गीत की रचना है जावेद अख्तर की, संगीत मदन मोहन का।

वीर जारा फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में है। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना

0: केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाले बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19

0: आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फास्ट समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग चे लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटे ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान आप हलकार। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आज आपको सुनवा रहे हैं शंकर शंभू कव्वाल की और साथियों के गाए हुए गीत।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: अभी आपने ट्यून किया FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल। इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आज आपको सुनवा रहे हैं शंकर शंभू कव्वाल और साथियों के गाए हुए गीत।

The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे शंकर शंभू कव्वाल और साथियों के गाए हुए गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बातें फिल्मों की, जिसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं कालजयी भारतीय फिल्म मदर इंडिया। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं शिव कुमार शर्मा।

0: बातें फिल्मों की कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शिव कुमार का नमस्कार। भारत की आज़ादी को पूरे 10 साल नहीं हुए थे। गरीबी और भुखमरी से जूझते ग्रामीण भारत की दुर्दशा से कोई भी अनजान नहीं था। इसी दौरान भारत के बुद्धिजीवियों ने देश की जटिल समस्याओं पर फिल्में बनाना शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ बॉलीवुड का स्वर्णिम काल। बॉलीवुड के स्वर्णिम काल में एक ऐसी कालजयी फिल्म बनी जिसका जलवा आज भी कम नहीं हुआ। इस फिल्म का नाम था मदर इंडिया। इस फिल्म की लोकप्रियता के कुछ कारण रहे जिन्हें बताया अभिनेता राजेंद्र कुमार ने।
1: उसकी कहानी जो हिंदुस्तान की मिट्टी की कहानी, वो हिंदुस्तान के बाहर की कहानी नहीं है। उसमें कोई स्विट्जरलैंड नहीं, उसमें कोई इंग्लैंड नहीं, गांव की मिट्टी है और उन गांव के रहने वालों के दुख सुख जो हिंदुस्तानी, वो इसीलिए वो फिल्म बहुत ही कामयाब हुई और हमेशा कामयाब रहेगी। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी आर्टिस्टिक और सबसे बड़ी कमर्शियल।
0: महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया 14 फरवरी 1957 में रिलीज हुई। मदर इंडिया की पटकथा वजाहत मिर्जा और सैयद अली रजा ने निर्देशक महबूब खान के साथ लिखी थी। इस फिल्म में राजकुमार, राजेंद्र कुमार, नरगिस और सुनील दत्त ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इसका डायरेक्शन महबूब खान ने किया था। महबूब खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था।
2: दुख भरे

इस फिल्म की शूटिंग इसके स्क्रिप्ट फाइनल हो जाने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1955 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी और फिल्म के लिए बाढ़ के दृश्य को फिल्माने के लिए एक टीम वहां भेज दी गई थी। फिल्म में बाढ़ के सभी दृश्यों को तभी फिल्मा लिया गया था। '27 में अमेरिकी पत्रकार इतिहासकार कैथरीन मेयो ने एक विवादास्पद पुस्तक लिखी मदर इंडिया, जिसने भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में खलबली मचा दी थी, क्योंकि इस किताब में भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति की आलोचना की गई थी। कैथरीन मेयो की किताब मदर इंडिया की कड़ी आलोचना के जवाब में भी इस फिल्म को देखा जाता है। इस फिल्म ने न केवल लोगों का दिल जीता बल्कि महिलाओं के शोषण के प्रति लोगों को झकझोर कर रख दिया।

0: भारतीय फिल्मों में माँ के किरदार को हमेशा से ही ऊंचा स्थान दिया गया है। कभी फिल्मों में माँ को बेहद इमोशनल तो कभी बेहद साहसी और बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला दिखाया जाता है। भारतीय फिल्मों की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मदर इंडिया एक ऐसी लाचार माँ की कहानी है जो पति की बीमारी के चलते अकेले ही अपने दो बेटों की परवरिश करती है। इस दौरान उसे समाज के साथ साथ अपने एक बेटे का भी सामना करना पड़ता है।
1: मैं से ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन घोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल खिला दी। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा।
2: नहीं बिचो।
1: तो बोल इसको, मुझे हिसाब दिखाए।
0: इस फिल्म के किरदार बिरजू की भूमिका निभाने के लिए उस समय के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के नाम पर विचार किया गया, लेकिन मुख्य अभिनेत्री नरगिस के साथ दिलीप कुमार के कुछ फिल्में ऐसी थी जिसमें उनकी रोमांटिक जोड़ी खूब जमी। इसलिए इस बात पर काफी विचार करने के बाद यह तय किया गया कि दोनों माँ बेटे के किरदार में दर्शकों को अच्छे नहीं लगेंगे। बाद में बिरजू के किरदार के लिए सुनील दत्त को चुना गया।
3: इसी विद्या से तूने हमारी जमीन छीन ली, हमारे बैल छीन लिए, हमारा बाप छीन लिया, मेरी माँ के हाथों में काले तागे तुम्हारे। एक शेर चावल के बदले एक बिघा जमीन, एक मुट्ठी चने लेकर एक औरत की लाज का सजा खाया है।
0: मदर इंडिया ही वो फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा को एक अलग पहचान दी, क्योंकि ये फिल्म केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी काफी पॉपुलर हुई थी। इस फिल्म के जरिए ही बॉलीवुड में रचनात्मक सिनेमा की शुरुआत हुई थी।

यही कारण था कि ये फिल्म ऑस्कर के फाइनल तक पहुंची थी। 1958 में मदर इंडिया मात्र एक वोट से ऑस्कर अवार्ड जीतने से चूक गई थी, क्योंकि जूरी उस समय की भारतीय संस्कृति और मूल्यों को नहीं समझ पाई थी।

0: एक और दिलचस्प किस्सा जुड़ा है इस फिल्म के साथ, और वो है बिरजू के बचपन का किरदार निभाने वाले मास्टर साजिद खान के बारे में। जब फिल्म का काम शुरू हो चुका था तब साजिद की उम्र मात्र 4 साल की थी। मदर इंडिया में छोटे बिरजू का किरदार बेहद ही दमदार था और इसके लिए महबूब खान ने बड़ी मुश्किल से साजिद को ढूंढा। शूट के दौरान महबूब खान को साजिद से प्यार हो गया और उन्होंने झुग्गी से आए इस बच्चे को गोद ले लिया।
1: भतीजे, इसमें चचा का भी हिस्सा है।
2: तुमने कौन ताल चलाए?
1: अरे बेटा, मैंने तुम्हारे बाप की जिंदगी में 500 रुपए का हल चलाया मालूम? क्या
2: तुम चोर
1: है? मैं चोर हूँ? मैं चोर हूँ?
0: प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक महबूब खान ने 1940 में एक फिल्म बनाई थी औरत। इसमें सरदार अख्तर, सुरेंद्र, याकूब, कन्हैयालाल और अरुण कुमार ने अभिनय किया था। फिल्म में संगीत अनिल विश्वास का था। इस फिल्म में संवादों के लिए वजाहत मिर्जा और सुक्की लाला के रूप में कन्हैयालाल और छायांकन के लिए फरदून ईरानी को महबूब खान ने दोहराया है। इसी फिल्म को महबूब खान ने दोबारा से तमाम संशोधनों के साथ मदर इंडिया के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे भारतीय सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में 3 किरदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने तमाम दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये 3 किरदार थे राधा, बिरजू और सुक्की लाला। नरगिस ने इस फिल्म में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। इस फिल्म की शूटिंग के समय नरगिस की उम्र लगभग 25-26 साल की रही होगी, लेकिन एक परिपक्व ग्रामीण स्त्री का अभिनय उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ किया। फिल्म में नरगिस ने राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक दमदार रूप दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला।
3: राधा के रूप में आते हुए लाज ना आई, मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख ले। हंसू नहीं, संसार का भार उठा लोगी देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। मां बनकर देखो, तुम्हारे पांव भी टकमगा जाएंगे।
0: मदर इंडिया फिल्म में सुक्की लाला का किरदार निभाया था कन्हैया लाल ने, जो एक सूदखोर साहूकार के रूप में पर्दे पर दिखाई दिए। फिल्म देखने के बाद लोग कन्हैया लाल से नफरत करने लगे थे। एक बार तो उनके घर पर लोगों ने पत्थर भी बरसाए। इस पर कन्हैया लाल ने कहा था कि ये पत्थर ही मेरा पुरस्कार है।
1: लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे। सोने की, राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी।
0: इस फिल्म में सुनील दत्त बिरजू की भूमिका में दिखाई दिए, जो गांव की सामाजिक व्यवस्था से काफी नाराज होकर डाकू बन जाता है और बाद में अपनी मां के हाथों मारा जाता है।
4: पापा को छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी।
5: तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी मां है।
4: मैं एक औरत हूँ।
5: मैं तेरा बेटा हूँ।
4: रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू, मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती।
5: तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा।

0: सुखी लाला की लड़की की चपलता और कुटिल मुस्कुराहट, चंपा का पारिवारिक रूप, राजकुमार की बेबसी इस फिल्म की जान है।
1: लाला ऐसा ना करो, सुखी नहीं रहोगे। छोटे छोटे बच्चों की हाय ना ले लाला, मेरे हाथ नहीं है।
0: मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक सीन की शूटिंग करते समय सेट पर भीषण आग लग गई थी और नरगिस उसमें फंस गई थी। सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आग में कूदकर नरगिस को बचाया।
2: डरते क्या हो, चल दो इसे, आग लगा दो खलिहान में, जहां होगा निकल के आएगा।
0: इस घटना के बाद दोनों करीब आ गए और बाद में उन्होंने शादी कर ली।

मदर इंडिया फिल्म का गीत संगीत भी बहुत पसंद किया गया। कुल मिलाकर इस फिल्म में 12 गीत हैं। शकील बदायूनी के लिखे भावपूर्ण गीतों को नौशाद की सुरीली धुनों का सहारा मिला था। नौशाद के संगीत की एक खूबी ये भी थी कि वे अपनी धुनों में लोक संगीत की बड़ी कुशलता के साथ इस्तेमाल करते थे। गीतों के लिए पार्श्व गायकों का चुनाव करने में माहिर थे।

नरगिस पर फिल्माए गए गीतों में उन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ का इस्तेमाल किया। लता जी ने भी गीतों में अपनी तमाम भावनाएं उतार दी। फिल्म में उनके गाए गीत आज भी संगीत प्रेमियों को बेहद पसंद हैं।

महबूब खान ने 1940 की अपनी फिल्म औरत में होली के दो गीत रखे थे। औरत के रीमेक के रूप में बनी फिल्म मदर इंडिया में भी एक होली गीत है जिसे शमशाद बेगम ने अपनी आवाज में यादगार बना दिया।

मदर इंडिया केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय नारी के धैर्य, संघर्ष और त्याग का सजीव चित्रण है। खेत खलिहानों की मिट्टी से उठी एक ऐसी कहानी है जो हमें बीते दिनों की याद दिलाती रहती है।

बातें फिल्मों की। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और बातों के साथ होंगे हाजिर। तब तक नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे बातें फिल्मों की, जिसमें आज आप सुन रहे हैं कालजयी फिल्म, भारतीय फिल्म मदर इंडिया। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिव कुमार शर्मा। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है।
1: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत दुनिया के कच्चे तेल के पांचवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश में खुदरा ऊर्जा कीमतें स्थिर। प्रदेश में 300 विद्यालयों के नए भवन के निर्माण के लिए 410 करोड़ रुपए मंजूर। राज्य के 6,280 से ज्यादा वाटर होल्स पर जारी वन्य जीवों की गणना आज शाम पूरी होगी। और प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के पांचवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। कल सूरत में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता के साथ काम किया है, जिससे 60% एलपीजी का उत्पादन भी देश के भीतर ही हो रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चुनौतियों और माल ढुलाई लागत में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है। देश में 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। संशोधित कीमत कल से प्रभावी हो गई है। यह बढ़ोतरी तेल विपणन कंपनियों की ओर से किए जाने वाले नियमित मासिक मूल्य अपडेट का हिस्सा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो देश की कुल खपत का लगभग 90% हिस्सा है। वहीं घरेलू एयरलाइनों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में और साथ ही पीडीएस केरोसिन की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

0: प्रदेश के 300 विद्यालयों में नए भवन निर्माण के लिए 410 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा 37,000 से अधिक स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं है। ऐसे भवनों को मालिकाना हक का पट्टा देने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री दिलावर कल कोटा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा परिषद की ओर से कोटा जिले के 9 स्कूलों के नए भवन के निर्माण के लिए करीब 12.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का काम जल्द शुरू होगा। करीब 918 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले जयपुर मेट्रो के कामों के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है। इसके पहले पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेट्रो अधिकारियों को कुल 41 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में से शेष 29 किलोमीटर के लिए भी जल्द निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर के रामदेवरा रेलवे स्टेशन का नया रूप अब धरातल पर नजर आने लगा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से इसका कायाकल्प किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रामदेवरा के स्टेशन पर अब आधुनिक सुविधाओं का संगम दिखाई देगा।
1: पुनर्विकास योजना में नया स्टेशन भवन, विस्तृत प्रतीक्षालय, आधुनिक शौचालय, रेडारिंग रूम, फूड प्लाजा और बेहतर पार्किंग व्यवस्था शामिल है। साथ ही दिव्यांग जनों के लिए लेप एक्सीलेटर की सुविधाएं सुलभ करवाई जा रही है। इसके साथ ही फ्री वाईफाई और उन्नत पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की सुविधा भी विकसित की जा रही है। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आगामी भादवा मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए परियोजना को जुलाई 2026 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल LEDC की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश में लाइव इवेंट उद्योग के विकास के लिए समन्वित रोड मैप तैयार करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि इसमें LEDC की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि लाइव इवेंट क्षेत्र मीडिया और मनोरंजन उद्योग के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। यह रोजगार और पर्यटन को बढ़ाने तथा विकास में अहम योगदान देता है। गौरतलब है कि लाइव इवेंट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने पिछले साल जुलाई में LEDC की स्थापना की थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2680 से ज्यादा वाटर होल्स पर 24 घंटे की वन्य जीव गणना जारी है। कल बुद्ध पूर्णिमा से शुरू हुई ये गिनती आज शाम 5 बजे तक चलेगी। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक KC अरुण प्रसाद ने बताया कि इस गणना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में वन्य जीवों की संख्या का आकलन कर उनके संरक्षण और प्रबंधन की रणनीति तैयार करना है। उधर उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में सबसे ज्यादा 744 वाटर होल्स बनाए गए हैं, जहां वन विभाग के प्रशिक्षित कार्मिक और चयनित वॉलंटियर्स वन्य जीवों की गिनती कर रहे हैं।
2: उदयपुर संभाग में स्थित अरावली की पहाड़ियों में शुक्रवार शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा तो जंगलों में हलचल बढ़ गई। यह कोई साधारण शाम नहीं बल्कि सालाना वन्य जीव गणना की शुरुआत थी। धवल चांदनी के बीच जंगल में मचाने सजी, जिन पर वन कर्मी सजग होकर वन्य जीवों की गतिविधियों पर निगाह रख रहे थे। उदयपुर संभाग के वन्य क्षेत्रों में सैकड़ों वन कर्मी, रेंजर, स्थानीय गाइड और स्वयं सेवक अपराह्न से ही अपने वाटर होल पॉइंट्स की ओर बढ़ते दिखाई दिए। वन्य अधिकारियों के अनुसार हर वर्ष यह अभ्यास इन्हें बताता कि किस क्षेत्र में वन्य जीवों की संख्या बढ़ रही है और कहां घट रही है और कहां संरक्षण की जरूरत है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर।
0: प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में वन्य जीवों की आवाजाही वाले स्थानों पर गणना के लिए कैमरा ट्रैप तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश में सभी नगरीय निकायों को सघन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए स्कूल, कॉलेजों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों, युवा मंडलों और विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं को जोड़ने पर जोर दिया गया है। विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने स्वच्छता को लेकर कल जयपुर से VC के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों की सभी नगरीय निकायों में पालना सुनिश्चित की जाए। श्री जैन

0: ने कहा कि सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के माध्यम से आम लोगों को नए नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। वहीं नगर निगम जयपुर की ओर से नवाचार के तहत आज रंग दे गुलाबी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पहली बार एक ही दिन में 500 दीवारें रंगने का प्रयास किया जा रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में अप्रैल महीने में ही जहां भीषण गर्मी का दौर रहा, वहीं आखिरी में कुछ भागों में आंधी बारिश का दौर चला। इससे तापमान में 2 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने मई महीने के शुरुआती 2 सप्ताह में आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना जताई है। इस बीच कल भी प्रदेश में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिले। पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला, वहीं दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा सहित कुछ स्थानों पर प्रचंड गर्मी का असर रहा। पाली में प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर गर्मी से बचाव के लिए विश्राम स्थल बनाए गए हैं और पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। वहीं नागौर, बारां, अजमेर, जयपुर में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। राजधानी जयपुर में देर रात करीब 2 घंटे बारिश का सिलसिला बना रहा। वहीं छबड़ा में सबसे ज्यादा करीब 2 सेंटीमीटर पानी बरसा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से नीट यूजी 2026 का आयोजन कल किया जाएगा। ये परीक्षा एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके लिए करीब 22,79,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। प्रदेश में नीट परीक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास 300 मीटर परिधि के ई मित्र, फोटोकॉपी और साइबर कैफे बंद रहेंगे। वहीं NTA की UGC नेट परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। ये आवेदन 20 मई तक किए जा सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत दुनिया के कच्चे तेल के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश में खुदरा ऊर्जा कीमतें स्थिर। प्रदेश में 300 विद्यालयों के नए भवन के निर्माण के लिए 410 करोड़ रुपए मंजूर। राज्य के 6,280 से ज्यादा वाटर होल्स पर जारी वन्य जीवों की गणना आज शाम पूरी होगी। और प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

ये खास मुलाकात, कुछ बातें अनकहीं, बहुत स्पेशल हैं, बहुत खास हैं। और इन गीतों का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

द डर्टी पिक्चर फिल्म से आप सुन रहे थे कमाल खान का गाया हुआ ये गाना। रजत अरोरा ने लिखा था और विशाल शेखर ने संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम में अगला गाना सिंघम फिल्म से सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोलों को संगीत से सवारा है अजय अतुल ने।

अरिजीत सिंह की आवाज में आपने हिच की फिल्म का ये गाना सुना, राजशेखर के बोल, जसलीन रॉयल का संगीत। और यहीं तक है आज का सफर चित्रलोक कार्यक्रम में। डीजे राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सकारात्मक हस्तक्षेप था। वहां सामाजिक अन्याय की बातें थीं। सदियों से शोषित होती चली आई नारी की पीड़ा को पर्दे पर साकार रूप देने की आकांक्षा थी सत्यजीत रे के सिनेमा में।

दोस्तों नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सत्यजीत रे की स्मृति को। सत्यजीत रे का शुमार भारत के महानतम फिल्मकारों में होता है। आज पश्चिमी दुनिया में अगर भारतीय सिनेमा अपनी कोई पहचान कायम कर पाया है या अपना परचम बुलंद कर पाया है तो इसका सीधा श्रेय जाता है सत्यजीत रे को, जिनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली सन 1956 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। सत्यजीत रे का सिनेमा सरोकारों का सिनेमा था। वहां पॉपुलर सिनेमा की कोई चमक दमक नहीं थी, वहां समस्याओं से जूझते भारतीय समाज की चिंता थी, वहां भूख और गरीबी के खिलाफ रचना

मुंबई सिनेमा की मार धाड़, उसका नाच गाना और उसका स्वप्निल संसार एक छोर पर है और दूसरे छोर पर है सत्यजीत रे का यथार्थवादी सिनेमा। आइए एक नजर डालें सत्यजीत रे की सिने यात्रा पर। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। फिल्मों का शौक सत्यजीत रे को बचपन में ही लग गया था। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का शौक भी लग गया और पेंटिंग का भी। अपनी मां के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहां आए थे। सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बायरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया। 6 महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसीका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया गया। जैसा कि हमने आपको बताया 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है। ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए। सत्यजीत रे को ये लगा था कि ये दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे। सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसे सन 1954 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्री अवार्ड मिला।

दो बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26

0: 20 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए।
1: सुनर मानुष भाषे रसे, सुनर मानुष भाषे रसे।
0: पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों अपूत्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसा घर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंगा, सन 1963 महानगर, 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपी गायन बाघबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई सदगति, सन 1984 घरे बाईरे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इप्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु, इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थीं। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफटाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखन जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया,
2: बंसी चंद्र गुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे
0: जी,
2: तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके
0: जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके
2: तो
0: साथ,
2: तो मैं उनके साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो, तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए
0: जी,
2: तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो, तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं मैं बात करती हूँ उनसे, तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए नहीं लिखा है,
0: उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे,
2: हाँ जर्नलिस्ट थे, मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे।
3: अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई क्या?
4: खूब। वैसे मैंने ला मार्टिनेर के कॉलिन साहब से सीखी है, मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना।
3: अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है?
4: नवाज साहब को ज्यादा फर्क नहीं है, या आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं, और प्यादा पहली चाल में दो घर चल सकता है।
3: दो घर?
4: जी हाँ दो घर, और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है।
3: कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी। मगर इन तब्दीलियों से फायदा?
4: बाजी झटपट खत्म हो जाती है।
3: क्यों? उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या?
4: जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है।
3: और तार?
4: जी हाँ। तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाते।
3: क्यों?
4: बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं।
3: बुरी खबरें?
4: आपने कुछ सुना नहीं?
5: हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं।
4: मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं।
6: मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे हाय, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल, पैसा लाए कहां से?

0: ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं।
1: भाई, शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है।
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। और पहले तो मैं समझा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया, जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बैज में था कि मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या है, लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो वैसी एक आवाज थी, बड़ी इम्प्रेसिव
0: जी।
1: और उन्होंने कहा कि कम आप, मैं चला गया और उन्होंने वो खुद दरवाजा खोला, क्योंकि वो कमरे में अकेले थे
0: जी।
1: पहली मर्तबा मैंने इतना लंबा बंगाली देखा बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे
0: जी हाँ।
1: और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, वो खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे।
0: अच्छा,
1: कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे। तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक। और फिर कहने लगे कि अच्छा, उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब, कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी।
0: और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी।
1: पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब, आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क। इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माई वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, I can have a look at you.
0: जी.
1: And here is my script and you are writing the dialogue.
0: ओहो.
1: तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी सर। और मतलब वो ऐसी अजीबोगरीब मुलाकात थी कि उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहां से अपनी दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा

0: ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहां से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे
1: जी।
0: वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे, पकड़ लिया पता नहीं कहाँ से, और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में कहते हैं ना कुरे फाल बनामे मने दीवाना जदन, कि वो कुरे फाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बाहर हमने वो लिख दिए और सुरेश जिंदल साहब ने जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, खास तौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी फ्रॉम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक
1: जी।
0: अब सब चुप थे, वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीब गरीब था कि सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता
1: जी,
0: कि आई डोंट नो व्हाट ही हैज रिटन बट इट साउंड्स वेरी गुड।
1: वाह।
0: उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे, या मिस्टर रे नहीं कहते थे, हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे,
1: बिल्कुल,
0: जो मानिक उनके घर का नाम था। और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दा ही कहते थे।

0: कुछ दिनों के बाद फिर मानिक दा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं, मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जुमा करा के देखा, वो बहुत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा, विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। तो वो गरीबी का जमाना था, मैंने अरे भाई इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तुम्हें भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीब गरीब सूरत हाल थी, वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था तो वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो वो खुद वाकिफ नहीं थे, और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखल अंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थी और कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था वो ऐसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज़ पुराने ज़माने की, क्योंकि 1857 का माहौल था
1: जी।
0: तो मानिक दा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से, और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल दो मर्तबा आता है, एक मर्तबा एज एन असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, और दूसरा डायलॉग राइटर।
1: ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें दो तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहा किस तरह से पाते हैं?
0: मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद जहीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था, और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी, और उसकी बहुत सारी मिसालें थी। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो शोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिक दा खुद करते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, वो हमेशा खुद करते थे, ज्यादातर काम वो खुद ही करते थे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद स्कोर करते, कंपोज करते थे।

0: एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे और कैमरा ऑपरेट भी खुद करते थे। अक्सर हम लोग में से कोई अगर उनको कोई राय दे देता था तो वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और उसको करते भी थे। उनमें वो जो एक गुरूर होता है कि साहब मैं सत्यजीत रे हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और कुछ ऐसी बातें भी थी बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग जिन्हें सीखने का हमको मौका मिला। मिसाल के तौर पर ये कि जब मीर का घर बन रहा था सईद जाफरी का और बंसी चंद्र गुप्त का डायरेक्शन था, तो हम जब वहाँ पहुँचे सवेरे सवेरे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंसीदा, और बंगला में बातें कर रहे थे लेकिन ये बंगला समझ में आने लगी थी, वैसे भी आसान जबान है वो। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मीर के जो हालात हैं वो काफी खराब हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जो रंग रोगन है इस हवेली का ये सही है, तो इसको थोड़ी एजिंग की जरूरत है। तो बंसीदा ने कहा कि हाँ मैं एजिंग कर दूंगा। और वो जाने लगे मानिकदा, और जाते जाते उनको वो एक बाल्टी दिखाई थी जिसके अंदर पेंट करने वालों ने इस खौफ से कि ब्रश सूख न जाए वो भिगो दिए थे पानी में, और वो गंदा सा पानी वहाँ पड़ा हुआ था। एंड सडनली ही स्टॉप्ड, और उन्होंने वो ब्रश उठाया और उसको उन्होंने दीवार के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत ही गंदी मैली सी एक तय चढ़ गई, तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए और धब्बे चाहिए मुझे, ताकि ये एहसास हो सके कि इस आदमी की माली हालत जो है वो कैसी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता, डायरेक्शन की जो जहानत होती है वो मैं उसके लिए मैं कोट करूंगा कि एक सेट था, तो उसमें वो मिर्जा साहब जो है वो शतरंज खेलने के लिए आते हैं सवेरे सवेरे। वो आए और वो बाहर एक उस जमाने में ब्रूट हुआ करते थे वो बड़े बड़े मतलब 10K का जो की लाइट होती थी, तो वो एक लकड़ी का घोड़ा बना के और उसके ऊपर रख दी गई थी
1: जी,
0: बाहर की रेज जो है वो अंदर आ सके। तो उन्होंने लाइटिंग जब देखी तो उन्होंने उनसे शोमेंदु राय से कहा कि इसको एक 2 फुट ऊपर कर दो। तो जी 2 फीट ऊपर करने वाली बात थी, मुझे तो कुछ इतनी समझ में नहीं आई। तो शोमेंदु राय ने कहा ठीक है दादा मैं कर देता हूँ। तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मैंने कहा कि मानिक दा ये बताइए आप वो उससे क्या फर्क पड़ता है लाइट, आपने उसे 2 फुट ऊपर क्यों कराया। तो वो बहुत देर तक टालते रहे, फिर लंच में मैंने फिर उनको घेर लिया। हम सब लोग साथ में ही लंच करते थे, और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो एक मरतबा जब सेट पे आ जाते थे तो पैकअप बोलने के बाद ही सेट से निकलते थे, लंच में भी वो बाहर नहीं जाते, वहीं सेट पर खाना खाते। तो मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया, थोड़ा सा चिढ़ गए, कहने लगे तुमने स्क्रिप्ट लिखा है ना। मैंने कहा हाँ। तुमने क्या टाइम लिखा है, क्या वक्त है। सुबह का वक्त है, 9:30-10 बजे का वक्त होगा। तो कहने लगे और ये मौसम कौन सा है, महीना कौन सा है। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अस ये दिसंबर है। तो कहने लगे कि दिसंबर में लखनऊ में 10 बजे सूरज निकलता है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर से आएंगी, बीच में से नहीं आएंगी।
1: वाह,
0: समझे आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सूरज अभी निकला है तो उसकी जो एंगल जो होना चाहिए किरणों का वो हायर साइड पे होगा न कि नीचे। तो ये जो बात थी वो तरीके की, वो मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। जब भी आते थे यहाँ बॉम्बे में तो 1-2 मुलाकातें उनसे जरूर होती थी, हम उनके घर जाया करते थे, चाय के बड़े शौकीन थे वो।
1: अच्छा,
0: मुझे भी चाय का बड़ा शौक, तो मैं उस लालच में बहुत जाता था उनके घर, क्योंकि उनके कोई एक बहुत चाहने वाले थे जिनका दार्जिलिंग में 30 स्टेट था। तो वो हाथ से तोड़ी हुई चाय की पत्तियां उनको भेजा करते थे, वो ब्लेंडेड या ये नाम वाली चाय नहीं होती थी, और वो चाय का फ्लेवर ही अजीब होता था, और उसको वो बड़े प्यार से बना के वो उसके ऊपर लेक्चर भी देते जाते थे और समझाते भी जाते थे और पीते भी जाते थे। और गुड ओल्ड डेज के ऐसा लगता है कि यादें कल की हैं।
1: सत्यजीत रे ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। सन 1971 में उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री थी सिक्किम। इसके बाद सन 1987 में उन्होंने अपने पिता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सुकुमार रे। सन 1976 में आई डॉक्यूमेंट्री बाला, और सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर पर एक डॉक्यूमेंट्री आई। सन 1972 में उन्होंने द इनर आई नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस तरह सत्यजीत रे न सिर्फ फीचर फिल्में बनाते थे बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने में भी उनकी अच्छी खासी रुचि थी। सत्यजीत रे केवल सिनेकार ही नहीं थे, वे चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे और लेखक भी। बच्चों के लिए उन्होंने अपार लेखन किया। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे इस असार संसार को छोड़कर चले गए। महान फिल्म का

0: पर कुरुसावा ने सत्यजीत रे के लिए कहा था। सत्यजीत रे का अवलोकन बड़ा गहरा और खामोश होता है। उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो अपने आप में एक विशाल फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे मगर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: चीख सुनाई पड़ी, आह! संध्या का संतुलन बिगड़ा और वो चट्टान की एक खो में फिसल गई। हर्षित दौड़ा दौड़ा आया। उसने नीचे चट्टान की खो में झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे मासूम सी घबराई संध्या दिखी। मेरा हाथ पकड़ो। हर्षित ने हाथ आगे तो बढ़ाया था, लेकिन संध्या की भयभीत हिरणी सी आंखें, स्ट्रॉबेरी की दो फांकों से होठ और उसके शरबती गेहूं से सुनहरे चेहरे को छिपम छिपाई खिलाते भूरे काले बाल देखकर उसे खींचना ही भूल गया था। वो उम्र भी वैसी ही थी, अनछुई कली सी, मासूम, मंडराते भंवरे सी, शोक। मुझे ऊपर तो खींचो। संध्या ने उनका हाथ खींचा तो उन्हें होश आया। संध्या के खो से निकलने के बाद दोनों फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए, लेकिन ध्वज को पकड़ने के ठीक पहले हर्षित के कदम लड़खड़ा गए। रात को कैंप फायर में संध्या ने हर्षित से पूछा, आप जानबूझकर लड़खड़ाए थे ना? जवाब में एक भेदक मुस्कुराहट थी जिसने संध्या के दिल के गृह बख्तरों को खोल दिया और बर्छी सी उसके दिल में जा चुभी। जब मुस्कुराहट की बर्छी दिल को मरोड़ने लगी, तब एक फुसफुसाता सा जवाब आया, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक पल रुककर एक खुले दिल की

हंसी की बाद संध्या को बहा ले गई। इस खुले दिल की हंसी ने संध्या के दिल से मुस्कान की बर्छी तो निकाल दी, पर मुंह में इमली रखने पर बार बार चटकारे लेती जबान सी दिल में मीठी मरोड़े उठाने लगी। कैंप से वापस आकर संध्या ने निहारिका टॉकीज में बाजीगर 4 बार देखी थी, 1 बार घर वालों के साथ और 3 बार घर वालों से छुपकर। दूरी ने धीरे धीरे इन मीठी मरोड़ों को धीमा कर दिया और कुछ ही समय में संध्या ने मान लिया कि ये उम्र के 16वें साल की शरारत थी। भगवान सबकी जिंदगी की स्क्रिप्ट उनके इस धरती में आने के पहले ही लिख लिए होते हैं, जबकि व्यक्ति ये भी नहीं जानता होता कि उसके साथ अगले पल में क्या होने वाला है। 15 साल बाद हर्षित के IFS में चयन होने का पता पाकर संध्या के माँ पिताजी उनके घर गए थे। उन्होंने संध्या को बेहद लाड़ प्यार देकर पाला था, लेकिन उनके लिए भी लड़की के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अच्छे घर वर से शादी ही थी। लड़के वालों को भी IFS लड़की की सोसाइटी में रह सकने वाली लड़की चाहिए थी। संध्या कॉन्वेंट में पढ़ी, अच्छे क्रेडेंशियल्स वाली लड़की थी। खूब धूमधाम से उनकी शादी हुई। हर्षित और संध्या के दिलों में सालों पहले उठी मीठी मरोड़े उनकी देखने दिखाने की रस्म के दौरान हुई मुलाकात के साथ ही फिर उठने लगी, लेकिन अब की ये मरोड़े बेहद तीखी थी। उनकी शादी के बाद शुरुआती सालों का अधिकांश समय विरह में ही बीता। शुरुआत में कुछ महीने ससुराल में ही रहकर सबको जानने समझने की बड़ों की इच्छा का सम्मान, फिर हर्षित का IFS का लंबा प्रशिक्षण इसका कारण बनता रहा। इन शुरुआती वर्षों में उसके लिए सबसे अच्छा समय होता बारिश का। हाँ, जब हर्षित 15 दिन की लंबी छुट्टी लेते, जिससे वो अपने सैकड़ों एकड़ की खेती के कामों से भी जुड़े रह सकते थे और साथ ही इन छुट्टियों में वो IFS अधिकारी न होकर एक किसान हो जाते। वो खेती के अन्य कामों के साथ ही धान रोपने जैसे मजदूरों के कामों में भी जुट जाते। जब वो धान के खेत में मजदूरों के साथ मिलकर धान रोपने लगते तो मजदूरों में भी एक अलग ही जोश भर जाता था। जब हर्षित खेतों में धान रोपते तब संध्या उन्हें किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर एक टक देखती रहती, सोचती रहती। एक बार उसने हर्षित से कहा, सुनो, मेरा भी मन करता है कि मैं साड़ी का फेंटा कस लई मताए धान के खेत की टखनों तक धंसती मिट्टी में फच फच जा घुसू और धान रोपते हुए माटी की ठंडक और तुम्हारे साथ का आनंद लू। हर्षित ने कहा, लेकिन तुम बहू हो। उसने भी मान लिया कि बहू का यूं खेतों में धान रोपना अशोभनीय लगेगा। तब से वो हर्षित को धान रोपते देखकर ही खुश होती रही। धान रोपते अपने कसरती बदन में हर्षित संध्या को किसी पहाड़ से लगते, जैसे कल कल करती धाराएं हरे भरे पहाड़ों की चोटियों से हर 4 कदम पर किसी जिद्दी बच्चे सी मचलती बहती हैं, वैसे ही हर्षित के कसरती बदन से कभी वर्षा की धाराएं तो कभी पसीने की धाराएं बहती रहती। इन जलधाराओं के बीच हर्षित की मछलियां चमकती रहती। जिस दिन हर्षित पानी से भरे खेत में धानी धान का रोपा लगाते, उस दिन धान के लहलहाते पौधों से खुशी से संध्या का मन झूमने लगता। उस खेत के चावल का नमकीन स्वाद तो उसे बाद में मिलता, पर उस दिन हर्षित भी नमकीन हो जाते। संध्या हर्षित से महीनों दूर गुजरने वाली अपनी उबली सब्जी सी जिंदगी में कुछ नमक भुरक लेती।

जब हर्षित अपनी IFS प्रशिक्षण में जंगलों की खाक छानते रहते जहां परिवार को साथ नहीं रखा जा सकता, तब संध्या गांव में अपनी ससुराल में आदर्श बहू का फर्ज निभाती होती। बड़ा घर था, बड़ा परिवार, खेती किसानी के काम, गृहस्थी का हर बंधन मौजूद था वहां। खेती किसानी के दिनों में नौकरों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। खाली समय में घर की महिलाएं अनाज, दाल आदि साफ कराती या सीने पिरोने का काम करती, जिनमें संध्या को कोई रुचि नहीं थी। जिनमें संध्या को रुचि थी वे काम उन सब की नजर में बेमतलब के थे। शादी के शुरुआती दिनों में उसने ससुराल में अपनी पसंद के काम करने की कोशिश की थी। बहू थी तो घर से बाहर अकेले निकल नहीं सकती थी, लेकिन वो बुआ सास को अपने साथ बाड़ी में घूमने के लिए मना लेती। बुआ जी चलिए ना, बाड़ी में घूम कर आते हैं। घूमते हुए वो पेड़ों में चहकती चिड़ियों को देखती, फूलों में मंडराती तितलियों को देखती और अगली बार मायके जाने पर अपना कैमरा लाने की सोचती। पर ऐसा एक दो या शायद तीन बार ही हो सका, फिर बुआ जी ने मना कर दिया। ना बहू, मैं ना जाऊं, बहुत से काम है घर में। बाद में उसने किसी से कहते सुना कि ना जाने बहुत चिड़ियों में जाने क्या ताक झांक करती रहती है। अरे फूलों को देखती है तो देखती ही रह जाती है, मुझे ना जाना उसके साथ। अब संध्या कमरे की खिड़की से ही नजरों की सीमा तक प्रकृति को निहारती रहती। लेकिन यह भी तो एक अच्छी बहू का लक्षण नहीं कि वो जब देखो खिड़की से बाहर निहारती मिले। शादी के कुछ साल बाद जब साथ रहने का वक्त आया तो उनके दिन नई नई गृहस्थी जमाते एक दूसरे को समझते समझाते निकलने लगे। उनका सप्ताहांत अक्सर जंगल के बीच किसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बीतता जहां दोनों खुशी के बादल में सवार होते। संध्या अपने वन्य जीवन फोटोग्राफी के शौक का भरपूर आनंद लेना चाहती। वो कहती, चलो सुनो, आज जंगल में गहरे और गहरे जाएंगे। लेकिन हर्षित कहते, नहीं, आज तो जहां पना सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे, अपनी बेगम को आगोश में लिए हुए आराम। आखिर इतने दिनों बाद साथ रहने का मौका मिला था। संध्या के हाथ में कैमरा उन्हें अपना रकीब लगता जो उनका समय ले रहा है।

समाज में पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे पत्नी गीली मिट्टी हो और पति कुम्हार, जैसा चाहे वैसा गढ़े। बचपन से लड़कियों की परवरिश भी कुछ ऐसी ही होती है और संध्या भी ऐसी ही थी। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छानुसार कोई प्लान बनाना छोड़ दिया। रसोई में क्या बनेगा के अलावा किसी और निर्णय के बारे में बिना पूछे सोचना छोड़ दिया। दिमाग के कुछ तालों में दोहरा ताला लग गया। हर्षित के प्यार में डूबे हुए उसने जंगल में गहरे उतरने की जिद छोड़ दी। अब हर्षित जब बाहर होते तब भी वो कैमरा लेकर घर के आसपास तक ही निकलती थी। कुछ हर्षित का प्यार, कुछ शौक का, कुछ हद तक ही सही लेकिन पूरा होना। हर्षित अक्सर कहते, क्या बात है, मेरे साथ से तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही है, क्यों? धत, ये कहते हुए लाज से संध्या के गाल कचनार हो उठते। कुछ दिनों बाद पता चला कि चेहरे की चमक बढ़ने का कारण सिर्फ हर्षित का साथ मिलना और फोटोग्राफी के शौक का पूरा होना ही नहीं था। अब संध्या को काफी उल्टियां और दूसरी परेशानियां भी हो रही थी। यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी 40 किलोमीटर दूर देहरादून में ही उपलब्ध हो सकती थी। पहाड़ों के लिए 40 किलोमीटर की दूरी बहुत होती है, जबकि गांव के घर से 10 किलोमीटर पर ही राजधानी की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं। हर्षित ने एक रात उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सुनो, तुम्हें अब खास देखभाल की जरूरत है। घर की हजारों जिम्मेदारियों को छोड़कर माँ तो आ नहीं सकती यहाँ। कुछ दिन के लिए तुम्हारा घर चले जाना ही ठीक रहेगा, है ना? संध्या एक बार घर गई तो फिर वहीं की होकर रह गई। पहले शिवम के जन्म से पहले के 7 महीने, फिर शिवम के लगभग साल भर का होने तक वो गांव में ही रही। उसके बाद उसने कुछ ही महीने हर्षित के साथ उसकी पोस्टिंग वाली जगह पर बिताए ही थे कि मौली के आने की आहट आ गई। फिर लगभग 1.5 साल ससुराल में निकल गया उसका। दोनों बच्चों के साथ जब वो अंततः हर्षित के साथ रहने लगी, तब मौली 1 साल की और शिवम 3 साल का हो चुका था। इतने लंबे समय तक ससुराल के बंधनों में रहते हुए शादी से पहले की संध्या अब पूरी तरह खो चुकी थी। उसके अनजाने ही सारे तालों की चाबियां भी खो चुकी थी। अब उसकी दुनिया की सरहद घर तक, नजरों की सरहद पांव तक, दिमाग की सरहद घर के कामों तक ही सीमित थी, जिसमें किसी भी नए विचार का आगमन निषिद्ध था। पर वो दुखी नहीं थी, उसने अपनी इस जिंदगी को भी खुशी से स्वीकार कर लिया था।

0: दो बच्चे और संध्या एक अकेली जान। हर्षित तो अक्सर दौरे पर ही रहते। यूं तो उसकी मदद के लिए बहुत सारे नौकर थे, पर बच्चों का काम नौकरों से करवाना खुद संध्या को कभी पसंद नहीं था। वो सुबह बच्चों को ब्रश कराने से लेकर उन्हें नहलाने, तैयार करने, स्कूल छोड़ने, लेने जाने, खाना खिलाने, सुलाने, पढ़ाई करने जैसे सारे काम खुद ही करती। अब सारे दिन उसे चैन की सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। कभी किसी नाजुक पल में उसे याद आता कि बहुत महीनों से कैमरा बाहर ही नहीं निकला, कहीं उसके लेंस में फफूंद न लग जाए, तो वो कभी कैमरा निकालकर उसे झाड़ती, पोछती और कैमरे को अपने हाथों में थामे उसे सहलाने, उसे महसूसने बैठ जाती। कैमरा अंदर रखते हुए अक्सर एक लंबी सांस छूट जाती उसकी। धीरे धीरे ये अंतराल बढ़ता गया। एक बार कैमरे का ध्यान आया तो ये याद ही न आया कि वो रखा कहाँ है। संध्या ने भी ज्यादा कोशिश नहीं की। जब कैमरा मिला तब तक वो खराब हो चुका था। फिर भी कभी कभी किन्हीं नाजुक लम्हों में फोटोग्राफी को लेकर एक टीस सी मन में उठ जाया करती। धीरे धीरे इस टीस की जगह एक खाली पन्ने ले ली थी। हर्षित कहते, सुनो, सारे ऑफिसर्स की वाइफ शॉपिंग करती हैं, किटी पार्टीज करती हैं, तुम भी चले जाओ ना, मन लग जाएगा तुम्हारा।
1: वे सब बहाने से अपने गहने कपड़ों की नुमाइश करती है बस, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के इस माहौल में मेरा दम घुटता है हर्षित।
0: उनकी बातें संध्या को आकर्षित नहीं करती थी। अब उसे सिर्फ हर्षित की पसंद, शिवम के प्रोजेक्ट्स, मौली के साथ खेलना, यही याद रह गया था। शादी के एक साल बाद संध्या हर्षित के साथ कश्मीर गई थी। कश्मीर की हरी भरी वादियों में वो खो गई थी। वापस आते हुए भी वो रोड के दोनों ओर फैले धान और मक्के के खेतों की हरियाली में चिनार की ऊंचाई में गुम थी। लेकिन जवाहर सुरंग पार करते ही सामने खुशहाल हरियाली की जगह भूरे तीखे पहाड़ सामने थे, जैसे किसी ने हरियाली का सुख अचानक से छीन लिया हो। ऐसा ही संध्या के साथ अब

0: हुआ। जब बच्चे बड़े हो गए अब उन्हें दैनिक कार्यों में मम्मी की जरूरत नहीं थी, पढ़ाई कराने के लिए मम्मी की जरूरत नहीं थी, अब उनके खाली समय को आनंद से भरने के लिए मम्मी की गोद की जरूरत नहीं थी। संध्या का अंदरूनी खालीपन उतना ही बढ़ता गया जितना वो बाहर के कामों में खाली होती गई। अब वो कभी मौली को अपने साथ बिठाकर लाड़ करना चाहती तो कहती, मौली बेटा इधर आना।
1: मम्मा मम्मा मैं गेम खेल रही हूँ अभी।
0: तो कभी,
1: मम्मा मैं अभी सहेलियों के पास जा रही हूँ। हाँ,
0: वो कभी पढ़ाई में तो कभी प्रोजेक्ट में, कभी कुछ तो कभी कुछ, बस व्यस्त होती। शिवम और भी बड़ा हो चुका था, मम्मी उसके लिए सिर्फ एक मम्मी मैटेरियल ही रह गई थी जिनसे अपनी फरमाइशें पूरी करवा सकते हैं पर अपनी परेशानियों का हल नहीं पा सकते। ये संध्या की भी गलती थी कि न तो कभी उसने उन्हें बताया न ही हर्षित ने कि वो अपने समय में वन्य जीवन की एक उभरती फोटोग्राफर थी। पहाड़ों में चढ़ा करती थी, एनसीसी के सबसे अच्छे कैडेटों में एक कैडेट थी। हर्षित, शिवम और मौली संध्या की जिंदगी थे, बेशक उनकी जिंदगी की धुरी भी संध्या ही थी, लेकिन अब संध्या उनके लिए एक ऐसी आदत थी जिसका होना कोई खुशी नहीं देता पर न होना दुख जरूर देता था। अब बच्चों के पास सारी दुनिया की व्यस्तताएं थी, हर्षित अपने काम में मसरूफ रहते, बस एक वो ही थी जिसे खालीपन काटने को दौड़ता था। इस खाली दिमाग में उसे अब अपने शौक मुंह चिढ़ाते मिलते थे। हर्षित की बच्चों की प्यार में कही बातें भी उसे गहरे में चुभ जाती, बात बात पर उसके आंसू निकल आते। वो खुद भी अपने इन परिवर्तनों से हैरान परेशान होती। जब ऐसा होता बच्चे हर्षित खींच कर, आप तो बस रोना शुरू कर देते हो, कहते हुए उसे अकेला छोड़ जाते। हर्षित संध्या में आ रहे परिवर्तनों से हैरान था, हंसता खिलखिलाता घर बेवजह दुखों में डूबा सा लगने लगता था। एक बार शिवम को उनके स्कूल से वाइल्ड लाइफ कैंप में ले जाया जा रहा था। हर्षित सेमिनार में भाग लेने बाहर गए हुए थे। संध्या को शिवम ने बताया तो वो उत्साहित हो उठी, उसके अंदर का उत्साह का सूखा हुआ स्रोत छल छल आया था, लेकिन शिवम बेहद परेशान था।
2: ओफो मम्मा, पापा को भी अभी ही जाना था, यदि पापा होते तो वे कैंपिंग के बारे में कितना कुछ बताते मुझे, अब मैं क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा मुझे।
0: शिवम के चेहरे पर परेशानियों का मकड़जाल बिछा था, उसकी परेशानी से अनजान अपने खोए हुए उत्साह की डोर थामते हुए संध्या ने मन ही मन जरूरी सामानों की लिस्ट भी बना ली। उसने कहा, परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी तुम्हें, लाओ अभी मुझे लिस्ट दो। अविश्वास की नजर से देखते हुए परेशान शिवम के हाथ से वो लिस्ट लेकर देखने लगी। उस लिस्ट में कुछ गैर जरूरी चीजें थीं जो एक दो जरूरी चीजें छूटी हुई भी थीं। उसने अपने उत्साह की रौ में बहते हुए ये बात शिवम से कह दी। शिवम तो पहले से ही परेशान था, उसने ये सुनते ही संध्या के हाथों से लिस्ट ही छीन ली और खींच भरी आवाज में कह उठा, आप क्या जानो मम्मा, कुछ भी मत बोलो, जरूरी नहीं होगा तभी तो लिस्ट में शामिल नहीं होगा। शिवम इतना कहकर अपने पैर पटकता कमरे से चला गया। संध्या के उत्साह का नवांकुर इन शब्दों से कुचल गया। मैं नहीं जानूंगी वाइल्ड लाइफ कैंपिंग की जरूरतों के बारे में। अपेक्षा हमेशा हर्षित और बच्चों की जिंदगी की धुरी बने रहने की, यदि यही अपेक्षा पूरी होती रहती तो उसे जवानी में खुद से की गई अपेक्षाएं शायद याद भी नहीं आती। धुरी वो अब भी थी, लेकिन पहियों को यह एहसास खत्म हो गया था कि वे किसी धुरी की बदौलत ही आराम से चले जा रहे हैं। अपेक्षा अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने की, अपेक्षा उस आनंद की जो वो अपना शौक पूरा कर पाती थी। उसने उम्र के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने निजी आनंद की पोटली राह में कहीं फेंक दी थी, जिस तक पहुंचने की कोई राह उसे मिल ही नहीं रही थी। उसने राह ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि वो तो खुद से ही बंधी हुई है। उसका अवचेतन मन पहले भी और अब भी दौड़ना चाहता है, दौड़ता रहा है उस राह में जिसमें उसका एक अस्तित्व है, लेकिन इतने सालों तक

चेतन में रस्से से जकड़े हुए अवचेतन में बंधे बंधे दौड़ते हुए अब वो थक चुकी थी, हताश हो चुकी थी। अब जब उसने चेतन जगत में दौड़ना चाहा, तब वही हताशा उसके जीवन में दुख की काली बदरी बन छा गई। उसके सुख सुविधाओं, प्यार के नीले आसमान को ढकते हुए अवसाद की हद तक

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: जब इस अवसाद में दैनिक जीवन अस्त व्यस्त होने लगा तब हर्षित को स्थिति की गंभीरता समझ में आई। हर्षित संध्या को इस झूठे दुख के बादल से बाहर निकालना चाहते। संध्या चलो इस संडे नेचर वॉक पर जंगल चलते हैं, ठीक है? जवाब में मिलता मौन। संध्या चलो मूवी चलते हैं। तुम चले जाओ, मेरा मन नहीं है। हर्षित संध्या को बस पहले की संध्या बनाना चाहते थे। हंसती मुस्कुराती हर परेशानियों का चुटकियों में हल निकालती संध्या को वापस लाना चाहते थे हर्षित। वसंत आ चुका था, वो समय जिसमें प्रकृति अपने पूरे बाहर पर होती है, वो महीना जिसमें संध्या का जन्मदिन आता है। हर्षित ने इस बार संध्या को कोई बड़ा महंगा सा उपहार देने का नहीं सोचा। पिछले कई सालों में उन्होंने संध्या को डायमंड सेट, लग्जरी कार जैसे उपहार देकर खुश करने की कोशिश कर देख लिया था। इस बार वो सिर्फ एक बार संध्या के चेहरे पर उसकी पुरानी असली मुस्कुराहट लाना चाहते थे। बहुत दिनों तक वो सोचते रहे और पुराने दिनों की यादें दोहराते रहे। उस दिन वो ऑफिस से वापस आते हुए भी यही सोच रहे थे। मौसम तूफानी था, तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। अचानक हवा के साथ गुलमोहर के फूल की एक सुर्ख लाल पंखुड़ी कार के सामने के कांच पर आकर चिपक गई। ड्राइवर ने पानी हटाने के लिए वाइपर अपनी पूरी गति से चला रखा था, लेकिन वो पंखुड़ी चिपकी ही रही। हर्षित के मन में आया, जिद्दी पंखुड़ी। इस जिद्दी पंखुड़ी ने यादों का द्वार खोल दिया। हर्षित अपनी आंखें बंद कर उसमें अंदर उतर गए।

सालों पहले एक रात लॉन्ग ड्राइव के दौरान रोड किनारे खिले गुलमोहर को देखते हुए हर्षित ने कहा था, भगवान की सोच भी समझ से परे है, है ना? एक तो अप्रैल में ऐसे ही इतनी गर्मी रहती है, ऊपर से ये सुर्ख लाल गुलमोहर, ओह, इसका अंगारों सा चटक लाल रंग तो गर्मी को और बढ़ा देता है। इससे अच्छा तो अमलतास है जो देखने वाले को ठंडक तो देता है, क्यों? तब कुछ देर रुककर संध्या ने कहा था, मुझे तो गुलमोहर बहुत पसंद है। तपती धूप से लड़ते गुलमोहर को देख और अंधेरी रात में माणिक से चमकते गुलमोहर को देख मेरे होठों पर मुस्कुराहट अपने आप चली आती है।

हर्षित ने आंखें खोलकर सामने कांच को देखा। गुलमोहर की लाल सुर्ख पंखुड़ी अब भी चिपकी हुई थी। हर्षित के चेहरे पर खजाना खोज लेने की मुस्कुराहट आ गई हो जैसे। उन्होंने तय कर लिया कि संध्या के इस जन्मदिन में वो उसे गुलमोहर के लाल सुर्ख फूलों का गुच्छा देंगे। संध्या के जन्मदिन के दिन हर्षित एक दौरे से लौटते हुए उसके लिए गुलमोहर के फूलों का गुच्छा लेने जंगल में गुलमोहर के एक पेड़ के किनारे रुके। जब वे पेड़ के पास गए तो उस गुलमोहर के पेड़ की कोटर में नीलकंठ के छोटे छोटे बच्चे दिखे। वो उल्टे पैरों वापस लौट गए और संध्या को सरप्राइज गिफ्ट देने उस निपट जंगल में ले आए। खुद पेड़ से सट गए और आंखें बंद कर आगे बढ़ती संध्या का वीडियो शूट करने लगे। संध्या ने आंखें खोली जब नीलकंठ के छोटे छोटे

बच्चों को क्वार्टर में चहकते देखा, उसके चेहरे पर सैकड़ों जुगनू जैसे एक साथ चमक उठे। यही वो पल था जिसने संध्या को उस खोई हुई खुशी वापस लाने का रास्ता दिखाया, इसे पाने की राह खुद बनाने की हिम्मत दे दी। दूसरे ही दिन सुबह संध्या ने हर्षित से चाय पीते हुए कहा, सुनो, मुझे नेचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फिर शुरू करनी है। यही वो पल था जिसने हर्षित को एहसास कराया कि उसकी पुरानी हंसती खिलखिलाती चहकती संध्या कैसे वापस आ सकती है। फेसबुक और व्हाट्सएप तो वो समय बिताने को चलाती ही थी, इस बेमतलब के समय काटने के शगल ने सार्थक उद्देश्य पा लिया। अब संध्या ने कई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाले ग्रुप्स ढूंढे और उनकी सदस्य बन गई। धीरे धीरे परिचय बढ़ा, अपने ही शहर में एक नेचर क्लब और फोटोग्राफी क्लब का पता चला, उसके कुछ सदस्यों से पहचान हुई। कुछ दिनों में वो अपने शहर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्लब की सदस्य बन गई। उसके कार्यक्रमों में जाने लगी। अपनी इस रुचि में व्यस्त होने से रोती चिड़चिड़ाती संध्या अब हंसती मुस्कुराती संध्या में बदलने लगी। परीक्षा का अवसर तो तब आया जब 6 महीने बाद क्लब की 15 दिन की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हुआ। संध्या ने वहां जाने के लिए रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन अंतर्द्वंद में घिर गई। कहीं मैं पति और बच्चों के हक के समय को अपने शौक को पूरा करने में देकर गलत तो नहीं कर रही? यूं भी अपनी खुशी के साथ ग्लानी को जीना आम भारतीय औरत की सदियों की कंडीशनिंग है। संध्या भी इससे अलग नहीं थी। उधर हर्षित के लिए भी ये पहली बार था कि संध्या इतने दिनों के लिए घर के लोगों से अलग लगभग अनजान लोगों के साथ बाहर जा रही थी, लेकिन उन्हें खिलखिलाहट की और वापस लौटती संध्या की ललक भी थी। एक शाम जब वे डूबते सूर्य की लालिमा में अपाद मस्तक नहाए अपने अपने अंतर्द्वंद्वों से जूझते हुए चाय पी रहे थे, तब हर्षित ने भावुक होते हुए कहा, सुनो, मुझे समझ आ गया है कि वन्य जीवन फोटोग्राफी तुम्हारे लिए खुद को पाने का माध्यम है ना? तुम्हारी खुशी है इसीलिए मैं तुम्हें जंगलों में जाने की अनुमति तो दे रहा हूं, पर इसके लिए खुद को किस कदर मना रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। संध्या, अपने अस्तित्व को अपने परिवार में खो देने की हद तक भूल जाने वाली संध्या ने जब हर्षित के मुख से उसके प्रति हार्दिक प्यार और चिंता से उत्पन्न ये वाक्य सुना तो वो अपनी स्वतंत्रता के प्रति विशेषाग्रही हो उठी, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ में ना जाते हुए तुनक कर कह उठी, क्या मतलब? तुम मुझे जाने की अनुमति दे रहे हो? मतलब यदि तुम मुझे जाने की अनुमति न दो तो मैं कैंप में नहीं जा सकती? संध्या के लिए बरसों पहले खो गए और अभी नए नए मिले अस्तित्व की स्वतंत्रता बहुत प्यारी हो उठी थी, और उतनी ही प्यारी हर्षित के लिए संध्या की वापस लौटी हंसी थी। जब संध्या तुनकती तो अपनी सुतुआ नाक कुछ ऊपर की ओर सिकोड़ लेती, उसके माथे पर सलवटे पड़ जाती, उसकी भूरी नीली तीखी कटारी सी आंखों में बिजलियां कौंधने लगती। हमेशा से इस तुनके रूप में वो हर्षित को और भी प्यारी लगने लगती। हर्षित को लगा जैसे सालों बाद उसने संध्या का ये तुनका रूप देखा है, वरना इन दिनों संध्या जो बर्फीली ठंडक ओढ़े रहती वो हर्षित की रूह तक को कपकपा देती थी। पहले जब संध्या ऐसे तुनकती थी तब हर्षित उसे जल्दी मनाते नहीं थे, बल्कि उसे और चिढ़ाते, मजा लेते, फिर चुटकी बजाकर मना भी लेते। वो जानते थे कि संध्या उनसे अधिक देर नाराज नहीं रह सकती। लेकिन उस दिन हर्षित कुछ देर संध्या को मंत्रमुग्ध सा देखते रहे, लेकिन फिर आग में और घी डालने की जगह उन्होंने मुस्कुराते हुए खुद की गलती सुधार कर कहा, अनुमति नहीं सहमति, अब ठीक है ना? ये सुनते ही संध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। हर्षित को लगा जैसे बरसों से सूखा पड़ा पहाड़ी नाला अपनी ठंडी फुहारों से सराबोर करता छल छलाता सब बहने लगा है, जिसकी फुहारों से वो आपात मस्तक ही नहीं दिल की गहराइयों तक भीग गए। शिवम और मौली के लिए भी घर पर मम्मा की अनुपस्थिति को स्वीकारना बहुत मुश्किल था। घर में उनकी हर जरूरतों का ध्यान

रिश्ते वाली मम्मा अब कई दिनों के लिए बाहर रहती। उन्हें कई काम खुद से करने पड़ते थे। मम्मा की अनुपस्थिति ने उन्हें मम्मा के महत्व का एहसास करा दिया। इसी कैंप से वापस आने के बाद जब संध्या की खींची एकदम शुरुआती फोटो में से एक फोटो जिसमें एक मम्मा घड़ियाल अपने 25 बच्चों को अपनी पीठ पर चढ़ाए हुए नदी के पानी में तैर रही थी ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फोटो का खिताब अपने नाम किया तो संध्या की चर्चा समाचार पत्रों तक में हुई। स्कूल में टीचर्स और बच्चों ने भी उन्हें बधाई दी तो उन्हें पापा की तरह मम्मा का भी एक स्वतंत्र और खास व्यक्तित्व महसूस होने लगा था। उनकी निगाहों में माँ के लिए भी गर्व दिखने लगा। अब इसके बाद से उन्होंने मम्मा की कुछ दिनों की अनुपस्थिति को आवश्यक और महत्वपूर्ण मान स्वीकार कर लिया। हर्षित के लिए भी ये सहज नहीं रहा। संध्या पर निर्भर हर्षित पल पल उसकी कमी महसूस करते। कभी कभी वे कह उठते, सुनो मेरा तौलिया लाना, फिर अपनी जबान काट लेते। अलमारी में सामने ही रखी चीजों को कभी कभी उन्हें देर तक ढूंढना पड़ता। पहले तो वो तुरंत संध्या को कॉल कर देते, पर जब संध्या ने कह दिया कि हर छोटी छोटी चीज के लिए उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि यूं छोटी छोटी बातों के लिए संध्या उसके ऑफिस फोन करती तो। अब तक उन्हें लगता था कि सारे कामों के लिए तो नौकर हैं, संध्या को खास कुछ करना ही नहीं होता। लेकिन जब सलीके से चलता घर संध्या के जाते ही बेसलीका होने लगा तब उन्हें भी संध्या के कामों का उसके प्रबंधन का एहसास हुआ। वो भी तो संध्या की खुशी ही चाहते थे। भले ही पहले इसके लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन जब संध्या ने रास्ता ढूंढ लिया तो उन्होंने उसके शौक को पहले बेमन से फिर सहर्ष स्वीकार कर भी लिया। अब संध्या का फोटोग्राफी का शौक जुनून बन चुका है। वो अक्सर सप्ताहांत में छोटे छोटे ट्रिप बना लेती है। इन ट्रिप्स में हर्षित और बच्चे उसके साथ ही होते हैं। लेकिन वो साल में दो बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्लब की 15 दिन की वर्कशॉप में भी जाती है। हर्षित कहते हैं, जब मुझे और बच्चों को घर छोड़कर 15 दिनों के लिए जंगलों की खाक छानने निकल जाती हो तो हमारी जान भी तुम्हारे साथ ही चली जाती है संध्या। हर्षित कहना चाहते थे पर कहते नहीं। हर पल मेरा दिल अजीब सी आशंकाओं से पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह कांपता रहता है। उनके बीच ये अलिखित समझौता था कि यदि 2 दिन तक कोई कॉल न आया तो 3rd दिन हर्षित खुद हाजिर हो जाएंगे। वो रोज कॉल करती, रोज ईमेल करती, जिसमें पूरे दिन का ब्योरा होता। एक तरह से वो ईमेल में अपने सारे संस्मरण, यात्रा ब्योरे या यूं कहें तो डायरी ही लिखती थी जिसमें से जिंदगी छलकती होती।

इस बार संध्या को टूर पर गए 10 दिन हो गए। रात ने अपनी चादर उड़ाकर दुनिया को सुला दिया, लेकिन हर्षित और संध्या दोनों अलग अलग जगह चांद को देखते जागते रहे। जब संध्या के इंतजार के दिन थे तब खतों का सहारा हुआ करता था, तब हर्षित ने कहा था, तुम हर रात 10 बजे चांद को देखा करना, मैं तुम्हें रोज चांदनी के तारों से प्रेम संदेश भेजूंगा और तुम भी मुझे भेजना। अब संध्या ईमेल करती है और हर्षित इंतजार करते हैं उन संदेशों का जिन्हें वे चांदनी के तारों से नहीं भेज सकते। हर्षित संध्या का मेल आते ही लैपटॉप लेकर बैठ गए। सामने लैपटॉप की स्क्रीन के सफेद पर्दे पर संध्या के लिखे काले अक्षर चमकने लगे। कल मैं गांव के पास के जंगल में रोज की तरह किसी अच्छे फोटोशूट की आशा में गई थी। वहां मैंने नाले के तट की रेतीली जमीन पर छोटे छोटे पंजों के निशान देखे। हाँ, मुझे लगा कि ये निशान किसी तेंदुए के होने चाहिए। मैं सतर्क होकर आसपास के पेड़ों की शाखाओं पर निगाहें दौड़ाने लगी कि कहीं वह चोर शिकारी मेरे ही आसपास के किसी पेड़ पर तो छिपा नहीं बैठा है। एक बुजुर्ग आदिवासी बाबा मेरे लिए यहाँ गाइड का काम कर रहे हैं, हर्षित, उन्होंने कहा। माँ, अपना कैमरा संभाल लो, तुमको कई अच्छे फोटो मिल जाएंगे। यहाँ कोई शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ कर आया है ऐसा लगता है। मैंने पंजों के निशान दिखाते हुए उनसे कहा, अरे बाबा, ये तो तेंदुओं के पंजों के निशान है ना बाबा? इन छोटे छोटे निशानों के साथ कोई बड़े पंजे के निशान नहीं है। इसका मतलब है कि शेर का बच्चा अकेला ही भटक रहा है। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मुझे उन नन्हे शावक के बहुत सारे फोटो मिल गए। अब तुम ये चिंता मत करने लगना कि वो शावक का बच्चा अकेले कैसे रहेगा। आज उसी जगह पर शेर के पूरे परिवार के पंजों के निशान मिल गए हैं। जैसे वो शावक मुझसे फोटो शूट कराने की जिद में ही सबसे अलग हुआ था। मेरा आज और कल का दिन कमाल कर रहा है हर्षित, कमाल का। और हाँ सुनो, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि अब मैं बहुत से जानवरों के पंजों के निशान जमीन पर देखकर उनकी पहचान कर सकती हूँ। हाँ, एक जैसे पंजों के निशानों में बारीक अंतर को पढ़ सकती हूँ। इन बाबा को जंगल की बहुत सारी जानकारी है। जो जानकारी इनसे मिल रही है शायद वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिल सकती। हाँ, बच्चों के बिना इतने दिन रहना बहुत मुश्किल होता है। उनकी बहुत याद आती है हर्षित। और तुम्हारी तुम्हारी याद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, इतनी सी याद भी नहीं। तुम हर पल मेरे साथ होते हो, मेरी जिंदगी। तुम्हारे उस जन्मदिन के उपहार ने मेरी

जिंदगी बदल दी। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी हर्षित। हाँ तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, वरना वरना मैं तो खुद को खो ही चुकी थी और अपनी गलतियों से बच्चों को भी दूर करती जा रही थी। तुमसे जल्दी से जल्दी मिलने के इंतजार में। हाँ तुम्हारी संध्या। हर्षित ने मुस्कुराते हुए ईमेल की आखिरी दो लाइनों को पढ़ा और दोहराया, तुम्हारी संध्या, तुम्हारी संध्या। फिर संध्या को सोचते हुए मुस्कुराते हुए साइन आउट कर दिया था। उनके सामने संध्या का आश्चर्य में डूबा, खुशी के दरिया में आखंड तैरता, मालती के फूल सा चमकता चेहरा कंप्यूटर के स्क्रीन पर मुस्कुरा दिया। हर्षित ने यह फोटो उस वीडियो से स्नैपशॉट की थी जिसकी रिकॉर्डिंग उसने संध्या को उसका पसंदीदा उपहार देते समय की थी, वो पसंदीदा उपहार जिसके लिए भगवान ने उसे माध्यम बनाया था। यूं तो ईश्वर भी उसे ही माध्यम बनाते हैं जो माध्यम बनना चाहे, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है ना। हर्षित के उपहार के माध्यम से असली उपहार संध्या ने खुद खोजा था। उसने अपनी जिंदगी का क्लाइडोस्कोप ऐसा घुमाया कि जिंदगी अनोखे रंगों और आकल्पनों से सज गई। इसने संध्या को पहले वाली संध्या बना दिया। उसके जुनून ने उसको खुशी से मिला दिया कि एक जुनून जरूरी है जिंदगी में नून यानी नमक के लिए। हाँ एक जुनून जरूरी है जिंदगी में नून यानी नमक के लिए, यानी नमक के लिए।

ये थी श्रद्धा थवाइत की लिखी गीतों भरी कहानी जिंदगी में नून। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं चंद संदेश।

कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

और आइए अब सुनते हैं खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में शहरयार की रचना स्वर तलत अजीज का, और फिल्म का नाम है उमराव जान।

खय्याम साहब के ही संगीत निर्देशन में हम आपको जानिसार अख्तर की रचना सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है शंकर हुसैन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थीं विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: जी हाँ दोस्तों, आपकी चिट्ठियों का हमें बेसब्री से इंतजार है। आज ही सुनेंगे आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत दोपहर 3 बजे।

यह अवस्थी चित्रा सिंह की फिल्म का नाम था साथ साथ। इसे लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी कुलदीप सिंह ने। और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के साथ भूपेंद्र को, फिल्म का नाम है एतवार। इस गीत को हसन कमाल ने लिखा है और धुन बनाई है बप्पी लहेड़ी ने।

पेश खिदमत है कार्यक्रम की आखिरी गजल। मदन मोहन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज का मैटिनी शो। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम की ये है पहली कड़ी और इस कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ फिल्मी गपशप। क्यों, कैसा रहेगा दोस्तों? अच्छा रहेगा ना? देखिए ना, दोपहर का वक्त है और ऐसे समय में अगर हल्की फुल्की गपशप हो जाए तो कहने ही क्या। अच्छा, हम आपको बता दें कि आपको पता ही है कि कल 1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया था, है ना? तो क्यों ना आज इसी पर हम मैटिनी शो कर लेते हैं। देखिए ना, मजदूरों की मेहनत, संघर्ष और उनकी मजबूरियों को दर्शाने वाली कितनी ही बेहतरीन फिल्में बनाई गई हैं ना, जो समाज के इस अहम वर्ग की कहानी को बयां करती हैं। तो हमारी बहुत सारी फिल्में इसी श्रम पर बनी हैं। चलिए तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ समय उन आइकॉनिक फिल्मों के लिए निकालते हैं जो मजदूरों के अधिकारों और संघर्ष के बारे में बताती हैं, श्रम के महत्व के बारे में बताती हैं। सबसे पहले 1957 की फिल्म नया दौर की बात करते हैं। जी हाँ, वही नया दौर। इसके गीत तो आप सभी को बहुत पसंद हैं। इस फिल्म को भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर माना गया है और इस फिल्म में दिलीप कुमार अपने साथी मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला अपने अद्भुत अभिनय से हमारा मन मोह लेती है और इस फिल्म का ये गीत साथी हाथ बढ़ाना एक अमर गीत बन गया हो जैसे।

फिल्म नया दौर में अभी आपने मोहम्मद रफी आशा भोंसले को सुना, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और ओपी नैयर साहब की धुन थी। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल हर दिन यानी साल का जो पहला दिन है मई का, उसे हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अन्य दिनों में इस वर्ग के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि ये वर्ग इतना अहम है हमारी जिंदगी के लिए कि बड़े पर्दे पर हमेशा से ही आम आदमी के जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं को बखूबी दिखाया गया है। अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो पुराने समय से ही फिल्मों में मजदूर और उसके संघर्ष को फिल्माया गया है। समाज में अपना अहम योगदान देने वाले इन मजदूरों के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनका जिक्र हम अक्सर करते हैं और ऐसी फिल्मों को हम पसंद भी करते हैं, और ये फिल्में अपने समय की आइकॉनिक फिल्में बन गई हैं और इन फिल्मों को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। अगर 1953 की फिल्म दो बीघा जमीन की मैं बात करूं तो आप जरूर मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे, है ना। देखिए, 1953 में ये फिल्म आई थी, दो बीघा जमीन, बिमल रॉय की फिल्म थी और बड़ी ही क्लासिक फिल्म थी। एक किसान अपनी जमीन बचाने के लिए शहर में रिक्शा चलाने के संघर्ष पर ये पूरी फिल्म

0: बनाई गई जो श्रमिक वर्ग की परेशानी को बहुत ही मार्मिकता के साथ दिखाती है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
1: भाई रे
0: ईश्वर लता मंगेशकर बन्नाडे और साथियों के हैं। दो बीघा जमीन के लिए शैलेंद्र ने इसे लिखा और सलील चौधरी ने संगीत में ढाला। क्या शानदार गीत है।

जी हाँ, तो इस समय हम मैटिनी शो पर बात कर रहे हैं, आज मजदूरों पर, श्रमिकों पर और श्रम पर। आप सभी जानते हैं एक फिल्म आई थी बूट पॉलिश, 1954 में बनी, राजकुमार की, राज कपूर साहब की, क्षमा कीजिए, फिल्म जो थी गरीबी, अभाव और विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी, आत्मसम्मान और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाती है। ये फिल्म बच्चों के संघर्ष और उनके जज्बे की अमर कहानी है। बूट पॉलिश फिल्म आपने देखी होगी और जरूर आप बच्चों के अभिनय से प्रभावित हुए बिना नहीं रह गए होंगे, है ना। फिल्म में जो पात्र थे भोला और बेलू, वो अभावों में भी भीख मांगने से इनकार करते हैं और बूट पॉलिश करके अपनी मेहनत की रोटी कमाने का रास्ता चुनते हैं। लेकिन अगर हम अब देखें श्रोताओं, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारत में बाल श्रम अधिनियम जो है 23 दिसंबर 1986 को आधिकारिक

औपचारिक रूप से लागू हुआ था। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में काम करने से हमें रोकना है। और इसका संशोधन 2016 में हुआ था, जिसमें ये संशोधन किया गया कि बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन 1986 के रूप में जाना जाए। और हाँ, अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्ण निषेध और 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक व्यवसायों में काम करने पर ये अधिनियम रोक लगाता है। लेकिन जब बात चल रही है फिल्म की, तो फिल्मों में बाल श्रम को बहुत भी दर्शाया गया है।

ये था बूट पॉलिश फिल्म का गाना मन्ना डे, मधुबाला झवेरी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम बूट पॉलिश तो था ही, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने इसको संगीत में ढाला था। और जब बात मैटिनी शो में हम बात कर रहे हैं श्रमिक वर्ग की, तो एक फिल्म आई थी पैगाम, 1959 में ये फिल्म आई थी और एस वासन द्वारा निर्देशित। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राज कपूर ने बहुत ही बखूबी काम किया था। राजकुमार इस फिल्म में थे और ये औद्योगिक मजदूरों और मिल मालिकों के बीच के वर्ग संघर्ष को दर्शाती हुई ये फिल्म थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

पैगाम फिल्म का गीत अभी आपने मन्ना डे और साथियों का गायवा सुना, प्रदीप के बोल थे और सी रामचंद्र की धुन थी। तो हम बात कर रहे हैं मजदूर वर्ग की, श्रमिक वर्ग की। एक और फिल्म आई थी कुली, जी हाँ, समाज के वंचित वर्ग और उन शोषित लोगों की कहानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया था, जो मुश्किल से अपना पेट भरते हैं और मुश्किल हालातों में अपनी जिंदगी चलाते हैं और उन्हीं वर्ग के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म कुली का ये गीत। शब्बीर कुमार की आवाज है और आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19650, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें

तो दोस्तों मैटिनी शो में आज हमने मजदूर और श्रमिक वर्ग को लेकर बातचीत की, फिल्मी गपशप की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो मैटिनी शो का आज का ये अंक यही खत्म होता है।

0: आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सूत्रों के अनुसार पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ

0: पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व तो बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माही में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए चुने हैं सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में सजे कुछ फिल्मी गीत।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म का नाम है जागते रहो।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। आई सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा गीत अभी आपने सुना। स्वर लता मंगेशकर और साथियों का था। फिल्म का नाम था जागते रहो।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म माया का गीत, स्वर लता मंगेशकर, द्विजेन मुखर्जी और साथियों के मजरू सुल्तानपुरी की रचना है सलील चौधरी की धुन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है अन्नदाता, गीतकार हैं योगेश और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म मधुमती का गीत सुनवा रहे हैं। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सलिल चौधरी की।

लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म मधुमति में सुना। आइए सुनते हैं इसी आवाज में फिल्म हनीमून का गाना। गीत रचना शैलेंद्र की है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

योगेश का लिखा गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे। मुकेश का साथ दे रही थी लता मंगेशकर। फिल्म का नाम था अन्नदाता।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था परख। इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा और धुन बनाई वही यानी सलील चौधरी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकर कर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध।

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
3: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया।
2: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज फिल्म का नाम पूनम की रात।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर। मई महीने के दौरान देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य और सामान्य से नीचे रहने के आसार हैं। वहीं इस महीने देश भर में औसत वर्षा सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। इस बीच राज्य में तेज गर्मी और आंधी बारिश का मिला जुला दौर जारी है। पश्चिमी जिलों में जहां तेज गर्मी का असर है, वहीं पूर्वी और मध्य राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आज सुबह राजधानी जयपुर, चूरू, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, झुंझुनू सहित कई स्थानों पर मौसम बदला और तेज रफ्तार हवाओं के साथ कुछ देर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके असर से 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। राज्य में मई के शुरुआती 15 दिनों में सामान्य से कम गर्मी रहने और लगातार आंधी बारिश का दौर बने रहने के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और अन्य जिलों में फिलहाल तेज गर्मी का प्रकोप है। धूप की तपिश और गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं। 44.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कल बाड़मेर प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित केंद्रीय अधिकारी समिति सीईसी के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल कल धौरपुर पहुंचे। उन्होंने चंबल नदी क्षेत्र में अवैध खनन के हालात का जायजा लिया। श्री गोयल ने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अवैध खनन कार्य में लगे वाहनों को जब्त कर उनकी आरसी निलंबित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि देश में वन, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अदालत के आदेशों की अनुपालना की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी का गठन किया है। चंबल क्षेत्र में अवैध खनन के मामले में 11 मई को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट का परीक्षण किया। आज 12:45 लोगों के मोबाइल पर सायरन की आवाज के साथ स्क्रीन पर आपातकालीन चेतावनी नजर आई। सायरन बंद होने के बाद अलर्ट मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। गौरतलब है कि एनडीएमए ने आपात स्थिति के समय लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए आज सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। इससे चुने गए इलाके में सक्रिय मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट सकेगा और इमरजेंसी के समय रियल टाइम सूचना मिलेगी। ऑपरेशन म्यूल हंटर के दौरान साइबर पुलिस ने बांसवाड़ा में ऑनलाइन ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। अप्रैल महीने में चलाए गए इस विशेष ऑपरेशन के दौरान साइबर धोखाधड़ी और संदिग्ध बैंकिंग नेटवर्क वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों में 21 शिकायतें दर्ज हैं। इनसे करीब 82 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली है। आज नारद जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के साथ अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। भरतपुर और भीलवाड़ा में नारद जयंती के मौके पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने दुनिया के पहले पत्रकार महर्षि नारद के योगदान पर प्रकाश डाला। महर्षि नारद को निर्भीक, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ संवाद का प्रतीक माना जाता है। झुंझुनू जिले के खिदरसर गांव में आज प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री भांबू ने विद्यालय में 10 किलोवाट क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित करवाने और करीब 6000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में इंटरलॉकिंग का काम करवाने की भी घोषणा की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इससे पहले कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स जीत के 225 रनों के लक्ष्य को 19 ओवर ए गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। 21 जून को

मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस दौरान आयुष मंत्रालय देश भर में जागरूकता अभियानों और सार्वजनिक प्रदर्शन की श्रृंखला आयोजित करेगा, जिससे जनता के बीच योग की गहरी पहुंच बनेगी। मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य योग दिवस की तैयारियों में तेजी लाना और योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

फिल्में बनी है, जैसे कि ये काला पत्थर है और बहुत सारी फिल्में पत्थर के साथ बनी है। आगे पीछे कुछ नाम जुड़े हैं, बताइए कौन कौन सी फिल्में हैं जिनमें पत्थर भी है जुड़ा हुआ। और हाँ, हम आपको बता दें कि कल जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी इसकी जो पहली कड़ी कल शुरू हुई थी, तो हमारे वरिष्ठ उद्घोषक यूनुस खान साहब ने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम को किस तरह से समझना है और किस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लेना है। आपको समझ आ ही गया था कि हर रोज हम एक इबारत फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और इस इबारत में शामिल शब्दों में से कुछ कुछ चुनकर सुनवाएंगे सुरीले सफर के गाने। तो आपको इबारत पढ़कर अंदाजा लगाना है कि कौन से शब्दों पर आज गाने आ सकते हैं। तो आज आपने हमारी इबारत पढ़ी होगी कि जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं जो बाजी मार लेते हैं। कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसों से भरी है, यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कोई पैदल चला जा रहा है तो कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा ही तो है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने, दुनिया को समझने का एक तरीका और है क्या कि सुकून से ये खा लेना, यानी पान खा लेना, ताकि थोड़े मुश्किलें हमें लगे हल हो चुकी हैं और हम अपनी धुन में कुछ गाते चले जाएं। तो बताइएगा कौन कौन सी फिल्में आज हमने आपके लिए चुनी है। कुछ लोगों ने अंदाज लगाया है, कुछ लोगों ने हमें लिखा भी है कि भाई आज जिंदगी कठिन राह दिखाने वाली है और इसमें दुनिया पान आदि शब्द मंदाकिनी जी ने लिए हैं। पान खाए सैया हमारो, अच्छा आपने गीत चुना है और आपने चुना है एक और गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में हम सभी मंदाकिनी जी के साथ दूर तक जाएंगे, फिलहाल सभी को दोपहर की प्यार भरी नमस्ते हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आज की इबारत में आपने जो शब्द चुने हैं शायद वो है जिंदगी, रास्ते, दीवाने, बाजी, खाली हाथ, पैसे, फूल, कांटा, बाबूजी, दुनिया, राम, पान। इन शब्दों का सुंदर चुनाव है। जब हम इन शब्दों के माध्यम से अपना सुरीला सफर तय करेंगे तो जिंदगी के हर रास्ते पर एक नया गीत सुनाई देता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज ये जो जीवन है परिस्थितियों का दास है, कभी बाजी इस किनारे तो कभी उस पार, मगर जीवन की बाजी चाहे कितने ही पहलू क्यों न हो उसके, दोस्तों का साथ हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं और पथरीला रास्ता सुगम हो जाता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन बताइए तो सही कि आज इन शब्दों पर हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। अब देखिए, हम तो आपको बताएंगे क्योंकि हमने जो गीत आपके लिए चुने हैं उसमें एक गीत बहुत खास है, क्योंकि जिंदगी का ये सफर है सुहाना और यही है जीवन का सटीक अंदाज। हर लम्हा हर क्षण बहुत कीमती है और एक बार गुजर जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो जीना हर पल में है, मुस्कुराकर जिए तो क्या हर्ज है, नए दोस्त बनाइए, नफरत मिटाइए, खुद को संवारते चलिए। जीवन बहुत सरल और सादा है और हमने इसे जटिल बना दिया है। तो कैसा होना चाहिए इंसान को, वो इंसान ही क्या जो दिल से अमीर न हो, और वो अमीर ही क्या जिसका दिल फकीर न हो। तो हमारे अंदर एक फकीराना अंदाज होना चाहिए और एक दीवानगी होनी चाहिए। हम तो भाई ऐसे ही हैं दीवाने। फटाफट बताइए हमने और कौन से गाने आपके लिए चुने हैं।

हमने आपसे पहला सवाल किया था कि पत्थर फिल्म पर कितनी और सारी फिल्में बनी है हमें बताइए, और अब हमारा दूसरा सवाल जो आपने अभी गीत सुना, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, उसमें जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो कलाकार कौन है और उनके साथ जो नर्तकी है यानी जो बंजारा नृत्य कर रही है वो कौन सी कलाकार है? जी हाँ, ढूंढिएगा कि हारमोनियम जो बजा रहे हैं इस गाने में वो कौन सी कलाकार है और जो नर्तकी हैं साथ में नाच रही हैं वो कौन सी कलाकार है, उनके बारे में बताइए हमें। जी हाँ, बताना तो पड़ेगा क्योंकि इस कार्यक्रम में तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हम आपके लिए इबारत लेकर आए हैं उसमें आप क्या समझे हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अब देखिए, हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि भई ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत सारी बातें समझनी और लिखनी होती हैं तो इसके लिए मुश्किल है क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। आपने जो पहेलियां हमारे लिए रख छोड़ी हैं इस कार्यक्रम के जरिए वो बड़ी मुश्किल हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, दीवाने हैं तो बाजी मार लेते हैं, ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम अच्छा है लेकिन आपने इसे दोस्तों जिंदगी दीवाने बाजी हाथ पैसे फूल कहीं कोई चला बाबूजी दुनिया एक और पान जैसे शब्दों पर लाकर ठहरा दिया है जो हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर को शुरू करने के लिए कुछ रुकावटें आ रही हैं और हमारा मोबाइल हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने जिस तरह से इसको पिरोया है भाई उसे समझना आसान तो नहीं है, आज सुरीला सफर आसान नहीं लेकिन कुछ जज्बाती जरूर है जिसमें जिंदगी रास्ते बाजी दीवाना पैसा चलना फूल का

कांटे बाबूजी दुनिया अपनी धुन जैसे कुछ शब्दों को लेकर आपने गाने चुने हैं, पर कौन कौन से चुने हैं ये हम नहीं बता पा रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, इस दुनिया में जिंदगी के रास्ते फूल और कांटों पर से चलते चलते दीवाने लोग गुजरते हैं, बाबूजी आगे चलकर बाजी कौन जीतेगा ये तो राम जाने। उन्होंने कुछ गाने लिखे हैं कि आपने नमस्ते दिल तेरा आशिक का या एहसान या रास्ते पर रास्ते जाने वाली दीवाने हैं दीवानों का न घर जीत ही लेंगे बाजी हम तुम जैसे बहुत सारी गीतों को लिखकर भेजा है, लेकिन हम आपको बता दें सिर्फ एक गीत दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए ये हमारी लिस्ट में जरूर शामिल था जो आपने अभी सुना, लेकिन बाकी गाने हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो सफर जब हम निकल ही पड़े हैं दोस्तों, तो देखिए सफर में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहीं घोड़ा, कहीं गाड़ी, कहीं कार, कहीं पैदल चलने वाले लोग, कहीं ट्रेन, कहीं बहुत कुछ साधन अपनाने वाले लोग जो अपने अपने साधनों से चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, ना किसी की चिंता ना किसी की फिक्र, बस अपनी ही मंजिल अपनी ही दौड़। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं रहता कि किसी के जीवन पर किसी के दिल पर क्या गुजर रही है।

अच्छा बताइएगा, आप कभी किसी रिक्शा पर बैठे हैं, आपने रिक्शा की सवारी ली है और आपको लगा है कि जो रिक्शा चला रहा है उसकी हालत क्या होती है जब हम अतिरिक्त भार उसकी रिक्शा पर लाद देते हैं, कभी सोचा आपने?

0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि अरे भाई, विविध भारती का ही कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, थोड़ा लेट हो गया हूँ इसलिए सुहाने सफर की गाड़ी अगले स्टेशन से पकड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं पकड़ लीजिए, अभी भी मौका है गाड़ी पकड़ने का।
1: अरे सामने क्या देख रहे हैं, उन्हें पीछे से पॉकेट मार रहे।

जी हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन इस नए कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लग रहा है, ये कार्यक्रम नया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इबारत है, लगता है आज के गीत जिंदगी और दुनिया के इर्द गिर्द होंगे, जैसे जिंदगी कैसी है पहली या जिंदगी एक सफर है सुहाना, बेसब्री से इंतजार रहेगा। भाई आज हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि हमारे श्रोता लगभग हार गए हैं हमसे, क्योंकि आपने जो प्लेलिस्ट बनाई है हमारी इबारत पढ़कर, वो गाने हमसे तो मेल नहीं खा रहे हैं, थोड़ा दिमाग पर और जोर लगाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार को हमारा नमस्कार, इस चिलचिलाती धूप में भी ठंडा का सफर जारी है जो विविध भारती से हमें मिल रहा है, तो ये सुनहरा चमकता दमकता सफर ठंडी फुहार की तरह चलता रहे, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पिछला प्रोग्राम गीतमाला में आपने हम सभी श्रोताओं के खूब कॉमेंट्स दौरान प्रोग्राम में शामिल किए, वैसे ये नया प्रोग्राम है सुरीला सफर, पूरी तरह समझ तो आ गया है लेकिन देखते कि हम श्रोताओं के कितने गीत आपके चुने गीतों से मेल खाते हैं। सुरीला सफर नाम के अनुसार बहुत ही सुरीला होने वाला है, निश्चित है ये कार्यक्रम सुरीला है, लेकिन ये और सुरीला तब होगा जब आप हमारे गाने, आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएंगे। जी हाँ, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियों से पूर्ण संगीतमय सफर सुरीला सफर जरूर चलेगा, और आप पेचीदा प्रश्न पूछ रहे हैं पर गाने मजेदार हैं, प्रोग्राम प्रस्तुति का अंदाज हाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है इस कार्यक्रम में। तो भाई कार्यक्रम अलग है तो प्रस्तुतकर्ता का अंदाज भी अलग होगा ना। तो आपने हमें बताया नहीं, हमने दो सवाल आपसे किए थे उनके बारे में बताइए कि पहला कि पत्थर फिल्म से और कितनी फिल्में बनी है जिसमें, जैसे काला पत्थर है या इस तरह की बहुत सारी फिल्में जिसमें पत्थर शब्द भी जुड़ा है, ऐसी फिल्मों के नाम बताइए। और साथ ही हमने कहा था कि दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, इस फिल्म में हारमोनियम कौन बजा रहे हैं और साथ में जो नर्तकी है वो कौन है।

अच्छा, साथ में एक तीसरा सवाल ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रिक्शे पे आपने सवारी कब की थी और क्या कभी रिक्शा वाले से आपने मोल भाव किया? देखिए जनाब, ये जिंदगी है और जिंदगी में ये सफर जारी रहेगा जब तक हमारी जिंदगी है, यानी अंतिम सांस तक हम इस सफर में चलते रहेंगे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इस सफर में हमें देखने सुनने को मिलती है। याद करिए वो पुराना जमाना, वो देसी मनोरंजन यंत्र जिसे बेतार का टीवी या चलचित्रदर्शी भी हम कहते थे, याद आया आपको? ये एक लकड़ी का बक्से जैसा होता था जिसमें लेंस लगे होते थे और उसके माध्यम से हम पुरानी रीलों को, तस्वीरों को घुमा घुमा कर घुमा

कितने सफर में हमें देखने सुनने को मिलती है। याद करिए वो पुराना जमाना, वो देसी मनोरंजन यंत्र जिसे बेतार का टीवी या चलचित्रदर्शी भी हम कहते थे, याद आया आपको? ये एक लकड़ी का बक्से जैसा होता था जिसमें लेंस लगे होते थे और उसके माध्यम से हम पुरानी रीलों को, तस्वीरों को घुमा घुमा कर ऐतिहासिक स्तर और फिल्मों के दृश्य देखते थे। याद कीजिए बक्से नुमा वो यंत्र, जब वो आदमी आवाज लगा लगा कर हम बच्चों को लुभाता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसमें लेंस और अंदर रील चलाने की व्यवस्था होती थी और हम एक आंख गड़ा कर उसको देखा करते थे और इसमें हमें कुतुब मीनार, गोल घर जैसे विदा जाने कितने चित्र दिखाए जाते थे। याद आया? नहीं तो ये गीत सुनते हैं, फिर बताइएगा आपके बचपन में ये दिन कब आया था।

याद आया हम किस यंत्र की बात कर रहे हैं? आज के मल्टीप्लेक्स के दौर में ये तो एक लुप्त हो गई है कला जो अक्सर बचपन की यादों के रूप में याद की जाती थी। याद करिए,

0: जी हाँ, आपको याद आया उस यंत्र का नाम? बायोस्कोप, हाथ से घुमाकर चलने वाला, चलता फिरता वो सिनेमा घर, जहाँ हमें बुलाकर एक आंख से वो चित्र दिखाए जाते थे, है ना?
1: अच्छा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही, तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक
2: तो हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये बायोस्कोप है जो बचपन में हम देखा करते थे, और इस बायोस्कोप को देखने के बाद हमें लगता था जैसे हमने बहुत बड़ी फिल्म देख ली है ना? तो हम आपको बता दें, दुश्मन फिल्म का गीत था ये, लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर आपने गीत सुना।

खींच रहा है व्यक्ति, उसकी हालत कैसी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों का सुरीला होगा, दोस्त होंगे मंदाकिनी जी, न हो ये हो ही नहीं सकता। हमें पता था कि आप इस कार्यक्रम में आएंगी और आप आ गई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दीवाने ही तो हैं जो बाजी मार लेते हैं, जो ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं, तो खाली जेब भी में भी ख्वाब भर लेते हैं। कहीं फूलों की खुशबू बसी है तो कहीं कांटों की चुभन है, कोई पैदल धूप में तपता है, कोई घोड़े पर हवाओं के साथ है। पर बाबू जी, दुनिया सचमुच एक तमाशा है, हंसी और आंसू का एक झमेला है। यहाँ हर धड़कन का मूल लगा है, ये खेल भी क्या बस पैसों का मेला है। फिर भी एक और तरीका है इसे समझने का, थोड़ा ठहरने का, थोड़ा मुस्काने का, एक पान का बीड़ा लगाकर अपनी ही धुन में गुनगुनाने का। गम को भी गीत बना लें, थकान को तान बना लें, सफर को यूं ही नहीं सुरों से सजा लें, मुस्कान से सजा लें, क्योंकि जब दिल से आवाज निकलती है तो राहें आसान हो जाती है और ये दुनिया तमाशा नहीं एक सुरीला सफर बन जाता है। जी, सुरीले सफर पर जब हम निकल ही गए हैं तो और भी बहुत कुछ हमें देखने सुनने को मिलता है। क्या आइए सुनते हैं इस गीत में।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि काला पत्थर का ये गीत आपने बजा ही दिया, मैं तो अभी इसी गीत के बारे में सोच रहा था। राजेश रोशन का संगीतबद्ध ये गीत मोटरसाइकिल पर बैठकर शशि कपूर जब गाते हैं तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, आप ही लिखते हैं कि दिल्ली में पिछले 20 वर्षों में मैं कभी भी हाथ रिक्शा पर नहीं बैठा, मुझे इन पर बहुत दया आती है। भले ही मैं पैदल चला जाऊं, ये रिक्शा वाला गाना महमूद पर फिल्माया गया था जो मुझे बेहद पसंद है और इसमें भी राजेश रोशन साहब का ही संगीत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम रिक्शे पर बैठ तो जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि जो रिक्शा

0: क्या आपको लगा था कि बाबू शब्द पर ये गीत आने वाला है?
1: सुनते जाना,
2: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
2: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
3: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
2: बाबू आना, सुनते जाना।
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।

नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा, अरे जा जा जामू धो गया, तू जा जा, अरे जा जा जामू धो गया।

पहाड़ी है काटे की लाला।

0: सुनने वालों मारो एक बार तालियां, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियां।
1: रुक जा निकाल की मैं तेरा दीवाना,
0: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला।

झुमरू फिल्म का गाना था बहुत ही मजाकिया गीत। किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और किशोर कुमार का ही संगीत था। जी हमारे श्रोता जो अपने गानों की लिस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उनमें कुछ कुछ गाने हमारी लिस्ट से मिल रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट से मिल रहे हैं, लेकिन सभी गानों पर हमारे श्रोता अपनी पकड़ नहीं बैठा पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पोस्ट भेजी है उसके हर शब्द पर गाना निकालते हैं। विविध भारती के सुरीला सफर में आज इन्हीं शब्दों पर गाने बजेंगे। जिंदगी पर आपने गाना निकाला है, कठिन रास्तों पर, बाजी पर, कांटे पर, फूल पर, बाबूजी पर, दुनिया पर, तमाशा पर, लेकिन गीत आपने बहुत अच्छे निकाले हैं लेकिन हमारी लिस्ट से आपका कोई भी गीत नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। हाँ, एक गाना जरूर मिल रहा है, वो हम आपको सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीदी जी सुरीला सफर की प्लेलिस्ट तैयार है, किस शब्द से शुरू करें, जिंदगी से या दुनिया से। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मैं गाना जो है गुलशन बावरा जी हारमोनियम के साथ है, गीतकार बिल्कुल सही कहा, और नृत्य करने वाली नायिका का नाम है संजना। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो हैं गीतकार और अभिनेता गुलशन बावरा, और उनके साथ जो नृत्य कर रही है नायिका वो है संजना। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्यक्रम नया है फिर भी मेरे अंदाज से कुछ गीत जरूर सुनने को मिल सकते हैं, जैसे मिले ना मिले, फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बाबूजी धीरे चलना, इस तरह के कुछ गाने, और आखिर में तो तय है कि खाई के पान बनारस वाला गीत तो हमें सुनने को मिलेगा ही। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुहाना सफर एक नया कार्यक्रम है, बहुत पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन कुछ समझ में कम आया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अच्छा, आप हमारी तारीफ लिखते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक लग रहा है। एक श्रोता ने जिंदगी पर कुछ गीत लिखे हैं लेकिन वही बात कि सिर्फ एक गाना हमारी लिस्ट से आपका मिल रहा है। तो जो अभी मजाकिया गीत आप सुन रहे थे, बाबू आना सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका लूट न जाना, बताइए कभी आप लूटे इस महंगाई से? कहीं जाकर आपने कोई खरीदारी की हो और आपको पता चले कि भाई दुकानदार ने आपको लूट लिया और ज्यादा दाम लगा दिए, कभी पता चला आपको? अगर हाँ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आपने क्या किया इसके बारे में हमें लिखकर बताइए। और हाँ, जिंदगी के इस सफर में देखिए फूल हैं तो कांटे भी हैं, कई बार ये होता है कि कांटा लग जाता है तो गाना निकलता है क्या, कांटा लगा हाय लगा। हाँ।

0: जी हाँ, तो हमारी इबारत में आपने पढ़ा था, कहीं फूल है तो कहीं कांटा, तो ये गाना क्या आया, कांटा लगा है ना। तो इसी प्रकार जो हमने लिखा है उसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गीत छिपा है। और अब आप दोस्तों को दिमाग लगाना है, अभी जोर लगाना है कि कौन सा गीत हो सकता है। बहुत सारे गीत आपने लिख कर भेजे हैं, ऐसी बात नहीं है, आपने कोशिश बहुत की है, लेकिन हाँ एक या दो गीत हमारी लिस्ट से मिल पाए हैं, हमारी प्ले लिस्ट से मिल पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे नियमित श्रोता है, कि भाई ये इबारत है क्या, अगर इबारत का अर्थ आप समझा पाए तो मैं कुछ लिख सकूं। ऐसी बात तो नहीं है कि आप इबारत के बारे में नहीं जानते होंगे, आपने जिस अंदाज में लिखा है वो अंदाज थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन हाँ इबारत मतलब जो लेख हमने आपको दिया है, जो तहरीर, जो मजमून, जो लिखावट, जो लेखन शैली हमने आपके लिए रखी है, जो लेख या पाठ है ना जो आपके लिए रखा है उसको पढ़िए। जो गद्य, इसे आप बहुत अगर हिंदी में समझना चाहते हैं कि हमने जो गद्य के रूप में लिखा है विचार, उस विचार या पाठ को आप पढ़ें और उसमें से निकालें कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि कांटा, कहीं फूल है कहीं कांटा, तो कांटा लगा। और अभी था जैसे थोड़ी देर पहले कोई घोड़े पर दौड़े जा रहा है, तो ये है घोड़ा है ना, मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी। इस तरह के गीत हमने आपके लिए चुने ताकि थोड़ी सी दिमागी कसरत हो जाए और आपकी और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। कैसे, कि हमारे विचार आपके विचार एक हो जाएं, वही कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इबारत का मतलब क्या है और अब आप तुरंत अपने विचार हमें लिखकर भेजने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, लता मंगेशकर की आवाज थी, फिल्म का नाम था समाधि, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्वन का संगीत। हम समझ सकते हैं कार्यक्रम नया है इसलिए समझने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दिमागी काम है और हमें सोचना पड़ता है कि इस शब्द पर कौन कौन से गाने कहे गए हैं, लिखे गए हैं और हमने कौन से गाने छांटे हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है, सबसे अच्छी बात यही है, और क्या कह सकते हैं, आपको शुक्रिया। जी, और अब वो गाना आपके लिए पेशे खिदमत जो आपकी और हमारी लिस्ट में है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा, आहा। अरे

0: भला खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला।
1: किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था डॉन। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई बनारसी पान तो हम सबने लगभग खाया होगा, लेकिन आपने अपने शहर में कौन सा पान खाया है और वो पान कैसे लगाया जाता है, आप कौन सा पान खाते हैं इसके बारे में बताइएगा। और हाँ, पत्थर पर जब हमने कुछ सवाल आपसे किए थे, एक दो श्रोताओं ने लिखा है कि लाल पत्थर, फूल और पत्थर। जी हाँ बिल्कुल, इसके अलावा बहुत सारी फिल्में पत्थरों से बनी है, पत्थरों का शहर, लाल पत्थर, फूल और पत्थर, पत्थर, पत्थर के फूल, पत्थर के ख्वाब, पत्थर दिल, है ना, और हीरा और पत्थर, पत्थर के लोग, बहुत सारी फिल्में पत्थर शब्द पर बनाई गई है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं जहां आशा भोंसले और मन्ना डे साहब गा रहे हैं फिल्म आंखें का गीत। साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि की धुन है।

0: पानी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच 12वां पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं।
3: हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष

0: गिरफ्तार लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक

0: दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारत।

शक्ति राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: ये स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था रानी रूपमती। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और संगीत दिया था एस एन त्रिपाठी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।

फिल्म नया दौर का गीत सुनिए, गायिका आशा भोंसले, शब्दकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में हम आपको शकील बदायूनी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मदर इंडिया।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ, और अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी ठीक 3 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: हम पंछी एक डाल के अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना आशा भोंसले और साथियों का गाया हुआ। गीतकार पी एल संतोषी थे और संगीतकार थे एन दत्ता।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध।

अब चैन कहाँ आए, हाँ दिल को दे आए।

यह अवश्य आशा भोंसले की और फिल्म का नाम था मेरा सलाम। गीत को शिवान रिजवी ने लिखा और हाफिज खान ने संगीतबद्ध किया था।

ग्यावस्थी मन्ना डे की और फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा था और धुन बनाई थी एस एन त्रिपाठी ने। ग्यावस गीता दत्त की फिल्म का नाम हिल स्टेशन।

हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में ये था एसएच बिहारी का लिखा गीत, गीता दत्त की आवाज में फिल्म हिल स्टेशन से। और आइए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनते हैं।

तलत महमूद की आवाज में अभी आपने छोटे बाबू फिल्म का गीत सुना। कैफ इरफानी की बोल थी और मदन मोहन की धुन थी। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, प्रस्तुत है हमारा पसंदीदा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: मन चाहे गीत, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपका अपना चहेता कार्यक्रम आज से फिर शुरू हो गया है। आज ही इसका पहला अंक है। हम आपको पहला गीत सुनाएं, उससे पहले ये संदेश।
2: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
2: और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आज हमने पहला गीत चुना है आप सबकी पसंद पर। आप हैं हमारे सबसे पहले श्रोता आज के चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और उनके परिवार वाले, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मधुलता पुरोहित, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रांजल, हर्षिता, राजन, कमाली, परम और ये खत हमें मिला है जिला लुधियाना पंजाब से संतोष जोशी, नरेश, मुक्ता जोशी, जोयल जोशी, वज्रा जोशी का और नासिक महाराष्ट्र से आप हैं सुमन पारिक, साहिल पारिक, भावना पारिक और ये खत लिखने वाले हैं नुहिया वाली हरियाणा से लीलाधर जोशी, कमला जोशी, गायत्री, मिथिलेश पुरोहित, दिनेश जोशी, पूजा और पवन पारिक। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म दो चोर में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

फिल्म दो चोर का ये गाना आप सभी सुनना चाहते थे। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, सुनवी और जयपाल यादव। और इसी गाने को सुनना चाहते थे। आपने ये खत लिखा है, नोखा से प्रेम बलबीर, हरि सिंह, दुर्गा देवी, अनिल, अनुप्रिया, सीता और कैलाश। आप सबने भी अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था सुनने वाले हैं आप जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियांज और रिफाकत। इसी गीत को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और ये हैं देशमुख पेट अकोला से महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस जैन, जयेश, ऋषभ और संयम जैन। हमें उम्मीद है आप सभी ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

ये अवस्थी किशोर कुमार की फिल्म याराना के लिए गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे राजेश रोशन। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखा गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और उनके परिवार वालों ने। और आप हैं अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आपने अपना नाम लिखा है कृष्ण कुमार डागी, भूपत कुमार डागी, राधा देवी डागी, विक्रम, अर्चना और पूरा डागी परिवार। आपने लिखा है जिला बालोतरा से ये खत। हमें उम्मीद है आपने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

फिल्म शोर का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर और अन्य साथियों का गाया हुआ। गीतकार थे राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी और इनके परिवार वालों ने इस गीत को सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे एक श्रोता है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, आवाज मोहम्मद रफी की। सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं कवन कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूराज और उनके परिवार वाले।

मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था आप तू ऐसे न थी। गीतकार निदा फाजली थी और संगीतकार थी उषा खन्ना। मनचाही गीत की कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है ममता। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी की रचना और रोशन की धुन। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला अंबाला से शहनवाज आलम, सरफरोज बेगम, शाह उमर आलम और उनके परिवार के अन्य लोग। और इसी गीत को सुनना चाहती हैं बोरीवली गोराई महाराष्ट्र से एकता और उनके परिवार वाले।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ही कार्यक्रम पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल। ये नाटक गोगोल के मूल नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक।

0: इंस्पेक्टर जनरल, इस नाटक का पहला भाग।
1: मिश्का, मिश्का।
2: जी हजूर।
1: सब लोग आ गए या नहीं?
2: जी जज साहब और स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब तो तशरीफ ले आए। लेकिन आरती फिलपौतिक जामली ने कहा साहब,
1: इतने लंबे चौड़े नाम की जगह हेल्थ ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है?
2: जी हाँ, बस वही नहीं आए।
1: आएंगे कैसे? वो तो अस्पताल के कोने में बैठे तंबाकू का धुआं उड़ा रहे होंगे। उन्हें इस बात की क्या फिक्र के यहाँ बैठे बैठाए मुझे मौत का परवाना मिल गया है। शहर का मेयर होना भी क्या मुसीबत है। अबे तू खड़ा खड़ा मुझे अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रहा है? भाग यहां से, चल चल। जय जय और

0: ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है?
1: जी हाँ,
0: बस वही नहीं आए।
1: आएंगे कैसे, वो तो अस्पताल के एक कोने में बैठे तंबाकू का धुआं उड़ा रहे होंगे। उन्हें इस बात की क्या फिक्र के यहाँ बैठे बैठाए मुझे मौत का परवाना मिल गया है। शहर का मेयर होना भी क्या मुसीबत है। अबे तू खड़ा खड़ा मुझे अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रहा है? भाग यहाँ से, चल चल। और सुन, जैसे ही वो हेल्थ ऑफिसर अंदर कदम रखे ना, मुझे इतला मिलनी चाहिए, समझा?
2: जी अच्छा।
1: अच्छा अच्छा, तू रहने दे रहने दे रहने दे, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हाँ
2: जी बहुत अच्छा।
3: मौसम कितना प्यारा हो रहा है।
4: अरे आप आ गए मिस्टर जेमलियानी का।
3: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए।
4: माफी चाहता हूँ मेयर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। दरअसल मैं
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा ख्याल है अब मुझे असली बात शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ दी गई है।
4: जी जी।
1: साहिबान, आज सुबह सुबह एक बुरी खबर मिली है
4: जी।
1: मुझे मालूम हुआ कि पीटर्सबर्ग से एक इंस्पेक्टर जनरल हमारे शहर का मुआयना करने आ रहे हैं।
4: इंस्पेक्टर जनरल पीटर्सबर्ग से?
1: जी हाँ, सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल साहब को सीक्रेट ऑर्डर्स दे रखे हैं। वो इस शहर में भेस बदल कर रहेंगे।
4: भेस बदल कर?
1: यकीन मानिए साहिबान, मुझे तो जैसे पहले से ही इंस्पेक्टर जनरल के आने का अंदेशा हो गया था। ठहरिए, मैं आप लोगों को अपने दोस्त की चिट्ठी सुनाता हूँ जिसके जरिए मुझे ये खतरनाक खबर मिली है। लिखा है, प्रिय एंटनोविच, ईश्वर तुम्हारी सेहत बराबर बनाए रखे, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए दोस्त, एक जरूरी खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर जनरल भेस बदलकर पूरे प्रांत का दौरा लगा रहे हैं जिसमें वो हमारे शहर का खास तौर से मुआयना करें।
4: मुआयना खास तौर से?
1: जी हाँ, मुझे ये सूचना एक बहुत ही खास आदमी से मिली है, लेकिन जो अपने को बहुत ही मामूली आदमी कहने का ढोंग करता है। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्त, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम जरा ज्यादा ही अपनी मुट्ठी गर्म करने की फिराक में रहते। मेरा दोस्त भी देखो ना। कोई बात नहीं, आप लोग कोई गैर थोड़े हैं। हाँ हाँ, तो साहिबान आगे लिखता है, ध्यान रखना एंटन एंटोनोविच, इंस्पेक्टर किसी भी दिन पहुंच सकता है, और क्या मालूम पहुंच ही गया हो और खुफिया तौर पर वहां रह रहा हो। परसों मैं अपनी चचेरी बहन अन्ना की लोबना के यहां गया था, मेरा जीजा तो एकदम भैंस जैसा भारी हो गया है, और हर बाकी सब हमारी घरेलू बातें लिखी हुई
5: है। लेकिन मेयर साहब, ये तो एकदम नामुमकिन लगता है, भला यूं चोरी से हमारे शहर में आना?
3: क्यों साहब, हमारे शहर में इंस्पेक्टर भेजने का मतलब है? हम तो राजधानी से पहले ही इतनी दूर पड़े हुए हैं, बेबात ही हमें छेड़ने में फायदा।
1: ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब
4: जी,
1: आज तक दूसरे शहरों का मुआयना होता रहा
4: जी,
1: और हम चैन की बंसी बजाते रहे
4: जी। हाँ।
1: आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, आज हमारा भी नंबर आ गया।
5: मेयर साहब
4: जी,
5: अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इस मुआयने के पीछे जरूर कोई गहरी राजनीतिक वजह है
4: जी।
5: हमारी सरकार जल्द ही लड़ाई की घोषणा करने वाली है,
4: है।
5: सरकार ने चुपचाप इस आदमी को भेजा होगा कि देखना इधर उधर बगावत तो नहीं हो रही है।
1: वे, क्या बात कही है। इस पर आप अपने आप को बहुत ही अकलमंद और विद्वान कहते हैं। इस छोटे से गांव जैसे शहर में बगावत, ये क्या देश की सरहद है जनाब? यहाँ से 3 दिन तक घोड़ा दौड़ाते हुए भी आप सरहद तक नहीं पहुँच पाएंगे, समझे कुछ?
5: जी, मैंने तो ऐसी ही बात कही थी हुजूर, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे अफसरान की किचकी आंखें हैं।
1: इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना काम देखना है अपना। इस शहर के मेयर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। आप लोगों को भी मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ।
3: जरूर जरूर, जरा ध्यान दीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब।
1: मैं आप सबसे ये बात कह रहा हूँ, पहले आप ही सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब
4: जी।
1: इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे, जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए। ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप
4: जी?
1: चाहे तो वो भी ढका हुआ हो। हाँ, सिर पर टोपी पहना दीजिए।
4: ये तो बहुत मामूली बात है मेयर साहब, मैं अभी सब इंतजाम करा देता हूं।
1: और मरीजों से कहिए तंबाकू पीना बंद करें, अस्पताल के कमरे अच्छी खासी फैक्ट्री की चिमनी दिखाई देते हैं। सुनिए, मरीजों को पहचानने के लिए उनके बिस्तरों पर तख्तियां लटका देना जिनमें झूठ मूठ मरीज का नंबर, बेड नंबर और बीमारी का नाम लिखा होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रहे कि ये तख्तियां लैटिन, ग्रीक या किसी और भाषा में लिखी जाए ताकि इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ ना पड़े, समझे आप? और हाँ, कुछ मरीजों को जबरदस्ती छुट्टी भी दे दीजिए, अफसर इतनी भीड़ देखेगा तो समझेगा यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है।
4: जी जनाब, मैंने और डॉक्टर हिब्बर ने तो शुरू से ही अस्पताल को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोग
2: लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही उत्तम मानते हैं। बेकार कीमती दवाओं पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा। देखिए, और हमारे मरीज, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जगा दे, बहुत ही भले नागरिक हैं जिन बेचारे

0: औरों को अच्छा होना होता है अपने आप अच्छे हो जाते हैं और जिन्हें मरना होता है चुपचाप मर जाते हैं।
1: अब आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ जज ल्यापकिन त्यापकिन
2: जी,
1: आप इस शहर के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज हैं
2: जी हाँ,
1: लेकिन आपकी अदालत और जेल से तो चिड़ियाघर अच्छा है
2: जी,
1: हर कमरे में चपरासियों की पाली हुई मुर्गियां और बत्तखें आजादी के साथ घूमती रहती हैं और आने जाने वाले वकीलों और मुवक्किलों के पैरों से चिपटकर जबरदस्ती प्यार करती रहती है। मैं मानता हूँ मुर्गी पालन बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ईश्वर के लिए इस नेक काम से अदालत को तो बख्शिए।
2: ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब, मैं सारी मुर्गियों बत्तखों को आज ही हलाल कर देता हूँ। अभी आइएगा ना आज शाम के खाने पर।
1: जेल तो परले सिरे का कूड़ा घर ही नजर आता है, कहीं जंगली जानवरों की खाल सूख रही है तो कहीं आपकी बंदूक शोभायमान हो रही है। खुशी की बात है कि आपको शिकार का इतना शौक है, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर मुआयना नहीं करता आप ये गोदाम किसी और जगह बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। बाद में चाहे फिर उन चीजों को यहाँ ले आइएगा, समझे आप। और आपका जो वो बूढ़ा मुंशी है ना
2: जी,
1: माना कि उसे सारा कानून पहाड़े की तरह रटा हुआ है, लेकिन उसके पूरे शरीर से शराब की ऐसी भयंकर बू आती है कि बाप रे, मैं तो एक मिनट भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता।
2: मजे की बात यह है मेयर साहब कि ये मेरा मुंशी शराब छूता तक नहीं। बात यह हुआ ये कि बचपन में
1: अगर उसके बदन से कुदरती तौर पर ऐसी बू आती है तो मामला और भी टेढ़ा है। उससे कहिए प्याज लहसुन या ऐसी किसी तेज बू वाली चीज का सेवन करे जो शराब की बू को मार दे, या फिर फौरन डॉक्टर के पास भागे। और हाँ वो जज साहब, जरा आप भी अपने को अच्छी तरह टटोल
2: लीजिए। साहब मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, देखिए ना रिश्वत भी लेता हूँ तो न लेने जैसी। शिकारी कुत्तों के पिल्ले, भला ये भी कोई रिश्वत है
1: मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन? रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे वो शिकारी कुत्तों के पिल्लों के रूप में हो या किसी और रूप में।
2: वाह साहब वाह, ये कैसे हो सकता है? रिश्वत तो वो होती है जनाब कि जब एक आदमी 500 रूबल का फरकोट या अपनी बीवी के लिए कीमती शाल लेता है।

0: इतिहास के अध्यापक को ही ले लीजिए, वो बहुत दूरदर्शी और अपने विषय का पंडित है
1: जी,
0: लेकिन पढ़ाते वक्त उसे जो बेतहाशा जोश आ जाता है उसका क्या किया जाए। अभी उस दिन की बात है, वो बच्चों को जब तक असीरियनों का इतिहास बताता रहा तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सिकंदर महान पर आया बस कुछ ना पूछो, अपनी कुर्सी से कूदा, एक कुर्सी उठाई और जोर से डेस्क पर दे मारी। मैं जानता हूं इस तरह से वो युद्ध का वर्णन कर रहा था, ठीक है सिकंदर महान एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन इसके लिए स्कूल की कुर्सियां क्यों तोड़ी जाए।
2: जी आप ठीक कहते हैं मियां साहब, मैंने भी एक दिन स्कूल का टूटा हुआ फर्नीचर सामने रखकर उसे समझाया, लेकिन उसको तो बस एक ही रट है।
0: क्या?
2: आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मैंने तो शिक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की कसम खा रखी
0: और मिटा वो हमें रहा है। जीवन कितना रहस्यमय है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है।
2: अजी शिक्षा विभाग से तो ईश्वर ही बचाए। अजी मेयर साहब, ये भी कोई चमत्कार ही है कि मैं इस लाइन में रहकर भी जिंदा हूँ, वरना ये अपनी अकल के आगे किसी की चलने दें।
0: मुआयना, वैसे मुआयना वैना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यूं भेष बदल कर।
1: जी भेष बदल कर,
0: बदल कर मान लो वो अभी प्रकट हो जाए और कहे, अच्छा मित्रों तुम सब यहाँ जमा हो, हाँ तो तुम में से हेल्थ ऑफिसर कौन है
2: जी,
0: जरा आपके हाल चाल पूछने हैं, और जज साहब आप भी जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए।
3: दोस्तों हमारे लिए तो ये डूब मरने की बात हो जाएगी।
2: कौन? कौन? कौन?
4: नमस्कार मैं।
0: नमस्कार, तुम कोई नया समाचार लाए हो पोस्टमास्टर? मेरा मतलब है कोई खास चिट्ठी तो नहीं आई?
4: नहीं हुजूर, मैंने तो अभी अभी बॉब किंस्की से ही ये भयानक खबर सुनी है।
0: तुम्हारा क्या ख्याल है पोस्टमास्टर?
4: ख्याल क्या है मेहर साहब, लड़ाई है और कुछ नहीं।
0: लड़ाई?
4: जी हाँ, हमारा देश भयंकर युद्ध करने वाला।
0: तुम्हारी बेवकूफी का भी जवाब नहीं है पोस्टमास्टर।
3: अरे मियाँ, ये हमला हमारे शहर पर हो रहा है, ये चिट्ठी बता रही है कि इस लड़ाई के शिकार हम हैं, सिर्फ हम।
1: जी, जी।
3: मुझे लगता है जरूर किसी ने मेरी शिकायत की है, वैसे मैं डरता वरता नहीं हूँ क्योंकि मेरे नेक कामों का भगवान साक्षी
0: जी
3: है।
0: जी हाँ, ठीक है,
3: लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट जरूर हो गई है, शहर के व्यापारियों ने जरूर मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर राजधानी में जहर उगला होगा।
4: जी हाँ, किसी की शिकायत पर ही इंस्पेक्टर यूं चोरी चोरी आ सकता है।
3: देखो पोस्टमास्टर, ये हमारे तुम्हारे दोनों के हित में है कि इस शहर से बाहर जाने वाली हर एक चिट्ठी को तुम खोल कर देख लिया करो, अगर उसमें हमारी शिकायत जैसी कोई बात नहीं लिखी है तो उसे फिर से चिपका कर या खुली ही आगे भेज दिया करो, और अगर वो समझ गए ना।
4: जी हाँ, समझ गया बिल्कुल समझ गया। और इसमें आपके समझाने की बात ही क्या है, मैंने तो बरसों चिट्ठियां खोलने और पढ़ने का धंधा किया है। कुछ चिट्ठियों में तो इतनी मजेदार बातें लिखी रहती है कि उन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करता।
0: सुनो, कोई ऐसी चिट्ठी तो तुमने नहीं देखी जिसमें पीटर्सबर्ग से अफसर आने की इतला हो?
4: जी नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चिट्ठियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। मेयर साहब, काश आपने भी एक आध चिट्ठी पढ़ी होती, वो मनोरंजक बातें, वो लच्छेदार शैली के पढ़ने वाले की तबीयत फड़क उठे।
0: अच्छा?
4: एक लेफ्टिनेंट ने अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिख रखी थी। आप वो चिट्ठी पढ़ना चाहेंगे?
0: शुक्रिया शुक्रिया, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ, मैंने जो सुझाव दिया है उसका तुम्हें ध्यान है ना?
5: ये भी ध्यान रहे पोस्टमास्टर साहब कि ऐसी हरकतों से तुम्हें जेल जाने में देर नहीं लगेगी।
0: आप बकते हो लियाकत, कोई सरे बाजार रिश्वत ले तो बेशक ये बुरा है, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है।
5: आपके सारे मामले व्यक्तिगत ही होते हैं मेयर साहब
0: जी।
5: हाँ छोड़िए,
6: हाँ याद आया,
0: क्या
6: ये बताइए, क्या आप एक बहुत अच्छी नस्ल का शिकारी कुत्ता लेना पसंद करेंगे? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था।
3: मैं ये भेंट तुम्हें मुबारक हो मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, मुझ पर मेहरबानी करो, मेरे चारों तरफ तो भेष बदला हुआ इंस्पेक्टर नाच रहा है। इंस्पेक्टर तुम यहाँ बैठकर माज करो और इंतजार करो कि कब दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर
0: लगता है इंस्पेक्टर जनरल सरपंच आ गए हैं।
7: भगवान,
8: दरवाजा खोलिए मेयर साहब,
9: दरवाजा खोलिए मेयर साहब।
8: तुम चुप रह सकते हो डॉक्टर्स की, मेरा बोलना काफी है।
9: पर बॉब चिस्की, मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। मेयर साहब दरवाजा खोलिए।
3: ये आप दोनों महाशय हैं,
10: कमाल हो गया मेयर साहब, कमाल हो गया।
0: सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी।
2: क्या हुआ बॉब चिस्की? क्या
0: खबर है? हम लोग होटल में पहुंचे थे।
10: हाँ, मैं और डॉब चिस्की होटल में पहुंचे ही थे कि
0: बॉब चिस्की, जब मैं बता रहा हूँ तो।
10: अरे पर मुझे ही बताने दो ना डॉब चिस्की, तुम्हारा कहने का ढंग बहुत ही बचकाना है।
0: लेकिन तुम बीच में भूल जाओगे, तुम्हें आज तक कोई चीज याद रही?
10: जहाँ मैं भूल जाऊँ मुझे बता देना।
0: क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, यहाँ पहले ही मेरा दिल बैठा जा रहा है।
10: सुन लिया ना डॉब चिस्की? लीजिए मेयर साहब, मैं शुरू से सारी बात सुनाता हूँ। सुबह आपसे वो अहम खबर सुनकर मैं कोरोवकीन को बताने के लिए गया, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था। मैं

0: मैंने सोचा रुस्ता कोविंस्की को ये समाचार दे दूं, लेकिन वो भी अपने साली की शादी में बाहर गया हुआ था। मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी मुलाकात डॉबचिंस्की से हो गई,
1: समोसे वाले की दुकान के पास।
0: हाँ, समोसे वाले की दुकान के पास। लेकिन इससे ये खबर आपकी नौकरानी अवधोत्या से पहले ही मिल चुकी थी, वो आबकारी की दुकान पर कुछ लेने गई थी।
1: मेयर साहब के लिए फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी।
0: हाँ, फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। बीच में मत रोको डॉबचिंस्की। इसने मुझसे कहा कि मारे भूखे इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए होटल में ले गया। जैसे हम लोग अंदर घुसे तो एक लंबा तगड़ा खूबसूरत नवयुवक
1: सूट बूट पहने हुए
0: डॉबचिंस्की, तुम बार बार टोकते हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो हाँ साहब, सूट बूट पहने हुए खूबसूरत नौजवान कमरे में चहलकदमी कर रहा था, रोबीला गंभीर चेहरा, जैसे कोई बहुत अहम बात सोच रहा हो। मैंने छूटते ही डॉबचिंस्की से कहा, हो ना हो ये वही आदमी है। हम दौड़े दौड़े होटल के मालिक के पास गए। उसने बताया ये कोई सरकारी मुलाजिम है, पीटर्सबर्ग से आया है और सारातोव की तरफ जा रहा है। इसका नाम इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव है, लेकिन अजीब शैतान आदमी था वो भी। 2 हफ्ते से उनकी रोटियां तोड़ रहा था और उनकी छाती पर मूंग दल रहा था। न होटल से निकलने का नाम ले और न उनके बिल के चुकाने का नाम ले। होटल मालिक की बात सुनकर मैं तो जैसे उछल पड़ा। मैंने डॉबचिंस्की से कहा, पकड़ा, ये वो आदमी।
2: नहीं बाप, पहले मैंने ये कहा।
0: अरे हो सकता है पहले तुमने कहा, लेकिन फिर मैंने भी तो कहा था, यही है वो पीटर्सबर्ग का अफसर।
1: कौन सा अफसर?
0: अरे भूल गए मेयर साहब, अजीब पीटर्सबर्ग का अफसर
1: क्या,
0: यानी इंस्पेक्टर जनरल।
1: क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता?
3: वही है मेयर साहब, वही है। वो होटल में एक पैसा नहीं देता, वहां से जाता भी नहीं। इतनी हिम्मत एक इंस्पेक्टर जनरल की ही हो सकती है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं।
0: एक बड़े अफसर की तरह वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था। हम लोग जब खा रहे थे तो उसने जिस ढंग से हमारे खाने की तरफ देखा, वो पैनी नजर एक इंस्पेक्टर जनरल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ,
1: अगर सचमुच वो इंस्पेक्टर जनरल ही है तो फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है। बॉबचिंस्की, तुमने उसका नाम क्या बताया?
0: इवान अलेक्जेंद्रोविच हेलस्टकोव।
1: उसके कमरे का नंबर क्या है?
0: नंबर 4, जहाँ पिछले साल कमेटी के अफसरों में मारपीट हुई थी।
1: और उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए?
0: 2 हफ्ते।
1: मारे गए, अब क्या होगा?
4: मेरा एक सुझाव है मेयर साहब, हम सब मिलकर इंस्पेक्टर साहब का स्वागत कर दिख
1: लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही वहाँ जाऊंगा, अकेला। आप लोग तो वहाँ जाकर ठूंठ की तरह खड़े हो जाएंगे। डॉबचिंस्की, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर नव युवक सा लगता है।
3: जी हाँ, मुश्किल से 23-24 साल का होगा।
1: ये भी गरीमत है, नौजवान अफसरों को उल्लू बनाना आसान है। अच्छा साहिबान, आप लोग फटाफट सब चीजें ठीक ठाक कर लीजिए, समझे आप। मैं होटल का दौरा लगाने और यात्रियों की सुख सुविधा मालूम करने का बहाना कर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। मिश्का,
5: जी हुजूर।
1: गाड़ी तैयार है?
5: जी तैयार है।
1: प्रहरात कहाँ है?
5: हुजूर वो आज ड्यूटी पर नहीं है।
1: क्यों नहीं है?
5: जी वो रात आबकारी वाले नुक्कड़ पर पहरा दे रहा था, सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो नशे में धुत था। 2-3 कप पानी डाले जाने पर भी उसका नशा ज्यों का त्यों है।
1: तुम लोग सिपाही नहीं हो, बादशाह हो, बादशाह। तुम भागकर अंदर जाओ। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, भरो भरो भरो, और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को बुला लो, समझे, जल्दी जल्दी।
4: अभी जज साहब, मेरा ख्याल है कि अब चलकर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए।
6: अबे तुम्हें क्या फिक्र है हेल्थ अफसर साहब, मरीजों को साफ वर्दी पहना दोगे, सब ढक जाएगा।
4: जी हाँ, और अस्पताल के कोने कोने से जो बदबू के झोंके आते रहते हैं उसे आप किस तरह से?
6: बदबू तो जनाब मेरी अदालत से भी बहुत आती है, पर मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। डर ये है कि कहीं इंस्पेक्टर साहब ने भूले भटके कागज पर नजर डाली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पिछले 15 साल से मैं फैसला देता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कसम खाने को भी कभी कागज पर नजर नहीं डाली और न पढ़ा।
7: चिंता मत करो मित्र, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं रहेंगे। हाँ,
1: कौन
8: कौन है?
1: कौन?
9: हुजूर, आपने मुझे याद किया।
7: आ गए आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब, पलक झपकते देर नहीं होती कि आप ना जाने कहां उड़नछू हो जाते हैं। ये आलम है हमारे शहर के सम्मानीय पुलिस सुपरिंटेंडेंट का।
9: मगर हुजूर, मैं तो बाहर के गेट पर ड्यूटी दे रहा था।
7: सुनिए, इस शहर के मुआयने के लिए पीटर्सबर्ग से अफसर आ पहुंचा है, आपको सारा इंतजाम करना है। जल्दी से किसी लंबे तगड़े सिपाही को नई वर्दी पहनाकर पुल पर खड़ा कर दीजिए, ताकि अफसर पर रौब पड़ जाए। शहर का सारा कूड़ा किसी बुत या किसी स्मारक के पीछे फेंकवा दीजिए। शहर के एक किनारे कुछ खुदाई करवा दीजिए और मजदूरों को हिदायत दे दीजिए कि मिट्टी इधर उधर करते रहे, जिससे ये लगे वहां जमीन बराबर की जा रही है।
9: जी बहुत अच्छा।
7: और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अफसर ने किसी पुलिस वाले से सवाल किया, तुम अपनी नौकरी में खुश तो हो, तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए, जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ऐसे आदमी को बाद में सचमुच संतुष्ट करने पर विचार किया जाएगा।
9: जी मैं इस बारे में अभी एक नोटिस घुमा देता
7: हूं। एक बात और है, अगर कोई पूछे कि अभी तक अस्पताल में गिरजा क्यों नहीं बनवाया गया, जबकि इसके लिए 5 साल पहले ही

0: चंदा इकट्ठा कर लिया गया था, तो उसका जवाब यह है कि गिरजाघर बना था लेकिन उसमें आग लग गई, समझे आप। मैंने इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी भेज रखी है। डर यही है कि तुम में से कोई बेवकूफ कहीं ये ना कह दे कि गिरजे का निर्माण तो कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब मैं जाता हूं डॉपचिंस्की, तुम मेरे साथ चलो।
1: जी बाप, मेरे साथ, मुझे भी साथ ले लीजिए।
0: समझदारी की बात करो डॉपचिंस्की, गाड़ी में दो ही आदमियों की जगह।
1: कोई बात नहीं, मैं पायदान पर ही खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। दरअसल मैं भी दरवाजे की दरार से अफसर और आपकी भेंट देखना चाहता
0: हूं। अच्छा, आइए आइए, चलिए चलिए,
2: सुनिए सुनिए। अरे पापा तो चले गए। मम्मी और क्या मारिया, ये देर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। मम्मी मेरा नेकलेस कहाँ रखा है? मम्मी मेरे हेयर पिन नहीं मिल रहे। मम्मी क्या अफसर आ गया है? कैसा दिखता है, जवान है या बूढ़ा है?
3: लेकिन लेकिन पापा ने जाने से पहले हमें बुलाया क्यों नहीं? अब हम अफसर को कैसे देखेंगे?
2: तू क्या देखेगी, तुझे तो पोस्ट मास्टर को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती।
4: न जाने पापा का अफसर कैसा होगा, मेरा दिल कहता है वो बहुत सुंदर होगा।
5: धत तेरे की, हमें पीटर्सबर्ग से चले 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक आधे रास्ते में अटके हुए। लेकिन हमारे मालिक साहब को इसकी कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें कोई काम ना काज ना नौकरी ना चाकरी, उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है।
6: और से इवान अलेक्जेंड्रोविच इलेस्टकोफ के लिए, यानी हमारे लिए शानदार होटल का शानदार कमरा बुक कर लो। आसिफ जल्दी से बैरे को खाना लाने के लिए बोलो, लेकिन ध्यान रहे खाना एकदम लजीज हो, हमें घटिया खाना खाने की आदत नहीं।
5: घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुना ले। अरे कभी इधर उधर से पैसे आ भी गए तो साहबजादे को जैसे पर लग जाते, फौरन बड़े बड़े आदमियों को जा घेरेंगे और जुए में तब तक जुटे रहेंगे जब तक जेब में आखिरी सिक्का रहेगा। हाँ, अरे कई बार मालिक जेबें गर्म करके भी आते हैं, तब मैंने भी खूब गुल छर्रे उड़ाए। कुछ ना पूछिए, खूब दावतें खाई हैं, बढ़िया कपड़े पहने। मैं और मालिक बाजार से निकलते हैं तो दुकानदार सिर झुका झुका कर स्वागत करते हैं, आइए आइए श्रीमान हमारी दुकान पवित्र कीजिए। ओह आज तो भूख के मारे ठीक से हंसा भी नहीं जा रहा, और होटल का मालिक है कि हमारी तरफ देखता तक नहीं, जोर की भूख लगी है कि मालिक आ गए। मालिक आज तो आप सह से जल्दी वापस आ गए।
0: नीचे जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है।
5: मालिक ये काम मेरे बस का नहीं है।
0: क्या
5: मालिक, मेरा मतलब है मेरे जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, होटल के मालिक ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप उसका पिछला बिल नहीं चुका देते वो हमारे खाने की छुट्टी रखेगा।
0: उसकी शेम अजाल के हमें खाना देने से इनकार कर।
5: आज ही उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो शहर के मेयर के पास हमारी शिकायत लेकर जा रहा है, कहने लगा मैं मेयर साहब को बताऊंगा कि पीटर्सबर्ग का एक उचक्का लफंगा अपने नौकर के साथ 2 हफ्ते से मुफ्त मेरे होटल की रोटियां।
0: और तुम बहुत चाव के साथ ये सब सुनते रहे।
5: सुनना ही पड़ा मालिक, मुझसे कहने लगा फिक्र ना करो बच्चू, कल से तुम्हें जेल की रोटियां मिलेंगी।
0: बस भी करो, जाओ एक बार फिर उसे खाना भिजवाने के लिए बोलो।
5: मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए ना।
0: मैं ऐसे घटिया आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता।
5: अच्छा आप कहते हैं तो एक बार फिर बात करता हूँ।
0: इतनी भूख लगना भी मुसीबत है इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्त को, तुम भी किस भूखे शहर में आकर फंस गए। यहाँ तो रहने का मजा ही नहीं आ रहा, पर यहाँ से निकलें भी कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और उधर सारा तो मैं बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा समझते हैं मैं पीटर्सबर्ग में किसी अच्छी खासी नौकरी में हूँ, और हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि नौकरी किस बला का नाम।
5: मालिक लीजिए वेटर खाना लेकर आ गया।
0: खाना
5: जी,
0: यानी कि खाना। खाना,
7: हमारे मालिक ने कहा है आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा।
0: भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, मेरा मतलब है मित्र पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे खाने का इतना चाव नहीं है लेकिन इसलिए खाता हूँ क्योंकि क्योंकि क्योंकि मुझे खाना है। हाँ
7: जी जी,
0: खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शे क्या सिर्फ सुपर मुर्गा, शे क्या बदतमीजी है, इसे ले जाओ और अपने मालिक से कहो ये बहुत कम है।
7: मालिक कहते हैं ये जरूरत से ज्यादा है।
0: बकता है, और बाकी चीजें कहाँ गई, मछली कलेजी कटलेट और वो अचार चटनी?
7: बाकी चीजें नहीं है।
0: क्यों नहीं? अरे मैंने ऊपर आते हुए खिड़की से झांक कर देखा था तो पिद्दी से घा उंगलियां चाट चाट कर दुनिया भर की चीजें हड़प रहे।
7: अजीब है, ऊंचे ग्राहकों के लिए है, आप जैसों के लिए नहीं।
0: बको मत, मेरे गले में वो चीजें अटकती, वो लोग भी तो मुझ जैसे मुसाफिर हैं।
7: फर्क है हुजूर, वो नकद दाम देते हैं और आप।
0: मैं इतनी गजा नहीं खाता कि तुम जैसे जाहिल गमार से बहस कर सकूं। शेसु ये सूप है,

0: जैसे गर्म पानी में नमक घोल दिया गया।
1: कोई बात नहीं हुजूर, मालिक ने कहा था आपको जरूरत ना हो तो वापस ले आना।
0: वापस ले आना। लो आसिफ, बाकी तुम पी लो।
2: बहुत अच्छा।
3: ये मुर्गा बना मुंह में रखते ही जबड़ा अलग हो जाए जैसे किसी पेड़ का ठूंठ हो। लो आसिफ, थोड़ा तुम भी लो।
1: मैं अब जा सकता हूँ।
0: सुनो मित्र, खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आसिफ, तुम बेटो जी के साथ चले जाओ। ये खाना है, सूप की जगह उबला पानी और गोश्त।
4: मालिक, मालिक नीचे मेरा आया हुआ है और आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है।
0: क्या?
4: जी हाँ।
0: आखिर उस बदमाश ने मेयर के पास मेरी शिकायत करी थी। नहीं नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेयर की क्या मजाल कि मुझे जबरदस्ती जेल भेजे। मैं उसे ऐसी झाड़ दूंगा कि याद रखेगा। तुम्हारी ये हिम्मत हुई कैसे? तुम्हारी ये मजा।
5: श्रीमान, मेरा अभिवादन स्वीकार करें।
0: आप भी मेरी नमस्ते दीजिए।
5: क्षमा कीजिएगा, बिना पूछे ही चला।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
5: दरअसल शहर के मेयर की हैसियत से ये मेरा पहला फर्ज हो जाता है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी तरह।
0: लेकिन आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो होटल की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दरअसल शरारत तो होटल के मालिक की है, वो मुझे जान बूझ कर घटिया खाना देता है। मांस ऐसा जैसे पत्थर के टुकड़े हों और सूप भगवान ही जाने उसमें क्या डाला जाता है। मैंने अभी अभी उसे खिड़की से बाहर फेंका है। चाय में मछली की बुआ थी और ऊपर से वो मुझे धमकी देता है कि मुझे वो।
5: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हुजूर, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे सच बताऊं, उसमें मेरी जरा भी गलती नहीं है। हमारा शहर तो ताजे गोश्त के लिए मशहूर है। ताज्जुब है ये आदमी कहां से कूड़ा उठा लाता है। दरअसल ये होटल आपके रहने लायक है भी नहीं। मैं आपसे कहीं और चलने की प्रार्थना कर सकता हूँ?
0: नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खूब समझता हूँ कहीं और से आपका मतलब क्या है। आप इस बहाने मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे जेल ले जाने का क्या अधिकार है?
5: हे भगवान, ये तो सब जानता है, जरूर किसी ने इससे मेरी शिकायत।
0: जनाब, आप पूरी फौज लेकर आइए तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधा जार के पास जाऊंगा। आप लोग मुझे समझते क्या हैं?
5: ऐसा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे।
0: खूब खूब, तो आपके बीवी बच्चों को बचाने के लिए मैं जेल चला जाऊं? माफ कीजिए, मैं भी सब जानता हूं,
5: मुझसे गलती हुई हुजूर। दरअसल मुझ में अकल की बहुत कमी है। और क्यों ना हो हुजूर, तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि सारा दिमाग उधर सोचने में ही खत्म हो जाता है। तभी तो भूले भटके रिश्वत लेने की गलती हुई है हुजूर। लेकिन विश्वास कीजिए, रिश्वत में भी हमेशा छोटी मोटी चीजें ली हैं मैंने। और वो जो आपने वो देखी ना, हवलदार की विधवा को कोड़े लगाने वाली बात सुनी होगी ना, वो बिल्कुल झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है। मेरे दुश्मनों का गढ़ा हुआ किस्सा है। और हुजूर आपसे क्या कहूं, इन दुश्मनों से तो मुझे अपनी जान का भी खतरा हो गया।
0: मुझे इन बातों से क्या लेना देना, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते।
5: नहीं नहीं,
0: मैं होटल का एक एक पैसा चुका दूंगा, पर इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
5: धूर्त कहीं का, किस चालाकी से पैसे की बात छिड़ी है। पर बच्चू, मैं भी तुझे अपने जाल में फांस कर ही छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा हुजूर, अगर आपको पैसों की दिक्कत हो तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूं। शहर में आने वाले प्रत्येक यात्री की सेवा करना तो मेरा पहला।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे कुछ रूबल उधार दे दीजिए ताकि मैं होटल का बिल दे सकूं।
5: मेरा ख्याल है 200 रूबल में काम चल जाएगा। ये लीजिए, गिनने के कष्ट न कीजिएगा,
2: पूरे 200।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा।
3: अरे आसिफ, आसिफ
4: डॉबचिंस्की,
5: शुक्र है इतने पैसे चुपचाप ले लिए इसने। मैंने भी समझदारी की, 200 की जगह 400 रूबल दे दिए।
0: आसिफ, वेटर को बुला लाओ।
2: जी अच्छा।
6: इंस्पेक्टर जनरल गोगोल के इस प्रसिद्ध नाटक के हिंदी रेडियो रूपांतरण का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार थे शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

सुनते हैं फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं, और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहां आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं, मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया
0: जी
1: और संवाद के लिए बुलाया, तो हम आपका आभारी है। और हम ऐसी चीजों पर बातचीत करेंगे जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रिकर जी, आप पूछिए क्या पूछना है।
0: दिलीप जी, फिल्मों में कहानी के मुताबिक जितने सीन्स शूट किए जाते हैं, गीतों का एडिटिंग होता है, इसकी तो बात हमने की, मगर कई बार एक एक्शन सीन्स होते हैं जो मारधाड़ वाले सीन्स हुए हैं, या कहीं से मोटर आ रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह के सीन जो एक्शन सीन्स होते हैं, इनमें एडिटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: क्यों? तो सर, वो शॉर्ट में क्या करते हैं, वो एक्शन सीन में
0: जी,
1: एक्शन सीन तो अभी सब तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले रियल हो जाता था।
0: अच्छा,
1: मतलब पहले गाड़ियां उड़ाते थे।
0: हाँ।
1: तो एक पिक्चर हमने की थी, उसमें 6 गाड़ियां उड़ा दिए थे।
0: ओहो,
1: रियल चेस हुई थी।
0: अच्छा,
1: और वो इतनी बड़ी चेस है, हिंदुस्तान की पहली चेस थी।
0: हाँ।
1: जो राजश्री ने पिक्चर बनाया था एजेंट विनोद।
0: हाँ।
1: उसमें 6 के 6 गाड़ियां उन्होंने उड़ाए थे, उसमें कोई वायर नहीं था।
0: हाँ।
1: या कोई ट्रिक नहीं थी।
0: अच्छा,

0: विरू देवगन उसका ये था फाइट कंपोजर एक्शन सीक्वेंस
1: जी,
0: उन्होंने गाड़ियां कैसे उड़ाए थे आज भी हम देखते हैं। और उन्होंने तो यहां तक किया था कि बॉम्बे में कुलाबा में शूट चल रही थी, मोटर बाइक जाते ऐसा ऊपर से, वो तो उन्होंने अपना इसे कहते, उस टाइम में कोई वायर नहीं था, अभी तो क्या है थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते, जैसा अभी टेबल पर से कूदना है वायर लगाए कूदे, मतलब उस टाइम के जो हीरो थे जितने भी हीरो है धर्मेंद्र है शम्मी कपूर है ये, मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग
1: किया करते थे, पूरा
0: एक्ट करते थे, उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता, बाकी खुद कर लेते थे सब, और बहुत सारे सीन रहते थे जैसा जंप मारने का वगैरह, उसमें कहीं जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे। और उस टाइम में तो क्या होता था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है
1: जी,
0: और एक आई थी हमराई रामन सागर की
1: जी,
0: उसके अंदर एक सीन है हमराई में रणधीर कपूर तनुजा और गजानन झागीदार
1: जी,
0: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर, आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
1: जी,
0: तो पहले टेक में वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप उधर,
1: अच्छा
0: तो 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा, ब्रिज तो आपको मालूम है छोटे नाले पर रहते हैं,
1: अच्छा
0: मगर सेकंड टेक में वो गिर गए थे उधर आधे में,
1: ओहो
0: तो ऐसा है। और एक पिक्चर रही थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान सुनील दत्त और साधना
1: जी
0: तीनों के चेस, तीनों भी क्रॉस करते पूरा जंप करके, तो उसमें पहले जोखिम रहता था कर लेते थे पहले, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी वो फाइटर ये हो जाता था, और अभी क्या है तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया
1: जी जी। तो ऐसे जो ये एक्शन सीन्स होते हैं इन दृश्यों को जोड़ना ये कितना मुश्किल काम होता था?
0: मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर,
1: अच्छा
0: शॉट वो कटिंग में ले लेते शॉट,
1: अच्छा
0: कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया, जैसा विलन ने भी एक्सीलेटर दबा दिया,
1: अच्छा
0: हीरो उधर से आ रहा है विलन इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते वो कट में, तो हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रुर किया उधर, उसने ड्रुर किया, फिर इसने देखा उसने देखा, बैंग आ गया उसमें, फिर उसके बाद ये कर लेते, ये सब पूरे यूनिट का काम है सर। अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है उसका थॉट रहता है
1: जी, जी।
0: उसको वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में, फाइट कंपोजर उसको एक्सिबिट कर लेता है, पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे, ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है उसको असेंबल करते हैं और उसका असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका जो इंपैक्ट क्या रहता है कि सीक्वेंस जब रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे, इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे, रिएक्शन आ गया दोनों उठ के भाग गए, ये तो अपना कहानी में हो गया, वो शूट कर लेते, शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलके अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते, बाद में एडिटर को लाके दे देते भाई काट दो, तो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए।
1: अच्छा।

0: बहुत सारे एडिटर पहले के ये थे तो कि वो डायरेक्टर को क्या चाहिए,
1: हाँ
0: आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था।
1: कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो?
0: पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट बहुत पिक्चर किया था।
1: हाँ जी,
0: एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक,
1: हाँ
0: मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर
1: जी,
0: उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था,
1: हाँ
0: उसका था। और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी
1: जी जी,
0: जो सनी देओल की,
1: हाँ
0: उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें, तो उसके अंदर टुनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तेरे तरफ से अब्बास अली मुगल।
1: अच्छा,
0: तो वो इतना अच्छे तरह से शूट किए थे, वो हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहाँ से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा। तो उसमें क्या है कि जो पंच रहते थे जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो लॉन्ग शॉट में अलग रहता था, जैसा आपने बोले ना लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक क्लोज में फेस के ऊपर विषम कर दिया।
1: अच्छा,
0: तो वो अलग शॉट रहता था, फिर गिरने का इनका। अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते गोल गोल घूमते, मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था। तो वो पूरा मैच करके वो पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको
1: जी जी।
0: कुछ एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे, मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागेदर के साथ में
1: जी,
0: मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पंचाल
1: जी जी,
0: तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाभलो सौभाग्य चलेनी,
1: मराठी फिल्म जी।
0: तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में,
1: हाँ।
0: उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो,
1: हाँ
0: 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म।
1: अच्छा,
0: 1 तारीख से डबिंग चालू,
1: हाँ
0: और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर, तो वहां पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट। तो मुझे बुलाया डायरेक्टर ने
1: जी,
0: तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह, राजेंद्र काले

0: और अमित मंगतानी तीन प्रोड्यूसर थे, अनित मंगतानी का था कैसेट का कैसेट बनाते थे
1: जी।
0: और ये राजेंद्र काले तो कॉरपोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे
1: जी।
0: तो उनको तो कुछ ज्यादा नहीं था, तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं करके दे दूंगा बताओ। तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्रेंचमेक्स चालू होते थे
1: जी,
0: एक समारोह है उधर शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी। तो उसमें क्या फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक एक नंबर में चालू होता था, 16 नंबर में खत्म हो जाता था।
1: अच्छा।
0: तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, आप मुझे कहानी बताओ, खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, समझे ना। और बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था, भाई ये सीन है इसमें इतनी शॉर्ट है।
1: अच्छा।
0: वो स्क्रिप्ट हमको दिए जाते थे, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती थी, बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे, मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया, और हम सीन दिख के दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो इजी रहता था, प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर की है एक ही डायरेक्टर के साथ में।
1: अच्छा।
0: तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 को मार्च को खत्म किया,
1: हाँ।
0: तो मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं।
1: अच्छा।
0: आने के बाद देखे उन्होंने, क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए, क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता है, थॉट रहता है ना उनका, कहां से चालू करना है, कहां खत्म करना है,
1: हाँ।
0: बाकी तो सब था, और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे। तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया, तो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं।
1: अच्छा।
0: 10 पिक्चर किया, मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था।
1: अच्छा अच्छा। तो कार्यक्रम के इस मोड़ पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मेरा सर एक गाना था मैं जिसको बहुत लाइक करता हूँ।
1: हाँ जी।
0: हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है, हर एक का, लड़की का भी रहता है, लड़के को लगता है कि हमको राजकुमार मिले,
1: हाँ।
0: लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले, जो जीवन संगिनी है,
1: हाँ।
0: अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको,
1: हाँ,
0: वो अच्छी मिले तो वो हमेशा सपने में सोचते रहता है,
1: हाँ।
0: एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया तो एक बात जानू, जिंदगी पिक्चर का गाना है, राजेंद्र कुमार वैजयंती माला का,
1: हाँ।
0: रामानंद सागर की पहली पिक्चर, मतलब उनके बैनर में बनी थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था।
1: अच्छा।
0: और वो गाना बहुत अच्छा लगा।
1: आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही गाना।

0: दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं जी। तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर, और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है
1: सर? जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, हाँ जी, फिल्म लाइन में आर्टिस्ट का,
0: हाँ जी,
1: उसके बाद प्रोड्यूसर का,
0: हाँ,
1: डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है उनके।
0: अच्छा,
1: यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है,
0: हाँ हाँ,
1: जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, तो उसका नाम है AFE लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर।
0: एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो
1: वो हमारा पूरा जो है ना,
0: हाँ हाँ,
1: कुछ जितने भी एसोसिएशन है मेरे 20 के जितने भी है,
0: हाँ,
1: वो सारे का एक फेडरेशन है।
0: अच्छा,
1: वो उड़ा जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है, जैसे डायरेक्टर का IFDA, IFDA इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन, WICA कैमरामैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है।
0: तो ये यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं?
1: नहीं, हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं
0: जी,
1: चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो,
0: हाँ,
1: राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहां रजिस्टर करना पड़ता है आपको।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि भाई ये पिक्चर का एडिटर मैं हूं, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था।
0: अच्छा,
1: एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था।
0: अच्छा,
1: तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ
0: जी,
1: और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं।
0: तो आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे?
1: मैं 78 में,
0: 78 में ही, शुरुआत में ही,
1: हाँ,
0: जी जी जी जी,
1: 78 में जुड़ा था,
0: हाँ,
1: जो मेरा राजश्री में एक साल पूरा हो गया था,
0: हाँ,
1: जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था, तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में 25 रुपए में हमको भर के कार्ड मिलता था
0: जी,
1: तो आजकल सब कार्ड बने हैं, वो हम दिखाते थे तो हमको लैब में जाने देते थे।
0: अच्छा,
1: शूटिंग में हमको जाना है जाने देते थे, कि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल, हाँ, वो नहीं था, तो वो हम दिखाते थे हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में
0: जी,
1: उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था, तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे 251 रुपए लिए थे।
0: अच्छा,
1: एसोसिएशन ने, जो कि उनको लेते हैं, सब एसोसिएशन में मेंबर बने लेना आते हैं, तो उसके बाद वो कार्ड देते, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA जो आप बोले ना,
0: हाँ, AFE लिखा होता
1: है, AFE लिखा रहता है,
0: हाँ,
1: तो वो कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है
0: जी जी,
1: तो ये कार्ड में हमको, हम किधर भी जा सकते हैं ये।
0: अच्छा,
1: और एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से,
0: हाँ,
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है,
0: हाँ,
1: जैसा हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था, तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था।
0: अच्छा,
1: तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है, तो AFE का मतलब ये है, एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर।
0: चलिए, यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
1: मैं तो सर जिंदगी में नोक झोंक
0: जी

0: के साथ में नोकझोंक जो होना जरूरी है।
1: हाँ,
0: आज हम बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते हैं।
1: अच्छा।
0: हमारी लाइन ऐसी है, कभी कभी हम दो दिन इन घर नहीं जाते थे तो रूठी रहती थी, तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवां मोहब्बत पिक्चर का।
1: हाँ।
0: रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी होगी पहचान।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

ऐसा समा होगा न किस्मत जगमगाएगी। जरा सी बात का आखिर बनाती हो क्यों अफसाना।

0: था जब फिल्में रील पर बनती थी, निगेटिव रील हुआ
1: जी,
0: करता था
1: जी, जी।
0: और वो फुटेज आपके पास आता था, आप उसको एडिट करते थे। अब जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। शूटिंग जो कैमरे भी जो है वो डिजिटल कैमरे हैं
1: जी सर।
0: तो शूटिंग जो है उसमें डेटा के रूप में वो शूटिंग कैद हो जाती है और बाद में उसकी एडिटिंग भी उसी तरह से होती है कंप्यूटर पे। ये जो फासला है रील से डिजिटल कैमरे तक का, आपको भी ये सीखना पड़ा होगा?
1: नहीं सर, हमारे पास क्या है कि मेरा क्या हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर जितने भी है,
0: हाँ,
1: प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने में हम पर डिपेंड रहते, डिपेंड मतलब वो बोलते थे कि भाई तुझे ये हमने लाके दे दिए,
0: हाँ,
1: तुम काम कर दे, हमको मालूम नहीं।
0: अच्छा,
1: क्या पैसा लेना है ले ले, एक कर ले।
0: अच्छा,
1: तो हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर लेते थे।
0: अच्छा,
1: अभी क्या हुआ, अभी भी सेम सिस्टम है, खाली अपना कैमरा चेंज हो गया, ये हो गया। तो उसमें क्या है कि अभी कैमरे में चिप्स आ गए,
0: हाँ,
1: कैमरे में चिप्स आ गए। जो अभी मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है
0: जी,
1: वो मैंने बनाई है माताजी के नाम से, मूसा माता के नाम से
0: जी।
1: तो मैंने भी क्या किया, एक कैमरा लिया,
0: अच्छा,
1: उसके अंदर चिप्स आते हैं, फिर वो अपना कंप्यूटर में लेके वो पूरा जो हमने शूट किया है
0: जी,
1: हमको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके दे दिए उन्होंने, शूट किए उसमें।
0: अच्छा,
1: तो पूरा कन्वर्ट करके देने के बाद वो जो कन्वर्ट किया हुआ है हमारा मटेरियल,
0: हाँ,
1: वो हम फिल्म मशीन आते हैं एफसीपी बोलते हैं,
0: अच्छा,
1: उसमें जाके उसको लोड कर लेते हैं,
0: अच्छा,
1: कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, और फिर बाद में उसका एडिटिंग होता है अभी।
0: अच्छा,
1: पहले क्या होता था कि फिल्म पर जब एडिटिंग होती थी,
0: हाँ,
1: तो कैमरे में फूजी कलर, ईस्टमैन कलर, ओलो कलर रील आते थे 400-400 फीट के,
0: हाँ,
1: तो वो रील क्या होता था कि शूट होने के बाद उसको हम डेवलप करके रे प्रोड्यूसर लैब में भेज देता था। जैसे एक फोटो निकालने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आता है, निगेटिव,
0: हाँ,
1: निगेटिव चला जाता है लैब में डेवलपिंग के लिए, डेवलप होने के बाद हम उसको जोड़ देते थे।
0: अच्छा,
1: जोड़ के रील बनता था उसका, वो रील हम लैब में देते थे, उसका पॉजिटिव बन के आता था।
0: अच्छा,
1: नेगेटिव उधर ही रहता था,
0: हाँ,
1: पॉजिटिव हमारे पास आने के बाद में हम उसको उसका एक क्लैप रहता था, वन बाय टू टेक वन ऐसा करके आता था आवाज
0: जी, जी,
1: तो वो आवाज आता था, वो आवाज के साथ में वो जो पिक्चर में आवाज है,
0: हाँ,
1: वो मैच करते थे, तो हमारा पूरा साउंड सिंक में जाता था वो पूरा शॉट।
0: अच्छा,
1: फिर वो क्या सब असेंबल होने के बाद है ना,
0: हाँ,
1: तो वो हमको आगे पीछे का सब काट के जो ओरिजिनल बेस है, जो हमारा डायलॉग है,
0: हाँ,
1: जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम पोर्शन रख के बाकी निकाल लेते थे।
0: अच्छा,
1: और उसका फिर रील

0: बेस्ट है जो हमारा डायलॉग है, जो सीन की रिक्वायरमेंट है उतना ही हम पोर्शन रख के बाकी निकाल लेते थे।
1: अच्छा।
0: और उसका फिर रील बनता था, रील बनने के बाद उसमें सब प्रोसेस होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इफेक्ट है, सब होता था। फिर वो जैसा रील बनी है उसके हिसाब से नेगेटिव कटिंग होता था उधर
1: जी,
0: तो वो होता था। अभी सब कंप्यूटर पे हो गया सर।
1: आपने एक फिल्म दीवाना मुझसा नहीं, इसके साउंड एडिटर का भी काम किया है, तो ये साउंड एडिटिंग क्या अलग होती है फिल्मों के एडिटिंग में?
0: पहले क्या होता था सर कि एडिटर बॉस, उसके दो असिस्टेंट रहते थे
1: जी,
0: तो पॉजिटिव हम काट लेते थे। पॉजिटिव मतलब जो हम ना एडिटिंग हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में वो पिक्चर का, वो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया, सब हो गया, तो वो पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर है एक एक कैरेक्टर आके डबिंग करते थे उसका।
1: अच्छा।
0: डबिंग करते थे तो उसका ट्रैक आता था जिसको डब ट्रैक बोलते थे हम, वो आता था। फिर उसमें कुछ इफेक्ट रहते थे।
1: अच्छा।
0: ये डबिंग वाला तो पोर्शन हो गया, कैरेक्टर आपका जो आर्टिस्ट है वो डब करते थे, सब आर्टिस्ट उसमें 20 हो, 25 हो, कोई
1: अच्छा,
0: भी हो, हीरो हीरोइन लॉ अपना विलन हीरोइन की माँ सब डबिंग करते थे। उसके बाद उसका एक ट्रैक बनता था डायलॉग का।
1: अच्छा।
0: फिर दूसरा ये इफेक्ट जैसा होता है ना कि ये चाय का कप रख रहे और हीरो चलते हुए आ रहे, टक टक टक टक, ये असेंबल करते थे, असेंबल रिकॉर्ड किया जाता था फिर से उसको।
1: अच्छा।
0: डबिंग की तरह। और वो सब डालते थे, जैसा गाड़ी का साउंड है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग लाके देता था, हम काट के उसको डाल देते थे, तो उसका एक ट्रैक बनता था
1: जी जी
0: अलग सा। उसमें दो तीन ट्रैक बनने का था, एक ट्रैक में है ब्लू, एक में है किक, एक में है बॉडी फॉल।
1: अच्छा।
0: ये सब असेंबल होता था। जो म्यूजिक वाले रहते थे, जैसा बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, रिकॉर्ड करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन का
1: जी,
0: उसके अंदर रिएक्शन का अलग वो म्यूजिक लेते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक।
1: अच्छा।
0: जैसा ढम एक आवाज आता था बैंक का, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसमें ढम आवाज आता था पूरा, तो अलग देते थे, उसका बनता था। तो ये सब ट्रैक बनते थे, वो एडिटर लोग जो रहते ना उनके असिस्टेंट काम करते थे
1: जी।
0: कोई कोई एडिटर को डबिंग देते थे, वो परफेक्ट मैच करता था जैसा इसमें किया है अपना, उसको डबिंग एडिटर बोलते थे। बहुत लोगों ने नाम दिए, कोई देते नहीं थे
1: जी।
0: जैसा मनोज कुमार के पिक्चर में नाम आता था उमा शंकर नायक,
1: हाँ जी,
0: मतलब स्पेशली वो डबिंग के लिए था
1: जी।
0: बहुत सारे लोग आए, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अलग आदमी था, तो ये लोग क्या बराबर काम करते थे वो, और परफेक्ट सिंक, मतलब जो आर्टिस्ट ने बोला है वॉइस टू वॉइस लिप सिंक
1: जी,
0: पफ ये रहता है ना, मैच करके पूरा उसका ट्रैक बनता था पूरा। और म्यूजिक का भी ऐसा होता था, साउंड का, वो सब बोलते थे उसको फॉरेन के अंदर
1: जी,
0: फॉरेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी ये चीज के।
1: हाँ हाँ।
0: तो डबिंग एडिटर अलग, बहुत सारे पिक्चर में आप नाम देखते थे पुराने में, डबिंग एडिटर, इफेक्ट एडिटर, बैकग्राउंड म्यूजिक का एडिटर। इधर क्या होता था कि हमारा जो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम काम करते थे
1: जी,
0: तो उसमें हमारा नाम नहीं आता था पहले, मगर ये दीवाना मुझसा नहीं में क्या किए थे कि सारा काम बॉम्बे में साउंड का हुआ था।
1: अच्छा।
0: शूटिंग उधर होती थी, एडिटिंग भी उधर होती थी, कुछ पैच शूटिंग इधर किए थे
1: जी।
0: उसमें मिस्टर परवेश मिर्जा बोल के एक डायलॉग राइटर थे उसके,
1: हाँ।
0: उन्होंने हमारे पास आए और बोले कि भाई इसका सारा काम करना है, तो लास्ट में ये हुआ कि हमने भी काम किया है, एडिटर ने भी काम किया है, तो उन्होंने बोले क्या करे, तुम्हारा नाम देना है, कि तो आपने पैसे हमने आपको दिए, तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो साउंड एडिटर बोल के नाम दे दो।
1: अच्छा।
0: जो कि फॉरेन पिक्चर में आता है।
1: हाँ, हाँ।
0: जैसे आप शान पिक्चर देखोगे तो उसमें जो साउंड एडिटिंग का काम किया है,
1: हाँ।
0: डेविड नाम है, डेविड पॉल।
1: अच्छा।
0: स्पेशली नाम आता था उसका साउंड एडिटिंग, तो वो हम देखे थे, तो हमने बोले यार हमारा भी नाम दे दो। और पर्दे पर हमारा नाम आया है तो नाम तो देखो, मेरा नाम आया है तो मेरे फैमिली खुश हो जाएंगे
1: जी, जी।
0: नाम से कुछ नहीं, मगर क्या है कि लोग भी जानते थे,
1: हाँ।
0: कि भाई जैसा अभी कोई आया हमारे दोस्तों को, यार तेरी पिक्चर लगी है उधर, तेरा नाम देख लिया हमने। मुझे सबसे ज्यादा फेमस मैं हो गया मैंने प्यार किया से।
1: अच्छा।
0: तो उसमें मेरा चीफ असिस्टेंट एडिटर नाम दिए थे
1: जी, जी।
0: तो हमारा औरंगाबाद में पिक्चर लगी थी अजंता थिएटर में,
1: हाँ।
0: और हमारा जो कॉलेज थे मैं जहां पर पढ़ता था,
1: अच्छा,
0: उसके कुछ लोग उधर पढ़ते थे, और लातूर में रमा में पिक्चर लगी थी। तो उधर क्या हुआ था कि फिल्म लाइन में हम दो ही आदमी थे, मेरा भाई था 62 में आया था, मैं 77 में, उसके बाद बहुत आ गए उधर मराठवाड़ा से,
1: हाँ।
0: तो जितने भी मेरे प्रोफेसर वगैरह सब थे, कॉलेज के फ्रेंड थे
1: जी,
0: वो पिक्चर देख रहे थे,
1: हाँ।
0: उन्होंने मेरा नाम देखे, थिएटर वाला खुद गया भागते हुए मेरे मम्मी के पास में,
1: हाँ।
0: और बोला मम्मी को कि भाई आज मतलब मेरे जो प्रोफेसर थे जो दोस्त लोग थे उन्होंने बोला कि भाई हमको खुशी हो गई कि एक छोटे से कस्बे का लड़का मतलब ज्यादा एजुकेटर पढ़ा नहीं है,
1: हाँ जी,
0: मतलब उधर का एजुकेशन अलग है, बॉम्बे का अलग है, तो इतना बड़ा पिक्चर में काम किया।

0: वो भी 100-100 फीट के उधर ये रहते थे, स्क्रीन रहते थे, 200 300 400 फीट के बड़े बड़े बड़े बड़े थिएटर रहते थे। उन्होंने नाम पढ़ लिए, भागते हुए गए। फिर उसके बाद जो भी पिक्चर में काम करता था वो घर में जाके बोलते थे, अरे अपने दिलीप का नाम आया, चलो पिक्चर। हमको फ्री में पिक्चर रहती थी।
1: जी जी। तो ये आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, इनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: सर गाने तो अपना भंडार है, हिंदुस्तान में म्यूजिक का भंडार है। अभी एक एक चुने तो बहुत ये हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: मगर उसका एक गाना ही मैं फिर से सुनाना चाहूंगा, मैंने प्यार किया का, जो कि बिरहा गीत है, कहे तो से सजना वो तोरी उमरिया, ऐसा गाना है।
1: हाँ जी।
0: वो उन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया था, भोपाल इसकी लोक गायिका है बिहार की।
1: जी जी, जी।
0: बहुत बढ़िया गाना था उसके पीछे।
1: आइए सुनते हैं।

0: जैसे जैसे दिलीप जी आपका करियर आगे बढ़ा और नई फिल्में भी आप करने लगे, आपने मराठी में फिल्में की हैं, रीजनल फिल्मों की एडिटिंग और हिंदी फिल्मों की एडिटिंग, इसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं आप?
1: मैंने तो सर एक पिक्चर किया था, बकला नाम था उसका, छत्तीसगढ़ी।
0: अच्छा,
1: छत्तीसगढ़ी पिक्चर किया था। अच्छा, रीजनल पिक्चर में इसमें क्या रहता है, बहुत सारा फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है?
0: हाँ,
1: कि ये हिंदी पिक्चर जो है उसका बिग कैनवास है
0: जी,
1: इंटरनेशनल लेवल पर है
0: जी। जी,
1: मतलब आज जो हम इधर देखते हैं फॉरेन में भी हमारे लोग देखते हैं
0: जी,
1: मगर जो रीजनल पिक्चर रहते हैं ना पर्टिकुलर वो स्टेट का रहता है। जैसा भोजपुरी है अपना, ज्यादा से ज्यादा यूपी बिहार, जैसा बंगाली पिक्चर है बंगाल, और क्या बोलते हैं अपना छत्तीसगढ़ी। मगर रीजनल पिक्चर में टॉप के दो तीन टेरिटरी है जो कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, वो हिंदी के लेवल के पिक्चर बनाते हैं, उनका बजटिंग हिंदी के बराबर रहता है। मगर ये पार्ट, ये दो टेरिटरी छोड़कर, मतलब तमिल पिक्चर और तेलुगु पिक्चर छोड़कर,
0: हाँ जी,
1: बाकी सबका क्या है, लिमिट रहता है, क्योंकि उनका एग्जीबिशन ज्यादा नहीं रहता है ना।
0: हाँ जी,
1: जो कि हिंदी पिक्चर में क्या रहता है कि 10 टेरिटरी है, पूरा बिक जाता है, इंटरनेशनल लेवल मार्केट भी है उनका। मगर जो अपनी रीजनल पिक्चर रहती है वो लिमिटेड उसी स्टेट के लिए रहता है।
0: हाँ,
1: अभी भोजपुरी है, अभी भोजपुरी तो सब जगह पर जाता है, पंजाबी में जाता है, सब जगह पर जाता था, मगर ज्यादातर वो एक उनका स्टेट के उस पर रहता है, मतलब एक क्षत्रिय भाषा रहती है।
0: अच्छा।
1: और उनका पर्टिकुलर वो स्टेट में ही ज्यादा चलता है, तो उनका क्या रहता है कि एक लिमिटेशन रहता है कि भाई हमको ऐसा करना है, इतने में करना है, ऐसा करना है।
0: अच्छा,
1: तो उनका क्या रहता है कि फर्क ये रहता है कि उनको हमको फास्ट काम करके देने पड़ते हैं, फर्स्ट काम के, चलो भाई हमको 20 दिन में, वो जैसा पिक्चर कर लेते तो वो डबिंग का डेट लेके आ जाते हैं, कभी कभी मिक्सिंग का डेट, रिलीज डेट फिक्स रहता है उनका।
0: ओके।
1: तो हमको चेस करना पड़ता है, तो उनका काम हमको बहुत जल्दी फास्ट करने पड़ते
0: हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत से एडिटर, पहले एडिटर जो थे बाद में निर्देशक बन गए, बहुत से सिनेमाटोग्राफर बाद में निर्देशक भी बने हैं, आपका भविष्य में ऐसा कोई विचार है फिल्म निर्देशक?
1: अभी क्या है कि सर वो क्या रहता है कि अपनी लाइन जो है, या सभी का ही है, जो विधाता ने लिखा है, जो आपका लक है
0: जी,
1: उतना ही आदमी, हम मेहनत तो सब कर लेते हैं।
0: हाँ जी,
1: मेहनत तो बहुत लोग कर लेते हैं। अभी बहुत लोगों को क्या हुआ कि उस टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गए
0: जी,
1: जैसे हमारे मिस्टर राजकुमार हिरानी है, उनको बिग प्रोडक्शन मिल गया, उनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते तो निशिकांत मुखर्जी तो पूरा आर्ट में थे, इससे काम करते थे, उनके साथ में थे वो, तो उतना अपना चला उनका, ऋषिकेश मुखर्जी तो आर्ट फिल्म से तरफ जरा झुकाव था उनका
0: जी,
1: और बनाते थे अच्छे पिक्चर है, जैसे डेविड धवन है कमर्शियल में सक्सेस हो गए, एन चंद्रा तो एक दो पिक्चर के बाद ही टॉप में पहुंच गए, तो नसीब होता है। अभी क्या पड़ाव ऐसा हुआ है, ये भी एक तो उम्र हो गई है, तब भी हमने कोशिश

0: किया है
1: जी
0: कि जो हमारे राजस्थान में मेरी कुलदेवी है जो दरक परिवार,
1: अच्छा
0: दरक परिवार नहीं, जो हम महेश्वरी मारवाड़ी है, मतलब महाराष्ट्र से है, मराठी हमको आती है, घर में लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो हमने हमारी कुलदेवी है मूसा माता
1: जी,
0: तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने बोले थे, हमारा दादा दादी कुलदेवी ढूंढो, तो हम राजस्थान बहुत बार गए मगर उसमें हमको किधर नहीं मिले वो।
1: अच्छा,
0: तो हम एक दिन हमारे जो दरक है कोई, उन्होंने बोले हमारे कि उधर मंदिर बन रहा था, हम उधर चले गए, तो उधर मंदिर बन रहा था 2018 में,
1: अच्छा
0: मूसा माता का, तो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम पिछले साल 2021 में मंदिर बन गया
1: जी जी,
0: तो मैं उधर गया था 2022 में अप्रैल में, मंदिर के दर्शन किया मैं, माता जी का सह परिवार गया था, तो उसमें मुझे ऐसी कल्पना आई कि माता जी के लिए भक्ति गीत बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो वहां से कल्पना आई, मगर ओ अभी क्या था कि सब चीजें असेंबल करना पॉसिबिलिटी नहीं थी
1: जी।
0: हम म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच किए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो अभी क्या था कि माता जी मतलब अभी भी बना था, जैसा दूसरी की हिस्ट्री है वैसा कोई माता जी का हिस्ट्री नहीं था, तो हमने क्या किया, सारा थोड़ा बहुत माहिती लेकर, मतलब जो भी है अपना सब उनका सब हमने इकट्ठा किया
1: जी,
0: उनके बारे में जानकारी ली
1: जी,
0: और वो उस पर हमने एक गीत बनाया।
1: अच्छा,
0: गीत बना के मैंने उसको फिल्म फॉर्मेट पर शूट किया, रेड एमएक्स पर शूट किया
1: जी,
0: और जो कि अभी मैं नवरात्रि में रिलीज किया है, और वो शॉर्ट फिल्म है।
1: अच्छा,
0: तो वो हमने किया है, और अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ही सिलसिला चलता रहे, ये इसमें मैंने प्रोड्यूस खुद किया है, डायरेक्ट खुद किया है।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत लोगों का सहभाग है, डांस मास्टर का, कैमरामैन ने अच्छा काम किया, तो वो गीत हमने बना के रिलीज कर दिया है जो चल रहा है, कि हम चाहते हैं कि भाई दूरदर्शन पर भी आ जाए, तो हम उसको कोशिश में लगे कि उसका जरा अच्छे लेवल में अच्छे कैनवास में उसको ये करके ब्रॉडकास्ट करें, बनाए और ये करते रहेंगे
1: जी।
0: अभी क्या है कि हालात ऐसा हो गया है फिल्म लाइन का,
1: हाँ जी,
0: तो आजकल मतलब जो कॉमन मैन है,
1: हाँ,
0: ये कॉमन डायरेक्टर है, पिक्चर नहीं बना सकता
1: जी जी जी,
0: मतलब इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि एक तो बजटिंग बहुत हो गया है। पहले क्या होता था कि मराठी पिक्चर में भी हम पिक्चर बना सकते थे, 30-40 लाख रुपए है तो पिक्चर बना सकते थे।
1: अच्छा,
0: अभी मराठी में भी करोड़ों रुपए लग रहे हैं, क्यों, तो लोगों का सोच अलग हो गया
1: जी,
0: कैनवास अलग हो गया, लोग सोचते, थिंकिंग बड़ी हो गई।
1: हाँ,
0: उसके अंदर भी जो जैसा मैंने बोला ना दिया के पर आंचलिक उपन्यास था
1: जी,
0: एक पिक्चर आई थी सौराट, तो पिक्चर में 100 करोड़ का धंधा किया है वो पिक्चर, ये शोलापुर के पास में यरमाड़ा के करमाड़ा कोई गांव है,
1: हाँ,
0: उसमें शूट किया है वो पिक्चर में, एक कहानी इतनी सिमिट की है उसने,
1: हाँ,
0: कि एक ही जगह पर शूट किया है। अभी मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ
1: जी,
0: गांव में तो जा नहीं सकता मैं, मगर वो पिक्चर देखने का मुझे लगा कि मैं गांव में आके बैठ के देख लिया, तो क्या रहता है कि अभी इम्पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया।
1: अच्छा,
0: कि तो ट्रेड पूरा डिफरेंट चेंज हो गया पूरा। पहले क्या होता था कि ABC पिक्चर बनती थी, ए में अमिताभ बच्चन जितेंद्र बहुत थे, बी में फिर उसके नीचे वाले थे, सी में मतलब छोटे मोटे थे, पिक्चरें बनती थी, पिक्चर बिक जाती थी, हर पिक्चर छोटे भी पिक्चर बिक जाती थी, मगर अभी क्या हुआ, पिक्चर का मार्केटिंग खत्म हो गए, अभी कॉर्पोरेट के हाथ में है सब, बड़ी बड़ी कंपनियां ने ये कर लिया है, तो ये दौरान तो मैं बना ही नहीं सकता ना सोच सकता। सबसे पहले डेविड धवन वगैरह भी क्या थे, इनका आर्टिस्ट अप्रोच बहुत था।
1: अच्छा जी,
0: जैसा संजय दत्त है, गोविंदा ने इनको सपोर्ट किया, गोविंदा ने बहुत हेल्प किया, प्रोड्यूसर ने पहला नीलानी ने किया
1: जी,
0: और वो टाइम का माहौल अच्छा था, थिएटर बॉम्बई के अंदर 200-300 थिएटर थे।
1: अच्छा,
0: पिक्चर चलती थी, अभी थिएटर खत्म हो गए पूरे।
1: हाँ, हाँ।
0: तो अभी तो क्या इम्पॉसिबल तो लग रहा है, माहौल ऐसा है।
1: अब कार्यक्रम में हम आपकी तरफ से एक और गीत सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनवाएंगे आप श्रोताओं को?
0: मेरा एक गीत था, मतलब आदमी हमेशा आपके वाइफ को तो चाहता ही है खुद के, मतलब अर्धांगिनी है जो, मगर उसके पहले आदमी जो कॉलेज डे रहता है, उसमें मैं एक जगह पर बैठा था टेरेस के ऊपर, और हमारे उस टाइम में तो फॉरवर्ड नहीं था कॉलेज के टाइम में
1: जी,
0: उधर तो हम किसी को देखे तो 4-5 आदमी आते थे, बोले क्यों देखा उसको, तो मैं एक जगह पर खड़ा था और एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने बैठी थी, और उसके बाल जो है ना बार बार वो आ रहे थे चेहरे पर।
1: अच्छा,
0: तो कॉलेज में मैं गाने भी गाता था, कॉलेज में मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मैंने ऐसा ही गाना गाया, चेहरे पे गिरी जुल्फे कहे दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, क्योंकि मैं भागते हुए नीचे आ गया, मुझे लगा कि भाई उसके

0: आ जाएंगे और पकड़ के मुझे पीटेंगे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो वो हुआ ही ऐसा, मैं बैठा हुआ था कि वो लड़की आ गई और साथ में दो लड़कियां थे और एक लड़का था। तो मैं देखा उसको, मैं बोला मेरे से गलती हो गई क्या कुछ? नहीं बोले, वो गाना तुमने अधूरा गाया, पूरा गाना सुना।
1: क्या बात है। तो वही गीत सूरज फिल्म का गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: दिलीप दरक जी, आज फिल्म एडिटिंग के बारे में, फिल्म के संपादन के बारे में आपसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई और अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए। हमारे श्रोताओं को बताएं, आपके यहाँ आने के लिए विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: आपका
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने हमको इतना नवाजा, मतलब ढूंढ के निकाला और बहुत मैं आज खुश नसीब हूँ कि इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा स्वागत मेरा आज तक किसी ने नहीं किया है। जो हम बचपन से सुनते थे विविध भारती, जैसा रेडियो ऑन होता तो भागते हुए जाते थे, चलो ये गाना आने वाला है, उसमें पहले बोला जाता था कि अभी एक गीत सुनिए, एक गीत के बोलिए, इसको म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जी किशन है, लिरिक्स ये है, ये गाना है।
0: अच्छा,
1: तो हम सुनते थे पूरा। वो स्टूडियो में बैठो कि मैं कभी रेडियो पर सुना करता था नाम विविध भारती सा, आज मैं ये स्टूडियो में आया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आपका ये कारवा

0: जो चल रहे हैं, हम पैदा होने से पहले विविध भारती है, अभी मरने के बाद भी रहेगा विविध भारती, हम तो आते जाते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया हमको आनंद हो गया और बहुत खुशी हो गई कि आपने हमारा इतना बहुत बढ़िया स्वागत किया। मैं तहे दिल से, मतलब मेरे अंतर आत्मा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका आभार मानता हूँ।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के ठीक 5 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

संसार का सबसे अच्छा उपहार समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे

अपने जीवन का वह क्षण देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। नमस्कार सखियों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के एक कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी सखी आरती। सखियों, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ढेर सारी बातें और गीत संगीत। सखियों, इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। सरकार भी गर्मी में दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की सलाह दे रही है। आज हमारी चर्चा का विषय यही है, तपती धरती झुलसते लोग, क्या है समाधान। सखियों, आजकल बढ़ता तापमान मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। भीषण गर्मी और हीट वेव की समयावधि बढ़ती जा रही है। जो धरती माँ सबको जीवन देती है, वही आज तपकर जीवन को संकट में डाल रही है। भारत सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों के स्थानों पर तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस गर्मी का सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर पड़ रहा है। वर्तमान में भारत में गर्मी ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि शीत ऋतु की समयावधि घट रही है। शीत के बाद बसंत ऋतु का आगमन होने के स्थान पर ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। बसंत ऋतु का सुहावना मौसम अब देखने में नहीं आता, सीधे ग्रीष्म का आगमन हो जाता है। सखियों, सन 2026 में तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। हालिया आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत में है। कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक देखने में आ रहा है। गर्मी के कारण मानव ही नहीं, पेड़ पौधे जीव जंतु भी त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। इस गर्मी के प्रकोप के कारण भारत में बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। 256 गीगावाट जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 26 वर्षों में भारत में हीट वेव की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ी हैं और हॉटस्पॉट क्षेत्रों का विस्तार लगभग 1.5 गुना हो गया है। सखियों, प्रश्न उठता है कि यह धरती क्यों तप रही है। इसका मुख्य कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि है। लगातार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ रहा है। इस तापमान वृद्धि से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु की अवधि और तीव्रता बढ़ रही है। शहरीकरण भी इस तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है। शहरों में कंक्रीट और डामर की अधिकता के कारण हीट आइलैंड प्रभाव पैदा होता है, जिससे तापमान और बढ़ जाता है। वनों की कटाई से पेड़ों की कमी होती है, जिससे प्राकृतिक ठंडक घटती है और गर्मी बढ़ती है। गर्मी में जल संकट बढ़ जाता है। मिट्टी में नमी की कमी भी हीट वेव को बढ़ावा देती है। सखियों, असंतुलित जीवन शैली, अत्यधिक ऊर्जा खपत, प्रदूषण और संसाधनों का दुरुपयोग समस्या को और गंभीर बना रहा है। सखियों, हीट वेव को यानी लू को साइलेंट डिजास्टर कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे लोगों को प्रभावित करता है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। सखियों, बढ़ती गर्मी का आर्थिक दुष्प्रभाव भी हो रहा है, जैसे काम के घंटे घट रहे हैं, बाजारों में 30-50% तक ग्राहक कम हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी से फसलें समय से पहले सूख रही हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सखियों, इस बढ़ते तापमान का ज्यादा प्रभाव निम्न आय वर्ग के लोगों पर पड़ता है, क्योंकि उनके पास इस गर्मी से बचने के संसाधन कम होते हैं। सखियों, गर्मी से बचने के उपाय और भी गर्मी बढ़ा रहे हैं। एयर कंडीशनर ठंडी हवा देते हैं पर बाहर गर्म हवा छोड़ते हैं, यानी बाहर की गर्मी और बढ़ रही है। सखियों, इस तपती गर्मी से झुलसने से बचने के लिए कुछ ऐसे उपाय खोजने होंगे जो दीर्घकाल तक प्रभावी बने रहें और पर्यावरण के अनुकूल भी रहें।

सचिव सार्वजनिक स्थानों पर पानी और छाया की व्यवस्था करके सामुदायिक स्तर पर लोगों को राहत दी जा सकती है। जागरूकता अभियान चलाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन कवर बढ़ाना है, यानी पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को प्राकृतिक रूप से ठंडा करने का प्रयास करना है। कूल रूफ तकनीक द्वारा ठंडक प्राप्त की जा सकती है। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन द्वारा प्रकृति के अनुकूल ठंडक के उपाय किए जा सकते हैं। श्रमिक वर्ग के कार्य समय में बदलाव करके उन्हें राहत दी जा सकती है। सखियों, यदि सभी देशों के लोग मिलकर प्रयास करें तो वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी करके नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग करके इस बढ़ते तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। सखियों, तपती धरती और झुलसते लोग केवल एक मौसम की समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर वैश्विक संकट है। यदि समय रहते उपाय नहीं किए गए तो आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। नीचे जलती धरती, ऊपर आग उगलता सूरज, मानव तो क्या, समस्त जीव जगत का विनाश तय है। तो आइए इस संकल्प के साथ पेड़ लगाएं कि हरी भरी धरती ही हमें जीवन दे सकती है, संकट से बचा सकती है। पानी बचाएं, जल होगा तभी तो कल होगा। धरती को बचाने के लिए विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाना होगा। सखियों, अपनी बातों के क्रम को देते हैं कुछ विराम और चलते हैं संगीत के संसार में। आइए सुनते हैं यह गीत

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सखियों, आपने सुना यह गीत, आशा है आपको पसंद आया होगा। सखियों, गीत सुनने से पहले हम तपती धरती और झुलसते लोग, क्या है समाधान, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। सखियों, धरती के स्वास्थ्य के साथ हमें अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक होना होगा। आज जानकारी में हम बात कर रहे हैं योग और वेलनेस, हर पीढ़ी की जरूरत है। सखियों, आधुनिक जीवन शैली ने जहां हमें सुविधाएं दी हैं, वहीं कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ा दी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज दुनिया भर में लाखों लोग तनाव, चिंता और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से प्रभावित हैं। भारत में भी ये समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में योग और वेलनेस न केवल एक समाधान है, बल्कि आज हर पीढ़ी की आवश्यकता है। सखियों, योग की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी, पर आज संपूर्ण विश्व में इसे अपनाया जा रहा है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ही हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित योग अभ्यास से शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, जिससे तनाव और चिंता में कमी आती है। योग रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। योग से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। सखियों, उत्तम स्वास्थ्य एक उपहार है। योग से बच्चों को भी बहुत लाभ होता है। शोध के अनुसार जो बच्चे नियमित योग और ध्यान करते हैं, उनकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। योगाभ्यास से बच्चों का शैक्षणिक प्रदर्शन भी सुधरता है। सखियों, युवा वर्ग की जीवन शैली डिजिटल दुनिया से प्रभावित है। युवा काम के दबाव में जी रहे हैं। योग एक प्रभावी तनाव प्रबंधन तकनीक है। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का योग और ध्यान उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बना सकता है। बेहतर नींद, उत्तम स्वास्थ्य से कार्यक्षमता में सुधार आता है। सखियों, कोरोना के बाद सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो गए हैं। वेलनेस का दायरा केवल योग तक सीमित नहीं है। इसमें संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, मानसिक शांति और सामाजिक संबंध भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए पर्याप्त नींद यानी 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, पौष्टिक भोजन और सकारात्मक सोच भी वेलनेस का महत्वपूर्ण आधार है। सखियों, बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों के यानी सभी के लिए योग तथा वेलनेस जरूरी है। वृद्धावस्था में योग उम्र से जुड़ी समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। नियमित योग करने से बुजुर्गों में संतुलन बेहतर होता है, गिरने का खतरा कम होता है, जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है, स्मरण शक्ति कमजोर नहीं पड़ती, बेहतर नींद आती है। सखियों, योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और विचार सकारात्मक बनते हैं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में स्वस्थ रहना एक चुनौती बन गया है। बदलती जीवन शैली, बढ़ता तनाव और असंतुलित खानपान हमारे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और हमारी भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में योग तथा वेलनेस का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। यह केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हर पीढ़ी की जरूरत बन चुका है। सखियों, बातें तो बहुत हो गई, पर अब समय है मनोरंजन का। आइए सुनते हैं यह गीत।

सखियों आपने सुना यह गीत, आशा है आपको पसंद आया होगा। सखियों वेलनेस का अर्थ केवल बीमारियों से मुक्त होना नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव कर जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करता है। इसमें अच्छा पोषण, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। तनाव को प्रबंधित करना, भावनाओं को पहचानना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। सामाजिक संबंधों में घुलना मिलना, अच्छे संबंध बनाना भी वेलनेस के लिए जरूरी है। सखियों, गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए उत्तम आहार भी जरूरी है जो गर्मी के अनुकूल हो। आज विविधा में हम जानेंगे गर्मी के मौसम में कैसा हो हमारा आहार। सखियों, गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेटेड, ठंडा और ऊर्जावान रखने के लिए हल्का, सुपाच्य और पानी से भरपूर भोजन अच्छा होता है। आहार में तैलीय, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड न लें। नारियल पानी, छाछ, राबड़ी, खरबूजा, तरबूज, खीरा, नींबू पानी, पुदीना और मौसमी फल जरूर लें। खिचड़ी, दलिया जैसा सुपाच्य भोजन लें। चाय और कॉफी से बचें। बाहर का भोजन, चाट आदि न लें, इससे स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है। घर से बाहर जाते समय भोजन करके जाएं, पानी साथ लेकर जाएं, बार बार पानी पीते रहें जिससे हीट स्ट्रोक से बच सकें। मौसम के फल और सब्जियां भोजन में शामिल करें। सखियों, सावधानी में ही सुरक्षा है। घर में बनने वाले पेय पदार्थ जैसे आम का पन्ना, इमलाना, इनको पीने से शरीर को ताजगी और ठंडक मिलती है, साथ ही पानी की कमी भी दूर होती है। यह स्वाद के साथ साथ सेहत भी देते हैं। सखियों, गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से सावधानी रखें। दोपहर में बाहर ना निकलें, बहुत आवश्यक हो तो सिर को ढककर दोपहर में बाहर निकलें, अगर आवश्यक हो तो ही छतरी, स्कार्फ का उपयोग करके ही बाहर जाएं।

सखियों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो रहा है। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। इसी के साथ अपनी सखी आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, शाम के 5:30 हो रहे हैं और वक्त है आवाजों, एहसासों और एक नए विचार के इस खास सफर का। मैं हूं ओम प्रकाश नरुका और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवा दिलों की धड़कन युवाणी कार्यक्रम। कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी में एक ऐसी दौड़ चल रही है जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आता है और स्क्रीन पर दिखता है किसी और के अचीवमेंट्स। किसी और ने कोई नई गाड़ी ले ली, किसी ने प्रमोशन कर लिया, तो किसी की परफेक्ट लाइफ चल रही है और बस वहीं से शुरू हो जाती है तुलना की वो दौड़, जो हमें कहीं ना कहीं बस खुद से दूर ले जाती है।

सोचिए, क्या सच में हम दूसरों से कम हैं, या फिर हम बस किसी और की कहानी को देखकर अपनी कहानी को छोटा समझ लेते हैं। सच तो ये है, दूसरों से तुलना का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई हमसे कम और कोई ना कोई हमसे ज्यादा जरूर होता है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, आरव और कबीर। दोनों साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे, लेकिन एक फर्क था। आरव हमेशा अपनी मेहनत पर ध्यान देता था और कबीर हमेशा दूसरों पर ध्यान देता था। अगर किसी के नंबर उससे ज्यादा आ जाते तो वो दुखी हो जाता था। अगर किसी के पास नई चीज आ जाती तो उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन दोनों ने दौड़ में हिस्सा लिया। आरव दौड़ते वक्त सिर्फ फिनिश लाइन पर ध्यान दे रहा था, लेकिन कबीर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, और हुआ क्या, जिस कबीर को जीतना था वो हार गया, क्योंकि उसका ध्यान दौड़।

में हिस्सा लिया। आरव दौड़ते वक्त सिर्फ फिनिश लाइन पर ध्यान दे रहा था, लेकिन कबीर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, और हुआ क्या, जिस कबीर को जीतना था वो हार गया, क्योंकि उसका ध्यान दौड़ पर ही नहीं था बल्कि दूसरों पर था। यही तो हम कर रहे हैं, हम अपनी दौड़ भूल चुके हैं और दूसरों की रेस में उलझ गए हैं। कभी सोचा है, अगर पेड़ भी एक दूसरे से तुलना करने लगे तो शायद गुलाब को सूरजमुखी बनना हो और नारियल को आम बनना हो लेकिन तब उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। और यही हम कर रहे हैं, हम अपनी यूनिकनेस को भूलकर किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी जर्नी है, यहाँ हर किसी की टाइमिंग अलग है। किसी को जल्दी मिल जाता है तो किसी को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। हो सकता है आप बस अपने सही समय का इंतजार कर रहे हो। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं कल से आज बेहतर हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि असली जीत किसी और से आगे निकलने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। तो अगली बार जब भी मन में कोई तुलना आए तो खुद को याद दिलाइएगा, मेरी दौड़ मेरी है और इसका कोई मुकाबला नहीं। तो आइए एक गीत सुन लेते हैं।

जाती है। आज की ये बात एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है जिसने साबित कर दिया कि अगर जज्बा सच्चा हो तो कोई भी कमी रास्ता नहीं रोक सकती। ये कहानी है नितिश कुमार की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव खटोटी कला से शुरू हुई इस कहानी में संघर्ष भी है, दर्द भी है, लेकिन सबसे ज्यादा है हिम्मत और माँ का साथ। बचपन में नितिश चल नहीं पाते थे, उनके लिए स्कूल जाना भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनकी माँ ने हर हार नहीं मानी। हर रोज उन्हें गोद में उठाकर स्कूल ले जाती थी, छोड़ती थी और फिर वापस लेकर आती थी। ये सिर्फ एक माँ का प्यार नहीं था, ये एक सपना था जो अपने बेटे की आंखों में उन्होंने देखा था। समय बीतता गया लेकिन हालात आसान नहीं हुए। शारीरिक मुश्किलों के बावजूद नितिश ने कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। बचपन से ही पढ़ाई में तेज उन्होंने अपने गांव से शुरुआत शिक्षा की, फिर आगे की पढ़ाई जारी रखी। शुरुआत में उनका सपना कुछ और था, लेकिन परिस्थितियों ने रास्ता बदला और उन्होंने ठान लिया अब लक्ष्य होगा UPSC। लेकिन ये रास्ता भी आसान तो नहीं था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि चार बार असफलता ने उन्हें झकझोर दिया। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन नितिश ने हर असफलता को एक सबक बनाया और फिर से खड़े हो उठे। और आखिरकार पांचवें प्रयास में उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 847 हासिल कर ली। वो बच्चा जो कभी अपने कदमों से चल नहीं पाता था, आज अपने हौसले के दम पर एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। इस सफलता के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ था तो वो थी उनकी माँ। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले उन्होंने अपने भाई को खबर दी और फिर अपनी माँ को, जो उस समय खेतों में काम कर रही थी। उस पल में सालों का संघर्ष एक जीत में बदल चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर साथ में हिम्मत हो और किसी अपने का विश्वास हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। याद रखिए, कमी शरीर में नहीं, सोच में होती है, और जब सोच मजबूत हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो इनकी मेहनत को हम सलाम ठोकते हैं।

कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हर कदम एक चुनौती बन जाता है, लेकिन अगर हौसले मजबूत हो तो वही चुनौतियां सफलता की कहानी बन

कोरोना के बाद ये दुनिया बदल गई है। अब काम भी घर से और पढ़ाई भी घर से ही होने लगी है। लेकिन क्या सच में हर चीज़ ऑनलाइन सीखी जा सकती है? सोचिए, क्या आप उस डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे जिसने सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ाई की हो, या उस इंजीनियर का भरोसा करेंगे जिसने कभी असली मशीन को छुआ ही ना हो? आज की ये बात इसी सवाल पर है, क्या हर डिग्री ऑनलाइन करना सही है? सच ये है कि हर डिग्री ऑनलाइन नहीं हो सकती, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें अगर आपने ऑनलाइन करने की गलती की तो आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज बनकर रह जाएगी। यूजीसी और अन्य संस्थाओं के नियम साफ कहते हैं कि कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहां सिर्फ किताबें नहीं बल्कि हाथों का अनुभव, आंखों की समझ और रियल लाइफ प्रैक्टिस जरूरी होती है। सबसे पहले बात मेडिकल फील्ड की है। MBBS, BDS या नर्सिंग, ये सिर्फ किताबों का खेल नहीं, जहां मरीज की नब्ज महसूस करनी होती है, सर्जरी को समझना होता है, और ये सब किसी वीडियो से नहीं बल्कि हाथों से सीखा जाता है। इंजीनियरिंग की बात करें तो सिर्फ थ्योरी से पुल नहीं बनते, ना ही मोबाइल ऐप से इंजन समझ में आता है। वर्कशॉप, मशीन और फील्ड ही असली क्लासरूम होते हैं। आर्किटेक्चर्स और डिजाइन सिर्फ ड्राइंग नहीं बल्कि हकीकत में स्पेस को समझने की कला है, जहां मॉडल बनाना और साइट विजिट करना बहुत जरूरी होता है। परफॉर्मिंग आर्ट जैसे डांस, एक्टिंग या संगीत में स्क्रीन नहीं बल्कि गुरु का साथ सिखाता है। और लैब बेस्ड साइंस, इसमें तो केमिकल्स, माइक्रोस्कोप्स और एक्सपेरिमेंट्स के अलावा आपके बजाय आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब साफ है कि कुछ चीजें सिर्फ देखकर नहीं बल्कि करके और सीखकर ही की जाती हैं। आज के समय में ऑनलाइन कोर्सेज का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन हर चमकती चीज तो सोना नहीं होती ना। इसलिए अगर 12वीं के बाद आप अपना करियर चुन रहे हैं तो सिर्फ आसान रास्ता मत देखिए, सही रास्ता चुनिए, क्योंकि गलत डिग्री आपका समय भी ले जाएगी और आपका भविष्य भी। याद रखिए, सीखना आसान नहीं होना चाहिए, सीखना सही होना चाहिए। तो अब आपको एक गीत सुना देते हैं।

क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ के कुछ लोगों को इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ता। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्से में हर वो नागरिक जो तय आय सीमा से आता है उसे सरकार को इनकम टैक्स देना ही पड़ता है। हर साल बजट आता है और लोग उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन क्या सच में कोई ऐसा राज्य भी है जहाँ ये नियम लागू ही नहीं होता? जी हाँ, भारत का पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम एक ऐसा ही उदाहरण है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को उनकी आय पर इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इनके पीछे एक ऐतिहासिक कारण छुपा हुआ है। सिक्किम करीब 330 सालों तक एक स्वतंत्र रियासत रहा और साल 1975 में इसका भारत में विलय हुआ। इस विलय के समय एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई कि यहाँ की पुरानी टैक्स व्यवस्था को बदला नहीं जाएगा। यही वजह है कि आज भी यहाँ के मूल निवासियों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है। कानूनी तौर पर भी इसे मान्यता दी गई और भारतीय आयकर कानून की आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत सिक्किम के स्थानीय लोगों को उनकी कमाई और ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। खास बात यह है कि ये छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो 26 अप्रैल 1975 से पहले वहां के निवासी थे या उनके वंशज हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये नियम सभी पर लागू नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से जाकर सिक्किम में रहने लग जाए तो उसे ये छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर सिक्किम का कोई निवासी दूसरे राज्य में जाकर कमाई करना चाहे तो उस आय पर उसे इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। मतलब साफ है, ये छूट कोई सामान्य सुविधा नहीं बल्कि इतिहास और समझौते से जुड़ा एक विशेष अधिकार है। कुछ लोग इसे असमानता मानते हैं तो कुछ इसे सिक्किम की पहचान और परंपरा का हिस्सा मानते हैं। तो अगली बार जब टैक्स की बात हो तो ये दिलचस्प तथ्य जरूर याद रखिएगा कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां इतिहास आज भी लोगों को एक खास छूट देता है। तो एक छोटा सा ऐड चलाते हैं, फिर आगे चलेंगे।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: क्या कहा आपने? आप बोर हो रहे हो? कोई बात नहीं, आपकी इस बोरियत को अभी दूर कर देता हूँ।

जिंदगी ना एक खूबसूरत गीत है, पर ज़रूरी है कि हम उसे दिल से महसूस करें, हर सुर में खुशी ढूंढें, हर लम्हे को अपनी मुस्कान से सजाएं, क्योंकि असली जादू उन छोटी छोटी बातों में होता है जो दिल को सुकून दे जाती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो और अपनी जिंदगी को एक प्यारी सी धुन बना दो जिसे दुनिया सुनना चाहे। तो इसी के साथ हमारी आज की बातों को हम विराम देंगे। आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, और अगर कोई खेद हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब आप बने रहिए हमारे साथ इसी कार्यक्रम में आकाशवाणी के अलवर चैनल पर। ये था कार्यक्रम युववाणी, मैं था आपका रेडियो दोस्त ओम प्रकाश नरू का। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आपके साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता है।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में

0: प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब आपको जानकारी देते हैं आज की शेष रहे और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 7:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। रात 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात 9:15 पर सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात 11 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। और आज ही हमारी सभा समाप्त होगी रात 11:05 पर।

लीजिए अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार। 6:35 पर सुनिए रामचरितमानस गान। कल सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे नमस्कार अलवर। 7:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। 8 बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:15

पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, 8:30 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य पत्रिका, कल सुबह 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से रिले किए जाएंगे और 9:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फुलवारी, 5:30 पे सुनिए कार्यक्रम युवाणी, 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 पे सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती, 7:30 पे सुनिए फिल्म संगीत, रात 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, 8:45 पे आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9:15 पे सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, रात 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में दिल है तुम्हारा फिल्म से गीत। गीतकार हैं समीर और संगीत से सवारा है नदीम शवन ने।

किशोर कुमार की आवाज में लीजिए, आप सुनते हैं अंदाज फिल्म से गीत। गीत पकारे हैं हसरत जयपुरी और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनते हैं शर्मीली फिल्म से गीत। गीतकार है नीरज और संगीत से सवारा है एसडी वर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे।

समाचार। मुख्य समाचार। पचपदरा रिफाइनरी में इस महीने के तीसरे सप्ताह तक दोबारा ट्रायल शुरू होने की उम्मीद। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, मरम्मत का काम तेजी से जारी। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। कई जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया और नीट यूजी परीक्षा 2026 कल देश के 552 शहरों में आयोजित होने वाली परीक्षा में करीब 22,79,000 विद्यार्थी भाग लेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि पचपदरा रिफाइनरी में मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और मई के तीसरे सप्ताह तक दोबारा ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि रिफाइनरी को बहुत सीमित नुकसान हुआ है। वर्तमान में एलएनटी के 450 कर्मचारी एचपीसीएल की निगरानी में दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों रिफाइनरी में लगी आग की घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के विजन को लेकर राज्य सरकार आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर तकनीकी सुधारों पर काम कर रही है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एलईडी मोबाइल वैन और उनके स्थानीय कला जत्थों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की

0: जानकारी दी जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले में इस अभियान के जरिए कृषकों और पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। आज खंडार क्षेत्र की गोठ बिहारी और नायपुर ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। भीलवाड़ा के खजूरी ग्राम पंचायत में भी ग्राम रथ पहुंचा। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने योजनाओं पर तैयार किया गया मनमोहक गीत प्रस्तुत किया। भारतीय रेलवे की ओर से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर रेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा रेलवे स्टेशन पर आधुनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम शुरू किया गया है। जयपुर डिवीजन के डीआरएम रवि जैन ने बताया कि इस हाईटेक सिस्टम के चालू होने से मानवीय भूल के कारण होने वाले हादसों पर लगाम लगेगी। इस नई व्यवस्था के तहत अब एक साथ दो दिशाओं में सिग्नल देना संभव नहीं होगा। श्री जैन ने बताया कि सुरक्षा के इस तंत्र को धीरे धीरे देश भर के अन्य स्टेशनों पर भी लागू किया जा रहा है।
1: रेलवे

0: मनमोहक गीत प्रस्तुत किया। भारतीय रेलवे की ओर से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर रेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा रेलवे स्टेशन पर आधुनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम शुरू किया गया है। जयपुर डिवीजन के डीआरएम रवि जैन ने बताया कि इस हाईटेक सिस्टम के चालू होने से मानवीय भूल के कारण होने वाले हादसों पर लगाम लगेगी। इस नई व्यवस्था के तहत अब एक साथ दो दिशाओं में सिग्नल देना संभव नहीं होगा। श्री जैन ने बताया कि सुरक्षा के इस तंत्र को धीरे धीरे देश भर के अन्य स्टेशनों पर भी लागू किया जा रहा है।
1: रेलवे का जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे काफी सुधार की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली आपस में इंटरलॉक है कि अगर एक तरफ का सिग्नल दे दिया तो दूसरे का नहीं दिया जा सकता। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब सिस्टम भी में लगाए जा रहे हैं ताकि मिनिमम आज मतलब मैनुअल इंटरवेंशन जिसको कहते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन वो कम है और सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली सुरक्षा को इंश्योर करे।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने श्री जोशी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा और रचनात्मक पहचान मिलेगी। श्री जोशी इससे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में जहां एक ओर कई स्थानों पर आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई, इससे पारे में गिरावट हुई और लोगों को तेज गर्मी से मामूली राहत मिली, वहीं राज्य के पश्चिमी इलाकों में गर्मी के तेवर तीखे बने रहे। आज भी कई स्थानों पर आंधी चलने और बारिश होने के समाचार हैं। सवाईमाधोपुर में सुबह तेज हवा के साथ बरसात हुई, कोटा में दोपहर बाद तेज बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। इस बीच मौसम विभाग ने 11 से अधिक जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इन स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले 4-5 दिन बादल गरजने, बिजली गिरने और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम में आए इस बदलाव से मई के शुरुआती 15 दिनों में सामान्य से कम गर्मी रहने और लगातार आंधी बारिश का दौर बने रहने के आसार हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। प्रदेश के विभिन्न अभयारण्यों और वन क्षेत्रों में की जा रही वन्य जीवों की गिनती आज शाम 5 बजे संपन्न हुई। ये गणना कल वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुई थी। वाटरहोल पद्धति पर आधारित इस गणना के आंकड़े विभिन्न जिलों से इकट्ठे कर प्रदेश मुख्यालय भेजे जा रहे हैं। झुंझुनू जिले के 69 स्थानों पर 143 कर्मचारियों ने वन्य जीवों की गिनती की। जिले के बीड़ क्षेत्र में इस बार हाइना और हिरणों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। वनकर्मी शेर सिंह कसवा ने बताया कि पेड़ों पर मचान बनाकर रात भर जाकर वन्य जीवों की गणना की गई है।
2: वन्य जीव जनगणना की नील गाय है, हिरण है, ब्लैक बक है, चिंगारा है, मालू तित्तर है, खरगोश है, लोमड़ी है, इसकी जनगणना हमारे द्वारा चौथी बार जनगणना है। हम देख पाए कि खरगोश और नीलगाय और हिरण और लोमड़ी और बतख भी है, इसलिए कैमरा लगाया हुआ है। हम यहाँ झाड़ के ऊपर मचान बनाए रखे हैं, इस पर रहते हैं।
0: राज्य के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता को लेकर सघन जागरूकता अभियान चलाया जा

0: आएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के माध्यम से आम लोगों को ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियमों की जानकारी दी जाएगी। इस बीच विभिन्न शहरों में स्वच्छता और शहरी विकास कार्यों को गति दी जा रही है। आज अलवर में आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों के तहत जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने अलवर शहर में बाजारों, स्कूलों और कचरा निस्तारण स्थलों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने अधिकारियों को शहर की स्वच्छता को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उधर पाली जिले के खेतावास में सीवरेज के पानी को ट्रीट करने के लिए नया एसटीपी प्लांट बनाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि अमृत 2.0 योजना के तहत बनाए जा रहे इस प्लांट पर 5.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे अक्षय ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे बिजली बचाने के साथ साथ शहर का विकास पर्यावरण अनुकूल किया जा सके।
1: शहरों में जो एसटीपी प्लांट है और उनके बिजली के बिल भारी मात्रा में आते हैं, उनको इको फ्रेंडली वे में रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उनको मिट आउट किया जाता है। उसके लिए हम जो 1 मेगावाट के प्लांट की तैयारी कर रहे हैं और इससे जो एनर्जी हमें मिलेगी उसको हम फीड कर सकेंगे हमारे दोनों एसटीपी प्लांट को। आगे बजट घोषणाओं में जो 15 MLDC एसटीपी प्लांट की घोषणा हुई है उसकी बिजली की पूर्ति भी इससे हो सकेगी। इसके अलावा हम और 2 मेगावाट प्लांट जो है सोलर के माध्यम से हम और तैयारी कर रहे हैं ताकि पाली नगर निगम को बिल्कुल जो है बिजली के बिल से मुक्त किया जा सके।
0: जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने रंग दे गुलाबी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आज एक ही दिन में शहर की 500 से अधिक दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित स्लोगन लिखे गए और आकर्षक चित्र बनाए गए। जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने मालवीय नगर क्षेत्र में बच्चों के साथ पेंटिंग बनाकर इस पहल का शुभारंभ किया। अभियान में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और पर्यटकों तक स्वच्छ जयपुर का संदेश पहुंचाना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से नीट UG 2026 का आयोजन कल किया जाएगा। ये परीक्षा एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके लिए करीब 22,79,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा देश के 552 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। प्रदेश में नीट परीक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास 300 मीटर परिधि के ई मित्र, फोटोकॉपी और साइबर कैफे बंद रहेंगे। वहीं NTA की UGC नेट परीक्षा के लिए भी आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। ये आवेदन 20 मई तक किए जा सकेंगे। 87 विषयों के लिए ये परीक्षा जून महीने में होगी। कल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये दिन प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने का दिन है। साथ ही उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिन्होंने किसी खबर की खोज में अपनी जान गंवाई। इस वर्ष की थीम है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के साथ लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया आमजन को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही कर्तव्यों के लिए सजग भी करता है। बाड़मेर जिले के सनावड़ा स्थित एक सरकारी स्कूल में आज करीब 13 विद्यार्थियों की तबीयत खराब हो गई। विद्यालय में नो बैग डे के दौरान पानी पीने और बाहर से खरीदी गई चुस्की के सेवन के बाद बच्चों ने शरीर पर खुजली और लाल निशान होने की शिकायत की। सभी बच्चों को तुरंत बाड़मेर जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रशासन ने दूषित जल या खाद्य सामग्री की आशंका को देखते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पचपदरा रिफाइनरी में इस महीने के तीसरे सप्ताह तक दोबारा ट्रायल शुरू होने की उम्मीद। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, मरम्मत का काम तेजी से जारी। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए चार संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया और नीट यूजी 2026 परीक्षा कल, देश के 500

52 शहरों में आयोजित होने वाली परीक्षा में करीब 22,79,000 विद्यार्थी भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अल्पना राठौड़ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश क्षोत्रिय ने तैयार किया है। राजसमंद में बीते कई दिनों से गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। भीषण गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम देखी जा रही है। दिन के समय पैदल राहगीर पेड़ों और टिन शेड के नीचे छाया तलाशते नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कई स्थानों पर प्याऊ लगाई गई है। वहीं तेज गर्मी के प्रकोप से बचाव के लिए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला गया है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर दिया है। जिले में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से स्वगणना की शुरुआत हुई। विधायक दीप्ति महेश्वरी ने अपनी और अपने परिवार की स्वगणना कर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से 15 मई तक अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराने की अपील की। श्रीमती महेश्वरी ने कहा कि इससे प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और तेज गति से होगी। बाद में प्रगणक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने सहारा इंडिया परिवार में फंसे लाखों निवेशकों के मुद्दे को पिछले दिनों संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि इन लोगों की मेहनत की कमाई आज तक वापस नहीं मिल पाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से निवेशकों की राशि लौटाने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की। राजसमंद जिले ने टीबी मुक्त भारत अभियान में प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया। एक्सरे स्क्रीनिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्व क्षय दिवस पर जयपुर में जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर रामनिवास जाट को सम्मानित किया गया। चिकित्सा विभाग की टीम ने जिले के गांव-गांव तक पहुंचकर सघन स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चलाया। वहीं टीबी के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील की। जिले में पुलिस ने गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने बताया कि महज 14 दिनों में 114 लोगों को खोज निकाला गया है। इस अभियान में 15 विशेष टीमों ने आधुनिक तकनीकी और पारंपरिक तरीकों से समन्वय से गुमशुदा लोगों को ट्रैक किया। इस अभियान के तहत 6 से 8 साल पुराने मामलों का भी निपटारा किया गया। जिले के किसानों ने केंद्र सरकार की एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री योजना में 100% लक्ष्य हासिल किया है। जिले में सभी पात्र किसानों को योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया है। इस साल जनवरी महीने तक पंजीकरण प्रगति करीब 83% थी, जिसे पिछले महीने 100% पूरा किया गया। जिले के नाथद्वारा में अब मंदिरों में चढ़ने वाली फूल मालाएं जलाशयों में नहीं बहाई जाएंगी। नगर पालिका की नई पहल के तहत इन फूलों का निस्तारण कर कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। इसके लिए विशेष वाहन रोज मंदिरों से फूल एकत्रित करेंगे। योजना के पहले चरण में 20 मंदिरों को जोड़ा गया है। इनसे रोजाना मिलने वाले 200 से 500 किलो फूलों से कंपोस्ट तैयार की जाएगी। नगर पालिका की इस पहल से शहर में साफ सफाई बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण मुहिम को भी मजबूती मिलेगी। जिले में पटवारियों को जीवन रक्षक तकनीक CPR का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने पर आपात स्थिति में तुरंत सहायता करने के तरीके सिखाए। इससे पीड़ितों को तुरंत मदद मिलने के साथ ही लोगों में CPR के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ऑपरेशन गरिमा के तहत राजसमंद में जागरूकता सेमिनार रखी गई। श्रीनाथ नर्सिंग कॉलेज में हुए सेमिनार में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और महिला अधिकारों के बारे में बताया गया। इस दौरान कालिका टीम ने बालिकाओं से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। साथ ही राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाकर उसके उपयोग के बारे में बताया गया, जिससे आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता ली जा सके। राजसमंद में पिछले दिनों हवाई हमलों और ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई। इसके तहत पुलिस लाइन में सायरन बजाकर आपात स्थिति बनाई गई। साथ ही बमबारी और आग लगने की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही का पूर्व अभ्यास किया गया। इसमें सिविल डिफेंस, SDRF, पुलिस और चिकित्सा टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया। घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास भी इस दौरान किया गया। HPV टीकाकरण को लेकर जिले के विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। CMHO डॉक्टर हेमंत बिंदल ने बताया कि HPV टीकाकरण अभियान के तहत सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए छात्राओं और अभिभावकों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही 14 वर्ष की बालिकाओं का निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान रखे जा रहे संवाद सत्रों के माध्यम से बालिकाओं और अभिभावकों की भ्रांतियां भी दूर की जा रही हैं। राजसमंद जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, पचपदरा रा तेल साफ करण रा कारखाना माए परख रो काम ई महीना रा तीजा सप्ताह ताई उजु स्वरूपे बन रा आसार। प्रदेश माए आज ही कई थोड़ा तेज बायरो बाजन सागे बिरखा फी, कई जिला माए आंधी बारिश सारू चेताइचियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साल 2026-27 सारू चार संसदीय समितियां उजू बनाई और नीट यूजी 2026 रो इम्तिहान काल देश रा 552 शहरा माए करीब 22,79,000 विद्यार्थी परीक्षा देवेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो है कि पचपदरा माए तेल साफ करण रा कारखाना री मरम्मत रो काम तेजी चाल रियो है और ई महीना रा तीजा सप्ताह ताई परख रो काम ओजु सरूफे वन रा आसार है। वे आज जोधपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रिया हा। वे बतायो कि लारला दिना लागी लायू घणो नुकसान नीफियो। मुख्य सचिव कहो कि मौजूदा दौर माए ओ काम देख रही एक गैर सरकारी कंपनी रा 450 कर्मचारी ई रिफाइनरी री दिन रात निगरानी कर रहा है और लाई लगन रा कारणा री जांच करी जा रही है। वी श्रीनिवास कहो कि राज्य सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन री सोचू IIT जोधपुर सागर मिलर तकनीकी सुधाराओं जुड़िया काम कर रही है। राज्य सरकार कानी जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां री जानकारी आम जन ताई पोगावन रा मकसद ग्राम रथ अभियान चलायो जा रियो है। इना तेत LED मोबाइल वैन और स्थानीय कला जत्था रे जरिए गावाई हलका माए योजनावां रे बारा माए बतायो जा रियो है। ये अभियान रा तेत सवाई माधोपुर जिला माए किसाना और ढंडा ढोर रखन वाला माए जाग जगाई जा रही है। आज खंडार हलकारी गोठ बिहारी और नायपुर ग्राम पंचायत माए राखी जा कार्यक्रम माए मोटी तादाद माए गांव वाला मौजूद रहा। जिला रा चार ही विधानसभा हलका माए आ ग्राम रथा रे जरिए न्यारी न्यारी योजना मा रे बारा माए बतायो जा रियो है। भीलवाड़ा जिला री खजूरी ग्राम पंचायत माए ग्राम रथ पुग्यो। इमा के लोक कलाकार आई आ सरकारी योजना गजब की माँ का भजन लाल जी कहवे माँ के जचगी गीत माथे सोहनी प्रस्तुति दीनी। दौसा रेलवे स्टेशन माथे रेलारी हिफाजत व्यवस्था मजबूत करण सारू नुवो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम शुरू करी चियो है। जयपुर डिवीजन रा डिविजनल रेल मैनेजर रवि जैन बतायो कि एकदम नुवी तकनीक रो ओ सिस्टम चालू हुए जावण पाछे इंसानी गलतियां रे कारण फेवन वाला हादसा रुक जावेला। वे बतायो कि ओ सिस्टम शुरू हुआ पाछे एक सागे दो दिशावां माए सिग्नल नी दियो जा सकेला। श्री जैन बतायो कि आ तकनीक धीरे धीरे देश रा दूजा टेसनामा थे लागू करी जा रही है।
1: रेलवे का जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे काफी सुधार की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली आपस में इंटरलॉक है कि अगर एक तरफ का सिग्नल दे दिया तो दूसरे का नहीं दिया जा सकता। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब सिस्टम धीरे लगाए जा रहे हैं ताकि मिनिमम मतलब मैनुअल इंटरवेंशन जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन वो कम है और सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली सुरक्षा को इंश्योर करे।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय नामी गीतकार और लेखक प्रसून जोशी ने प्रसार भारती रा नुवा अध्यक्ष बनाया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव श्री जोशी ने बधाई देता थका कहो कि वारी अगुवाई माए प्रसार भारती ने नुवी ताकत और पिछाण मिलेला। प्रसून जोशी इन पहली केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रा अध्यक्ष रह चुका है। अरब मौसम, प्रदेश माए लाडला 24 घंटा माए कई थोड़ा आंधी बारिश हुई तो कठे कठे जोरदार तावड़ो पड़ियो। आज ही कई थोड़ा आंधी चालन और बिरखा वेवन रा समाचार मिलिया है। सवाई माधोपुर माए समारे रिपोर्ट जोरदार बायरो बाजन सागे बिरखा भी। कोटा माए दोपहर पाछे तेज बारिश हुई और कठे कठे ओला पड़िया। मौसम विभाग कई जिला माए बिरखा सारू चेतायो है। महकमारा मुजब बीकानेर जैसलमेर फलौदी चूरू सीकर झुंझुनू कोटा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ बूंदी और कोटपुतली बहरोड़ जिला माए कठे कठे मेहरा आसार है। आठ होना 30-40 किलोमीटर प्रति

0: भंडारी रफ्तार उ बायरो बाजण री संभावना है। मौसम विभाग उ मिली जानकारी रे मुजब राज्य में आवता 4-5 दिन ताई बादलों री गाज सागे छंटो छिड़को वेवण रा आसार है। महकमा रे मुजब ई महीना रा शुरुआती 15 दिन ताई आंधी बारिश रो दौर चालतो रहवण रे कारण गर्मी रो जोर कम रहवण री संभावना है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चालू माली साल सारू 4 संसदीय समितियां ओजू बनाई है। भारतीय जनता पार्टी रा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने लोकसभा रा 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति रा अध्यक्ष बनाई चिया है। लोकसभा रा 15 और राज्यसभा रा 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति रे सदारत भाजपा रा सांसद वैजयंत पांडा करेला। लोकसभा में कांग्रेस रा सदस्य केसी वेणुगोपाल ने लोक लेखा समिति रा अध्यक्ष बनाई चिया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति री अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा रा सदस्य फग्गन सिंह कुलस्ते करेला। ए समितियां आवता साल 30 अप्रैल ताई काम करेला। प्रदेश रा न्यारा न्यारा वन्य जीव अभ्यारण्य में काल बैसाखी पुन्नू रे मौके सरूवी जिनावरा री गिनती रो काम आज सिंजा 5 बजे पूरो फेक्यो। जिनावरा री वाटर होल तरीका करी जी गिनती पछे आंकड़ा हेडक्वार्टर ने भेजा चाटिया है। झुंझुनू जिला में 69 ठोड़ा 143 कर्मचारी जिनावरा री गिनती कीनी। जिला रा बीड हल्का माए जरख और हिरण री तादाद माए बढ़ोतरी नजर आई। जंगलात महकमा रा कर्मचारी शेर सिंह कसवा बतायो के रूखणा माथे बनाई जी मचान आखी रात निगरानी राख हर जनावरा री गिनती करी जी।
1: वन्य जीव जनगणना की झील गाय है, हिरण है, ब्लैक बक है, चिंगारा है, मालू तितर है, खरगोश है, लोमड़ी है। इसकी जनगणना हमारे द्वारा चौथी बार जनगणना है। हम देख पाएंगे खरगोश और नील गाय और हिरण और लोमड़ी और बतख भी है, इसलिए कैमरा लगाया हुआ है। हम यहाँ जाल के ऊपर मचान बनाए रखे है, इस पर रहते हैं।
0: राज्य रा सगला नगरीय निकाया माए साफ सफाई उजड़ियो जागरूकता अभियान चलायो जावेला। स्वायत्त शासन विभाग रे मुजब ई अभियान रा तहत सूचना शिक्षा और संचार कार्यक्रम रे जरिए जनता ने ठोस कचरा प्रबंधन उजड़िया नुआ नियमा री जानकारी दी जावेला। ई बीच अलवर माए स्वच्छ सर्वेक्षण री तैयारियां सारू जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त शहर रो दौरो कर बाजारा स्कूला और कचरा रो निपटारो करण वाली ठोड़ा माथे सफाई री व्यवस्था रो जायजो लीनो। पाली जिला माए अमृत 2.0 योजना रा तहत नालिया रा पानी ने साफ करण सारू खेतावास माए नुओ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनायो चाहियो है। नगर निगम रा आयुक्त नवीन भारद्वाज बतायो कई सारू सरकार पहली करीब 5.25 करोड़ रुपया मंजूर कर चुकी है। वे बतायो कि शहर रो विकास आबो हवारी हिफाजत सागे करण सारू ई प्लांट ने अक्षय ऊर्जा जोड़बारी कोशिश करी जा रही है।
2: शहरों में जो एसटीपी प्लांट है और उनके बिजली के बिल भारी मात्रा में आते हैं, उनको इको फ्रेंडली वे में रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उनको मिट आउट किया जाता है। उसके लिए हम जो 1 मेगावाट के प्लांट की तैयारी कर रहे हैं और इससे जो एनर्जी हमें मिलेगी उसको हम फीड कर सकेंगे हमारे दोनों एसटीपी प्लांट को। आगे बजट घोषणाओं में जो 15 MIDC एसटीपी प्लांट की घोषणा हुई है उसकी बिजली की पूर्ति भी इससे हो सकेगी। इसके अलावा हम और 2 मेगावाट प्लांट जो है सोलर के माध्यम से हम और तैयारी कर रहे हैं ताकि पाली नगर निगम को बिल्कुल बिजली के बिल से मुक्त किया सके।
0: जयपुर ने साफ और रूपाड़ो बनावण सारू नगर निगम रंग दे गुलाबी अभियान चलायो है। शहर री 532 भीता माथे साफ सफाई जुड़िया नारा मांडी चिया और सोहना फोटो बनाई चिया। जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम रा आयुक्त ओम कसेरा मालवीय नगर हल्का माए बच्चा सागे पेंटिंग बनार इनरी शुरुआत कीनी। अभियान माए ट्रांसजेंडर ही भाग लीनो। देश रा मेडिकल कॉलेज माए दाखिला सारू नीट यूजी 2026 परीक्षा काल फैला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA री ओर ली जावन वाली आ परीक्षा दोपहर पाछे 2 बजाऊ सिंजा 5 बजा ताई फैला। परीक्षा देवन सारू कोई 22,79,000 विद्यार्थी नाम मंडाया है। राज्य माए नीट परीक्षा रा सेंटर रे आर एस आर 300 मीटर रा दायरा माए ई मित्र फोटोकॉपी और साइबर कैफे री दुकाना बंद राखी जावेला। दूजी कानी NTA री ओर ली जावन वाली UGC नेट परीक्षा सारू अर्जी देवन रो काम आज से रूफे क्यों।

0: अर्जियां 20 मई ताई दी जा सकेला। 87 विषयां सारू ली जावन वाली आ परीक्षा जून महीना माए फैला। काल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनायो चावेला। ओ दिन खबर री खोज माए जान लगा देवन वाला पत्रकारां री याद माए मनायो चावे है। इनरो इंसाल रो मुद्दो है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस रे मौके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया जुड़िया पत्रकारा ने शुभकामनावां दीनी है। राजस्थान पुलिस रो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG सरकारी नौकरियां माए भर्ती सारू ली जावन वाली परीक्षावां माए फर्जी उम्मीदवार बिठावन वाला गिरोह रा 4 सदस्यां ने गिरफ्तार कीना है। पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल बतायो के आ कार्रवाई साल 2022 माए भी हिंदी विषय रा प्राध्यापक और शारीरिक शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षाओं जुड़ी है। वह बतायो के जांच रे दौरान मूल उम्मीदवार रिठौड़ दूजा उम्मीदवार बिठावन सारू सौदो करण रिठा पड़िया पाछे SOG नुआ सॉफ्टवेयर और तकनीक री मदद आरोपिता री पछाण कर गिरफ्तार कर लीना। पकड़ी जे आरोपिता माए 3 फर्जी उम्मीदवार और 1 दलाल शामिल है। राजस्थान पुलिस री साइबर शाखा व्हाट्सएप रे जरिए 5.25 करोड़ रुपए री ठगी रा आरोप माए 17 जना ने गिरफ्तार कीना है। आरोपित लोग एक कंपनी रा मालिक री फोटो व्हाट्सएप माथे लगार झांसो दीनो हो। पुलिस कोटा पाली जोधपुर और बांसवाड़ा समेत न्यारा न्यारा जिला माए गिरफ्तारियां कीनी। साइबर पुलिस जनताओं शंका लायक मैसेज री पुष्टि करिया बगैर कोई चुकारो नी करण री अर्ज कीनी है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। पचपदरा रा तेल साफ करण रा कारखाना माए परख रो काम ई महीना रा तीजा सप्ताह ताई ओजू स्वरूप है बन रहा आसार। प्रदेश माए आज ही कई थोड़ा तेज बायरो बाजन सागे बिरखाफी। कई जिला माए आंधी बारिश सारू चेताई चियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साल 2026-27 सारू 4 संसदीय समितियां ओजू बनाई। और नीट UG 2026 रो इम्तिहान काल। देश रा 552 शहरा माए करीब 22,79,000 विद्यार्थी परीक्षा देवेला। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सर इसका चैनल है। संध्या के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सभी किसान भाई बहना ने रामू भाई और
1: बाबू भाई की ओर से
0: गणी गणी राम राम साहब
1: भाइयों।
0: हाँ तो बाबू भैया, आज चर्चा के माया अपना किसान भाई बना कर लिया बहुत ही चौकी जानकारी देवान जा रहे था फलदार बगीचों की उचित देखभाल के।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो देखो किसान भाई बनाओ, अपना जो फलदार जो बगीचा छे वहाँ के बहुत ही चौकी तरीका से देखभाल करवासूँ, अपन चौको लाभ मिलोगो। जय बात करें बाबू भाई, नए फलदार पौधे लगाने से लेकर फल देते रहने तक पौधे की देखभाल कर वो बहुत ही आवश्यक हो। और जहाँ बात करें हम पौधे पौध संरक्षण पर ध्यान कम दे, क्योंकि जब फल मिलगा तो बहुत सा किसान भाई लापरवाही करे थे बाबा कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन लापरवाही नहीं करना चाहिए
1: जी,
0: क्यों नुकसान हो छे जी के कारण ही कहीं से पैदावार का पर विपरीत प्रभाव पड़ जाओ छे और पैदावार उत्पादन भी कम हो छे। तो प्रारंभ से लेके अंत तक फलदार वृक्षों की देखभाल करने वो बहुत ही आवश्यक हो छे। या पुराने बगीचों की समस्याओं को समझकर उचित साधनों व उपायों को अपनाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए और जिसों की अच्छी उपज प्राप्त हो। और पुराने देसी बेर, देसी आम, देसी आंवला को कलमी बनाकर उन्नत किस्मों की प्रवृत्ति कर की जा सके छे। और वृक्षों की देख रेख फल की और किस्म उम्र की स्थिति संसाधन ये आदि कारकों पर निर्भर करे छे। जब बात करें बाबू भाई जब बगीचे की देखभाल के लिए उपाय काएं करें।
1: बिल्कुल सही बात है रम भाई। देखो किसान भाई बगीचा जिन्होंने लगा रखा है वो किसान भाई ध्यान रखें कि अपन को समय समय पर उनकी

0: ब्रेक करना जरूरी होता है। दूसरी बात क्या है किसान भाइयों, बगीचे में देखभाल के लिए कई चीज़ें जरूरी हैं, उनको समय पे देखना जरूरी होता है। जैसे समय पे कटाई छटाई करना है, खाद और उर्वरक का सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करके हार्मोन्स का प्रयोग करना है, निराई गुड़ाई और जुताई करके भूमि प्रबंधन करना है, समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करना है, मौसम के दुष्प्रभावों की सुरक्षा भी करनी है और कीट व्याधियों का भी नियंत्रण करना है। इन सब चीज़ों को अगर किसान भाई ध्यान में रखते हुए अगर फलदार बगीचे की देखभाल करके और इस तरह से ध्यान रखेंगे तो उनको अच्छी उपज मिलेगी। इसके साथ ही किसान भाई जैसे बगीचे में जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना, कहीं पे काफ़ी बार क्या होता है किसान भाई बगीचे गहराई में या सघन लगा देते हैं तो उनमें क्या है कि पौधों के हवा और प्रकाश ठीक से नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से अपन को उपज कम मिलती है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें जहाँ पे अपन गहरी बगीचा लगा हुआ है तो उन जगह से पौधे उखाड़ के दूसरी जगह पे सिर्फ लगा दें, और जहाँ पे जगह रिक्त स्थान हो गया जैसे खाली हो गई कहीं पे जगह तो उन खाली जगह में पौधे नए और लगा दें जिससे कि अपन को अच्छी उपज मिल सके किसान भाई।
1: हाँ तो बाबू भाई जहाँ अपना बात करें अपने बगीचों की देखभाल में कटाई छटाई एक महत्वपूर्ण आवश्यकता
0: जी भाई
1: महत्वपूर्ण बात है। तो किसान भाई देखो प्रारंभिक आरंभिक अवस्था में कटाई छटाई का उद्देश्य पौधे को सही आकार देवो बचे और इनके लिए तने को 2-3 फीट ऊंचाई तक शाखाएं निकाल देना चाहिए हाँ, और इनके साथ ऊपर चारों दिशाओं में 4-5 मजबूत मोटी शाखाएं निकलवा देना चाहिए, और ऐसा करने से पौधे की निराई गुड़ाई करने के बाद में फल लगने में पर तुड़ाई करने में आसानी रहे और पुराने बगीचों की कटाई छटाई में वायु और प्रकाश समुचित मात्रा में प्राप्त हो जाओ और कई बीमारियों से और कीटों व्याधियों में मुक्ति मिल जाओ और उत्पादन भी अच्छो मिल जाओ।
0: बिल्कुल सही बात है राम भाई। देखो किसान भाई इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए देखो अपन को ध्यान रखना है कि जैसे बगीचे में खाद उर्वरक का महत्व भी जरूरी है, समय समय पर किसानों को बगीचे में खाद भी देना जरूरी होता है। इसी के साथ जैसे कि निराई गुड़ाई की बात करें अपन, तो निराई गुड़ाई में क्या है किसान भाइयों, भूमि यानी जो निराई गुड़ाई भी किसानों को जरूरी है टाइम टाइम पर करना। इसके बाद है बगीचे के विपरीत मौसम की बात है, बगीचे में सिंचाई की बात है। तो सिंचाई की जैसे अपन बात करें तो बगीचे में देखो सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को।
1: हाँ तो जया अपा बाबू भाई बात करा आगे जया आज की ये जगह सिंचाई में फल वृक्षों की आवश्यकता अनुसार नियमित करें और ये ध्यान में रखें सिंचाई जल तने के संपर्क में न आए और तने के चारों ओर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। जहाँ अमरूद की सिंचाई गर्मिया के माया 7-10 दिन पर करनी चाहिए और सर्दिया में 15-20 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। और आम की बात करा आम में फल बनने के पश्चात 10-15 दिन के अंतर पर सिंचाई कर देना चाहिए। और नींबू की बात करें बाबू भाई तो फूल खिलने के 1 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए और फूल खिलते ही सिंचाई कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। जैसे बात करें अपने राम भाई पपीते की, तो गर्मी में पपीते की 7-10 दिन में और सर्दी में पपीते की 15-20 दिन में के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। बात करें जैसे आंवला की, तो मार्च में नई कोपल निकले तब 15 दिन के अंतराल पर जून माह तक सिंचाई करें। और जैसे कि अनार पौधे को बराबर नमी की आवश्यकता होती है पड़ती है और फल बनते समय नमी की कमी हो जाने पर जैसे कि फल फटने लग जाते हैं तो इन चीज़ों का किसान भाई विशेष ध्यान रखें।
1: हाँ और इनके साथ में बाबू भाई बगीचों की विपरीत मौसम में देखभाल कहाँ करें। देखो किसान भाइयों लू और पाले से बचाव के लिए बगीचे लगाने से पूर्व बगीचे के चारों तरफ हवा रोकने वाले पेड़ों की कतार में लगा देना चाहिए जो ठंडी हवा को और गर्म हवा को बगीचे का कम से कम नुकसान हो पावे। और उत्तरी पश्चिमी दिशा में घास फूस की टाटी से ढक देना चाहिए और वायु और धूप लगवा के लिए दक्षिणी पूर्वी की तरफ से खुला छोड़ देना चाहिए। तने पर चूने की पुताई करने से धूप से बचाव हो जाओ।
0: बिल्कुल सही बात है राम भाई। इन चीज़ों का अगर किसान भाई विशेष ध्यान रखेंगे तो इनमें क्या है कि अपन को अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैसे कि बात करें आप बगीचे में देखभाल के अंतराल हार्मोन्स की कमी होती है तो उनको भी किसान भाइयों को समय समय पर पूर्ति करना जरूरी होता है। जैसे कोई कीट व्याधि आ जाए तो किसान भाई उनको भी समय समय पर आपको है ना जो ध्यान रखना है और कौन सा रोग लग रहा है उसका उसी तरह से उपचार करना जरूरी होता है। जैसे अपन बात करें छचर रोग की, तो नई टहनियाँ पुष्पक्रम और पत्तियों और फलों को सफ़ेद सफ़ेद से चूर्ण जमा हो जावे तो इसके प्रकोप को पुष्प और कच्चे फल गिर जाते हैं। और नियंत्रण हेतु किसान भाई ध्यान रखें 2-5 ग्राम घुलनशील गंधक अथवा कैरोथिन LC 1 मिलीलीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो इससे क्या है कि प्रथम फूल आने पर द्वितीय छिड़काव तक बनने तक करें।
1: हाँ तो बाबू भाई या तो अपना किसान भाई बहना ने चर्चा के मैं बताया फलदार बगीचों की उचित देखभाल करें। और अब किसान भाई ने बाबू भाई सुना दिया संदेश, तो किसान भाई बहनों सुनो ये जरूरी संदेश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो बाबू भाई, या तो अपना किसान भाई बहनों को सुनाया जरूरी संदेश
4: जी भाई,
3: और अब किसान भाई बहनों को सुनाऊंगा भेंट वार्ता। बागवानी से अधिक आय पाए, ग्राम डाकपुरी तहसील मालाखेड़ा के प्रगतिशील किसान श्री पुण्याराम चौधरी से भेंट वार्ता। तो किसान भाई बहनों सुनो ये भेंट वार्ता।
5: किसान भाइयों राम राम, आज आपकी भेंट करवाते हैं प्रगतिशील किसान। आज भाई साहब आपका शुभ नाम और परिचय बताएं।
6: मेरा नाम पुण्याराम चौधरी है, ग्राम डाकपुरी का रहने वाला हूँ, तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर
5: जी। पुण्याराम जी, देखिए हमारे जो किसान भाई हैं उनको आप आज जो आपने फलों का बगीचा लगा रखा है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि आपने ये जो फलों का बगीचा लगाने के लिए या बाग लगाने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इसके बारे में बताएं।
6: देखो जी, प्रेरणा मुझको उद्यान विभाग से मिली थी। उद्यान विभाग में मैं एक मीटिंग में गया था, उन्होंने बताया था कृषि अधिकारी ने। मैंने 2 बीघे में बेरी का बाग लगाया हुआ है, रेड कश्मीरी किस्म है। उसको मुझको 2 साल हो गए लगाया हुआ, पानी की कमी पड़ रही है, इसलिए मैंने ये बागवानी का स्टेप लिया है।
5: तो सबसे पहले आपने बेरी के बारे में भर किसान भाइयों को आप बताने जा रहे हो, तो इसके लिए आपको जानकारी उद्यान विभाग से मिली?
6: हाँ जी, इसकी जानकारी उद्यान विभाग से मिली थी। फिर मैंने ये पेड़ बाहर से मंगवाए थे, आंध्र प्रदेश से, रेड कश्मीरी वैरायटी के। अब के साल इनमें एक पेड़ में 10 या 15 किलो के लगभग बेर आए। 300 पेड़ लगा रखे हैं मैंने, 30-35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तक का भाव मिला है।
5: तो आपने ये फल प्राप्त किए, तो कितने दिनों का आपका ये बगीचा हो गया, बाग हो गया तैयार?
6: ये बाग 2 साल का हो गया है कम्प्लीट। इसमें कुछ और पेड़ भी लगा रखे हैं मैंने, आम्रपाली आम के हैं 5 पेड़, 1-2 सीताफल के हैं, 1-2 आड़ू के पेड़ भी हैं, कटहल का पेड़ भी है, 10 केजी जामुन है और अंजीर का पेड़ भी है।
5: तो मिश्रित पेड़ लगा रखे हैं अपने बाग बगीचे?
6: हाँ, कुछ मिश्रित भी खेती कर रखी है मैंने। बेरी के बाग में मैंने नीचे प्याज भी लगाई थी पिछली बार, 1 बीघे में 30,000 रुपए का प्याज बेच दिया था मैंने उसमें से।
5: तो आपने ये जो अमरूद का बगीचा और लगा रखा है, पेड़ लगा रखे हैं, बाग लगा रखा है, इसके बारे में भी हमारे किसान भाई बताएं।
6: अमरूद का पेड़ 110 पेड़ लगाए हैं मैंने 1/2 बीघे में, उनमें भी बहुत अच्छा फल
5: है। जो प्रक्रिया है वो बताएं हमारे किसान भाइयों को, कहाँ से पेड़ लिया, किस तरह से आपने गड्ढे खोदे, वो सब बताएं।
6: पेड़ मैंने आंध्र प्रदेश से मंगवाए थे और 2x2 का गड्ढा खोदा है। फिर उसमें पहले गड्ढा खोद के खाद और मिट्टी मिला के उनको भर दिया था। भरने के 3 महीने बाद मैंने उनमें रोपाई करी थी।
5: रोपाई के बाद जैसे अपन पानी की बात करते हैं, तो

0: पानी का किस तरह से आप ध्यान रखते हैं, किस तरह पानी लगाते हैं इन दिनों में, जैसे गर्मियों के दिन है?
1: शुरू में लगाते वक्त थोड़ा पानी की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में पानी बहुत कम देना पड़ता है, पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती।
0: पानी के लिए आपने क्या लगा रखा है, किस तरह से पानी लगा?
1: पानी के लिए मैंने पेड़ों में ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है, जब जरूरत पड़ती है तो ड्रिप चला देते हैं, सब पेड़ों में पानी और खाद उसी के जरिए पहुंच जाता है।
0: जैसे अपन गर्मियों की बात करते हैं तो इन दिनों में आपका जो बाग है ये फलों का, इसमें कई तरह के आपने पेड़ बताए हैं, तो इनकी देखभाल के रूप में हमारे किसान भाइयों को बताएं किस तरह से इसमें खाद वगैरह किस तरह से आप ध्यान रखते हो, इसके बारे में बताएं।
1: देखो जी, इसमें अप्रैल के महीने में कटिंग करनी पड़ती है, बेरी के बाग में अप्रैल के महीने में मैंने कटिंग की थी इनकी और अमरूद की भी, अब उनमें फुटान चालू है।
0: इसके अलावा जैसा उर्वरकों की बात करें, अपन खाद उर्वरक किस तरह से आप देते हो?
1: उर्वरक तो डीएपी देते हैं, यूरिया तो इनमें देते ही नहीं है। डीएपी की जो लिक्विड नैनो की जो सीसी आती है उसको ड्रिप में डाल देते हैं, उसके थ्रू सब में चल जाता है। कीट के लिए कोई कीटनाशक भी उसमें डाल दो, नीचे कीट नहीं लगेगा।
0: जैसे अमरूद है या कई तरह के फलों के पेड़, इनमें कौन कौन से कीट लगे आपको जानकारी है?
1: हाँ, इनमें सुंडी लगती है, नीचे कीड़ा भी लगता है, ऊपर लट लगती है, उसके लिए स्प्रे करनी पड़ती है।
0: और जड़ों में?
1: जड़ों में नहीं लगता है इसमें।
0: अमरूद की जैसे आप बात कर रहे थे, अमरूद के यहाँ पर कई तरह के पेड़ आपने बताया कि भाई ये सूख रहे हैं, ये किस तरह सूख जाते हैं?
1: हमारे यहाँ उरली तरफ नीमोटेड की समस्या है, नीमोटेड की वजह से कई पेड़ जा चुके हैं, नीमोटेड के लिए उपचार भी किया है, नीम का पत्ता और आंख के पत्ते घोल बना के।
0: जैसे अमरूद में आपने बता दी बीमारी के बारे में, इसी के अलावा जैसे आपने बेरी के पेड़ लगा रखे हैं, इनमें कोई बीमारी थोड़ी है आपके?
1: इनमें कोई बीमारी नहीं है, इनमें मच्छर का प्रकोप रहता है, जो हमें कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं।
0: आपका ये बेरी का जो बगीचा है ये कितने दिन पहले लगाया था आपने?
1: इसको लगाए हुए करीब करीब 2 साल हो गए, 2 साल में फल देने लग गया है, अब की बार अच्छा फल आया।
0: कितने दिन तक आप इसमें और फसलें बोएंगे?
1: अब इनमें फसलें नीचे वाली फसलें लगा सकते हैं, ऊपर की फसल नहीं लगेगी।
0: आपका जो बेरी का जो बगीचा है इसमें आप सुरक्षा की दृष्टि से क्या ध्यान रखते हो, क्या देखभाल करते हो?
1: देखो जी, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ आवारा पशुओं को ज्यादा दिक्कत रहती है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से राजस्थान सरकार की तरफ से तारबंदी करवाई और रखवाली भी करनी पड़ती है दिन में रात में। ये
0: तो पानी की जो व्यवस्था के बारे में आप बताएं, तो पानी कितना लगाते हो इसमें बेरी का जो बगीचा है आपका?
1: बेरी के बगीचे में पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, पानी नॉर्मल लगता है, कोई थोड़ा बहुत ड्रिप से लगा देते हैं।
0: कई तरह का आपने जो पेड़ लगा रखे, इनमें सबसे अच्छे फल देने वाले कौन कौन से पेड़ हैं?
1: सबसे अच्छे फल देने वाले अमरूद है और बेर है।
0: बिना खर्चा के?
1: बिगर खर्चा के इनमें फल लिया जा सकता है।
0: और करीब कितने दिन तक फल दे देंगे?
1: इस साल भर में 2 बार फल देते हैं, कटिंग करनी पड़ती है हर 6 महीने।
0: कटिंग जैसे करते हो आप, कटिंग के बारे में पहले बता रहे थे हमारे किसान भाइयों को, तो कटिंग में किस तरह से ध्यान रखते हो, कहाँ कहाँ कौन कौन सी टहनियाँ काटते हो?
1: देखो जी, जो मेन तना होता है उससे वो काटते थे, अंदर जो टहनी जा रही है उसको तो बिल्कुल ही तने के पास से काटते थे, बार बार की जो हवा भी लगती रहे उसमें तो फल ज़्यादा देगा।
0: तो इसके अलावा जैसे अपने किसान भाइयों को आप बताएं कि जड़ों में आप क्या काम करते हो इस समय ज़्यादा फल आने के लिए?
1: ज़्यादा फल आने के लिए गुड़ाई करनी पड़ती है पेड़ की, पेड़ के तने से 1 फुट छोड़ के उसके बाद में दूरी में गुड़ाई कर दो, गुड़ाई करके या तो कैचुआ खाद डाल दो या वर्मी कंपोस्ट डाल दो या घोड़े के खाद डाल दो, वो ठीक रहता है।
0: और फसलों की तुलना में आपने ये जैसे बगीचा या बाग लगाने की सोची है, फलों का बाग लगाया है, तो इसमें जैसे तुलना दृष्टि से देखे तो लाभ कितना मिलता है आपको लगभग?
1: देखो जी, लाभ तो बेर की फसल में तो ज़्यादा ही है, एवरेजन मान लो अब के साल इसमें 1 क्विंटल फल आएगा, 1 क्विंटल का बाजार मूल्य 10 रुपये से लगाओ तो आप 1,000 रुपये बनता है, 300 पेड़ का बनेगा 3 लाख रुपये, तो और कोई फसल 3 लाख का मार्जिन नहीं देगी। हमारे यहाँ किसान भाइयों पानी की बहुत समस्या है, 500-600 फुट नीचे गहराई पे जल स्तर चला गया है, इसलिए पानी की समस्या आने वाली है, इसीलिए मैंने ये स्टेप उठाया है कि बेर का बाग लगाऊं, इसमें पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, एक टंकी बना रखी है मैंने, उसमें एक टैंकर डालो और ड्रिप के थ्रू चला दो, 1 महीना में 1 बार या 2 बार तो फिर पानी में ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

0: बेरी के बगीचे में तो बिल्कुल भी शायद
1: बेरी के बगीचे में तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: और आवारा पशु हैं वो भी शायद कम नुकसान करते हैं खाते हैं।
1: आवारा पशु नुकसान नहीं करेंगे।
0: अच्छा, इसके अलावा हमारे किसान भाई को आप जानकारी ये देंगे कि आपने जो पेड़ बाहर से मंगवाए थे किसके माध्यम से मंगवाए, किस तरह से हमारे किसान भाई है जो संपर्क करें?
1: देखो जी, ये उद्यान विभाग से भी आप पेड़ ले सकते हो या प्राइवेट नर्सरी से भी आप पेड़ ले सकते हो। प्राइवेट नर्सरी में महंगा पड़ता है, उद्यान विभाग से सस्ते पेड़ पड़ जाते हैं, वो भी अच्छे पेड़ हैं। उद्यान विभाग से जैसे अपन पेड़ लेते हैं तो वहाँ भी सब्सिडी मिल जाती है, आप सब्सिडी लेना चाहो तो सब्सिडी भी मिल जाती है।
0: तो इसके लिए हम सबसे पहले कहाँ संपर्क करें उद्यान विभाग के लिए?
1: उद्यान विभाग के मैनेजर साहब बैठते हैं, उनसे मिलो आप, ई मित्र से ऑनलाइन भी आप फार्म भर सकते हो।
0: तो अंत में हमारे किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे बगीचा की और आपने यानी कि फलों का बाग लगाने के प्रति आपका रुझान बढ़ाए तो क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, उससे वातावरण भी शुद्ध रहता है, हरियाली रहती है, बारिश ज़्यादा आती है तो कमाई भी अच्छी होती है।
0: देखिए प्रगतिशील किसान भाई पूर्णराम चौधरी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद किसान भाइयों को सभी को।
2: हाँ तो बाबू भाया या तो अपना किसान भाई बनाने भेंट वार्ता सुनाया जी गमाया, फलदार पौधे लगाएं, बगीचा लगाओ किसान भाई और अधिक आय पाएं। ठीक है भाई, जब पुण्यराम प्रगतिशील किसान भाई पुण्यराम जी चौधरी से बातचीत करता विश्राम लाल जाट। आप किसान भाइयों को करा दिया मनोरंजन, सुना दिया चौकोसो लोक भजन, तो किसान भाई बनो सुनो चौकोसो लोक भजन।

बंदी जग में रहना है तो काम छोड़ दे चार, चोरी चुगली जामनी मत के पराई ना, चोरी के दे कराई दे चुगली कर दे खुआर, घर लुटवा दे तेरा जामनी और सर कटवा देना। अरे रे सारी दुनिया यो बते

हा कम है सारी दुनिया का तेरा हुक्म किसी से नहीं डरे जो दिल से तुझको

0: भाई चले नहीं बिन मोटर के कोई नंगे पैरों भाग रहा। कहीं ढेर पड़े जर जेवर के कोई कर्ज किसी से मांगे रहा। कोई छिड़क किसी पर नीले रहा कोई जला किसी पर आगे रहा। कोई धर्म से अपना मुख मोड़े कोई धो पापों को दाबे रहा। कोई सुख की निंदिया सोता है कोई पड़ा फिकर में जागे रहा। कोई आशा करता महलों की कोई बनी हवेली त्याग रहा। रे कोई
1: बनी हवेली त्याग रहा। रे कोई बनी हवेली त्याग रहा।
0: हेरे मुनियों के मन भाया तू ही मोहन मालिए। हेरे मुनियों के मन भाया तू ही हेरा मोहन मालिए। जबी तो सारी जबी तो सारी जबी तो सारी दुनिया हो मथुरा में के लीला तेरी अजब निराली है।
2: हाँ तो बाबू आया या तो अपना किसान भाई बहनों ने सुनाया सो को सो लोक भजन। और अब किसान भाई ने जानकारी की बात है मैं जानकारी देगा पपीते की पपीता की उन्नत की बागवानी। तो देखो किसान भाई बहनों हो पपीता को बगीचो अपना हरेक किसान भाई ने जरूर अपने आंगन में खेत में जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इसको कम समय के माया अधिक आय मिल जाओ छे और अच्छे एक अपने परिवार को भी अपने बच्चों को अच्छे रिश्तेदारों को खावा के लिए अच्छा फल छे पपीता खावा को मिल जाओ छे। तो कहवा को मतलब जाए बाबू भैया पपीता एक माया कहा जाए विटामिन ए और सी को अच्छो स्रोत हुए छे और ये खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक हुए छे और पपीता के इसके फल पीले और औषधीय गुण भी पाए जाओ चाहिए माया। तो जे आप पपीता किसान भाई लगाओ तो जलवायु और भूमि को चुनाव जरूर कर लेना चाहिए। ये उष्ण जलवायु का पौधा होता है जो खुले धूप वाले क्षेत्रों में और पानी की सुविधा के साथ उगाए जा सके छे और इनके लिए पाला हानिकारक हुए छे और इसकी खेती पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पाला अधिक पड़े छे उन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर उगाई जा सके छे और इनको खेत के जहाँ बगीचों लगाए उसमें जल निकासी युक्त और दोमट मिट्टी पपीते की खेती के लिए उत्तम मानी गई छे और खेत में पानी भरे रहने पासू जड़ गलन रोग लाग जाओ छे बीमारी हो जाओ छे तो ऐसे खेत में न लगाना चाहिए।
3: बिल्कुल सही बात है।
2: और किसान भाई आपकी उन्नत किस्म के बारे में जानकारी
3: देना। बिल्कुल सही बात है। किसान भाइयों जिन भाइयों को पपीते की बगीचे लगाना है तो उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना है जलवायु का जैसे बताया भाई ने तो जलवायु का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात क्या है कि इनमें किस्मों का भी जरूरी चयन अच्छी किस्मों को चयन करें किसान भाई तो अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाई इसमें कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि आपको अच्छी पैदावार देंगी और आप अच्छे से बगीचा लगा के अच्छी इनकम कमा सकते हैं। जैसे बात करें किसान भाई अपन पूसा नन्ना ये किस्म ग्रहवाटिका की उपयुक्त है। छोटे कद के होते हैं तने की केवल 1 फुट की ऊंचाई होती है और फल लगने से शुरू होते हैं और फल मध्यम आकार के होते हैं और गूंदे का रंग पीला और गोलाई 3 सेमी होती है। जैसे बात करें कोयम्बटूर में कई वैरायटी आती हैं जैसे कोयम्बटूर 1 है कोयम्बटूर 2 है कोयम्बटूर 3 है। इस तरह

0: की क्वालिटियां हैं तो इसमें किसान भाई ध्यान रखें। और तो जैसे कि अपन बात करें कोयम्बटूर धोख की, तो नर मादा दोनों तरह के फूल आते हैं और फल मध्यम आकार को होते हैं, मीठे होते हैं। ये अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। इस किस्म के पन्ने की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे बात करें अपन, जैसे एक किस्म है सूर्या, ये गुलाबी रंग के गूंदे वाली उन्नत किस्म है और फल मध्यम आकार के होते हैं। फूलों का गुदा लाल और स्वादिष्ट और मीठा होता है।
1: हाँ, इनके साथ में ताइवान 786 भी बढ़िया किस्म से इन्हें लेना चाहिए जी। तो बाबू भाई, या तो जानकारी दिया पपीते की उन्नत बागवानी करवा के लिया, और किसान भाई ने आप सुना दिया अलवर मंडी के बाजार भाव। आज देखो बाबू भाई, गेहूँ बिकिया 2400-2500 रुपया प्रति क्विंटल, और जो बिकिया 2000-2300 रुपया प्रति क्विंटल, और सरसों बिकी 6500-7000 रुपया प्रति क्विंटल, चना बिकिया 5000-5200 रुपया प्रति क्विंटल।
0: और इसी तरह आज बाजार भाव बाजरा का रहा 1900-2100 रुपया प्रति क्विंटल, और गमार का भाव रहा 4500-5100 रुपया प्रति क्विंटल।
1: हाँ, तो ये तो बाबू भैया अपना अलवर मंडी का बाजार भाव सुनाया किसान भाई ने। अभी के साथ मौसम की दे दिया जानकारी। और देखो आज मौसम अधिकतम तापमान रही हो 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रही हो 26 डिग्री सेल्सियस। और देखो बाबू भैया, अब घड़ी की सुइया खरीचे कि आपनों टाइम किसान वाणी को टाइम पूरा बन जा रही है। जिससे पहले किसान भाइयों ने बता दिया कि ई कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री नीरज भगत। और देखो बाबू भैया, आपना किसान भाइयों से आप लेंगे इजाजत। तो जय जवान,
0: जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सुनेंगे रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अनुराधा पोड़वाल बाबुल सुप्रिया की आवाज़ में लीजिए सुनते हैं ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म से गीत। गीतकार हैं समीर और संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

उदित नारायण साधना सरगम की आवाज़ में लीजिए, आप सुनते हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म से गीत। गीतकार है मजरू और संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे लोक संगीत। लोक संगीत में आज आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गाए लोकगीत।

अपनी माँ के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहाँ आए थे। सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बायरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया। 6 महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसीका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्म आया गया। जैसा कि हमने आपको बताया 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है। ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए। सत्यजीत रे को ये लगा था कि ये दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे। सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसे सन 1954 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड मिला।

0: दो बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए।
1: सुनार मानुष भासछे रसे, सुनार मानुष भासछे रसे।
0: पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों अपूत्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसाघर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंगा, सन 1963 महानगर,

0: 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपी गायन बाघाबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई सदगति, सन 1984 घरे बाईरे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इप्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु। इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थीं। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखन जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया,
1: बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे
0: जी,
1: तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके
0: जावेद सिद्दीकी जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके
1: तो
0: साथ
1: मैं उनके साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो, तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो, तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं, मैं बात करती हूँ उनसे। तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए लिखा है,
0: उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे।
1: हाँ जर्नलिस्ट थे। मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे।
2: अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई। वैसे मैंने ला मार्टिनेर के कॉलिन साहब से सीखी है, मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना।
3: अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है?
2: नवाज साहब को ज्यादा फर्क नहीं है, ये आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं, और प्यादा पहली चाल में दो घर चल सकता है।
3: दो घर?
2: जी हाँ दो घर, और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है।
3: कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी। मगर इन तब्दीलियों से फायदा?
2: बाजी झटपट खत्म हो जाती है।
3: क्यों, उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या?
2: जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है।
3: और तार?
2: जी हाँ। तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाते।
3: क्यों?
2: बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं।
3: बुरी खबरें?
2: आपने कुछ सुना नहीं?
4: हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं।
2: मीर साहब, हंसने से बला नहीं चलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं।
5: मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे हाय, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल।
6: पैसा लाए कहां से?

0: ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं।
1: भाई, शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है।
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। और पहले तो मैं समझा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया, जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बैज में था कि मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या है। लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो वैसी एक आवाज थी, बड़ी इम्प्रेसिव
0: जी।
1: और उन्होंने कहा कि कम आप। मैं चला गया और उन्होंने खुद दरवाजा खोला, क्योंकि वो कमरे में अकेले थे
0: जी।
1: पहली मर्तबा मैंने इतना लंबा बंगाली देखा बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे
0: जी हाँ।
1: और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे।
0: अच्छा,
1: कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे। तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक। और फिर कहने लगे कि अच्छा, उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब, कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी।
0: और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी।
1: पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब, आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क। इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माय वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, आई कैन हैव ए लुक एट यू
0: जी,
1: एंड हियर इज माय स्क्रिप्ट एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग।
0: ओहो,
1: तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी सर। और मतलब वो ऐसी अजीबोगरीब मुलाकात थी कि उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहां से अपने दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहां से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे। पकड़ लिया पता नहीं कहाँ से, और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है, उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में कहते हैं ना कुरे फाल बनामे मने दीवाना जदन, कि वो कुरे फाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बाहर हमने वो लिख दिए और सुरेश जिंदल साहब ने जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, खास तौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया। और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी फ्रॉम

0: पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक
1: जी।
0: फिर अब सब चुप थे, वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था, सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता
1: जी,
0: कि आई डोंट नो व्हाट ही हैज रिटन बट इट साउंड्स वेरी गुड।
1: वाह।
0: उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे, या मिस्टर रे नहीं कहते थे, हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे।
1: बिल्कुल।
0: जो मानिक उनके घर का नाम था, और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दा ही कहते थे।

0: कुछ दिनों के बाद फिर मानिकदा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं, मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जमा करा के देखा और बहुत बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा? विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म? तो वो गरीबी का जमाना था, मैंने अरे भाई इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तुम्हें भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीब गरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था तो वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो खुद वाकिफ नहीं थे, और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीजें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखल अंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थी और ये कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था वो ऐसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज पुराने जमाने की, क्योंकि 1857 का माहौल था
1: जी।
0: तो मानिकदा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से। और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल दो मर्तबा आता है, एक मर्तबा एज एन असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, और दूसरा डायलॉग राइटर।
1: ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें दो तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहा किस तरह से पाते हैं?
0: मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद जहीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था, और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी, और उसकी बहुत सारी मिसालें थी। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो शोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिकदा खुद करते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, वो हमेशा खुद करते थे, ज्यादातर काम वो खुद ही करते थे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद स्कोर करते, कंपोज करते थे, एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे, और कैमरा ऑपरेट भी खुद करते थे। अक्सर हम लोग में से कोई अगर उनको कोई राय दे देता था तो वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और उसको करते भी थे। उनमें वो जो एक गुरूर होता है कि साहब मैं सत्यजीत रे हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और कुछ ऐसी बातें भी थी बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग जिन्हें सीखने का हमको मौका मिला। मिसाल के तौर पर ये कि जब मीर का घर बन रहा था सईद जाफरी का, और बंसी चंद्र गुप्त का डायरेक्शन था, तो हम जब वहाँ पहुँचे सवेरे सवेरे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंसीदा, और बंगला में बातें कर रहे थे लेकिन ये बंगला समझ में आने लगी थी, वैसे भी आसान जबान है वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मीर के जो हालात हैं वो काफी खराब हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जो रंग रोगन है इस हवेली का ये सही है, तो इसको थोड़ी एजिंग की जरूरत। तो बंसीदा ने कहा कि हाँ मैं एजिंग कर दूंगा। और वो जाने लगे मानिकदा, और जाते जाते उनको वो एक बाल्टी दिखाई थी जिसके अंदर पेंट करने वालों ने इस खौफ

0: के ब्रश सूख न जाए वो भिगो दिए थे पानी में, और वो गंदा सा पानी वहाँ पड़ा हुआ था। एंड सडनली ही स्टॉप्ड, और उन्होंने वो ब्रश उठाया और उसको उन्होंने दीवार के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत ही गंदी मैली सी एक तय चढ़ गई तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए और धब्बे चाहिए मुझे, ताकि ये एहसास हो सके कि इस आदमी की माली हालत जो है वो कैसी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता, डायरेक्शन की जो जहानत होती है वो मैं उसके लिए मैं कोट करूंगा कि एक सेट था, तो उसमें वो मिर्जा साहब जो है वो शतरंज खेलने के लिए आते हैं सवेरे सवेरे। वो आए और वो बाहर एक उस जमाने में ब्रूट हुआ करते थे, वो बड़े बड़े मतलब 10K का जो की लाइट होती थी, तो वो एक लकड़ी का घोड़ा बना के और उसके ऊपर रख दी गई थी
1: जी,
0: बाहर की रेज जो है वो अंदर आ सके। तो उन्होंने लाइटिंग जब देखी तो उन्होंने उनसे शवेंदु राय से कहा कि इसको एक 2 फुट ऊपर कर दो। तो जी 2 फीट ऊपर करने वाली बात थी, मुझे तो कुछ इतनी समझ में नहीं आई। तो शवेंदु राय ने कहा ठीक है दादा मैं कर देता हूँ। तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मैंने कहा कि मानिक दा ये बताइए आप, वो उससे क्या फर्क पड़ता है लाइट, आपने उसे 2 फुट ऊपर क्यों कराया। तो वो बहुत देर तक टालते रहे, फिर लंच में मैंने फिर उनको घेर लिया, हम सब लोग साथ में ही लंच करते थे। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो एक मरतबा जब सेट पे आ जाते थे तो पैकअप बोलने के बाद ही सेट से निकलते थे, लंच में भी वो बाहर नहीं जाते, वहीं सेट पर खाना खाते। तो मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया, थोड़ा सा चिढ़ गए, कहने लगे तुमने स्क्रिप्ट लिखा है ना। मैंने कहा हाँ। तुमने क्या टाइम लिखा है, क्या वक्त है। सुबह का वक्त है, 9:30-10 बजे का वक्त होगा। तो कहने लगे और ये मौसम कौन सा है, महीना कौन सा है। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अस ये दिसंबर है। तो कहने लगे कि दिसंबर में लखनऊ में 10 बजे सूरज निकलता है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर से आएंगी, बीच में से नहीं आएंगी। समझे आप,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सूरज अभी निकला है तो उसकी जो एंगल जो होना चाहिए किरणों का वो हायर साइड पे होगा, न के नीचे। तो ये जो बात थी वो तरीके की, वो मुझे बहुत ही बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। जब भी आते थे यहाँ बॉम्बे में तो 1-2 मुलाकातें उनसे जरूर होती थी, हम उनके घर जाया करते थे, चाय के बड़े शौकीन थे वो।
1: अच्छा,
0: मुझे भी चाय का बड़ा शौक, तो मैं उस लालच में बहुत जाता था उनके घर, क्योंकि उनके कोई एक बहुत चाहने वाले थे जिनका दार्जिलिंग में टी स्टेट था, तो वो हाथ से तोड़ी हुई चाय की पत्तियां उनको भेजा करते थे। वो ब्लेंडेड या ये नाम वाली चाय नहीं होती थी, और वो चाय का फ्लेवर ही अजीब होता था, और उसको वो बड़े प्यार से बना के वो उसके ऊपर लेक्चर भी देते जाते थे और समझाते भी जाते थे और पीते भी जाते थे। और गुड ओल्ड डेज के ऐसा लगता है कि यादें कल की हैं।
1: सत्यजीत रे ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। सन 1971 में उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री थी सिक्किम। इसके बाद सन 1987 में उन्होंने अपने पिता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सुकुमार रे। सन 1976 में आई डॉक्यूमेंट्री बाला, और सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर पर एक डॉक्यूमेंट्री आई। सन 1972 में उन्होंने द इनर आई नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस तरह सत्यजीत रे न सिर्फ फीचर फिल्में बनाते थे बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने में भी उनकी अच्छी खासी रुचि थी। सत्यजीत रे केवल सिनेकार ही नहीं थे, वे चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे और लेखक भी। बच्चों के लिए उन्होंने अपार लेखन किया। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे इस असार संसार को छोड़कर चले गए। महान फिल्मकार कुरुसावा ने सत्यजीत रे के लिए कहा था, सत्यजीत रे का अवलोकन बड़ा गहरा और खामोश होता है। उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो अपने आप में एक विशाल फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे मगर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

बिहार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की अनुपम भेंट लेकर मैं आपके साथ छाया गीत के सफर में दिलों की दास्तां बयां करूंगी। बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हो रही है, आंखों ही आंखों में इशारों की बरसात हो रही है, बातों ही बातों में मोहब्बत के सिलसिलों की शुरुआत हो रही है। उनके आने की आहट से दिल की धड़कनें

बड़ी कातिल अदाएं उनकी हैं, जरा बच के रहिएगा उनसे मुलाकातों में, कहीं दिल घायल करके वो दामन न छुड़ा लें। ये सोच के तबीयत बड़ी नासाज हो रही है, हाले दिल कुछ वो कहें कुछ हम कहें तो धड़कनों को सुकून मिले।

इंतजार की इंतहा हो गई। वो आए भी मगर चिलमन के पीछे से एक झलक दिखलाकर हौले से मुस्कुराकर जाने लगे। बड़ी बेताबी थी उनके दीदार की। गनीमत इतनी हुई कि दामन उलझकर चिलमन से लिपट गया और आंखों ने पलकों को झपकाना छोड़ दिया। काश वो पल वहीं ठहर जाता।

अंचाल के बाद आप सभी का स्वागत है। इंतजार के आलम में कुछ ख्वाब बुने थे, हकीकत में जब उनका सामना हुआ तो उलझ कर रह गया दिल उनकी निगाहों में, आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार हो रहा है।

आंखें रूठे से हैं, होंठ चुप हैं, पर नजरों से मुस्कुरा रहे हैं। वल्लाह क्या अदा है, सितम भी ढा रहे हैं, प्यार भी जता रहे हैं। गिले शिकवे तो बेहिसाब थे, पर एक नजर के वार ने सारे ढा दिए। बस अब प्यार है, इजहार है, दिले बेकरार।

शमा ने कहा परवाने से, मत पास आ, जल जाएगा। शमा को क्या पता जलने में क्या मजा है। जल जल के फना होना तो फितरत है परवाने की, मोहब्बत को आजमाने की, जल जल के मिट जाने की।

0: तस्वीर उभरती है आंखों में, फिर अशकों में धुंधली हो जाती है। प्यार की कशिश ऐसी है कि कुछ और दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता, जिससे होता है बस उसी से होता है।
1: चोरी, चोरी।

0: छाए गीत के सफर में आज यहीं तक, मिलेंगे फिर कभी इसी वादे के साथ। मंत्री वर्मा को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: ढलती जाए रात।